बाद लोगों का दूसरा सोचना हो जाता है कि ये एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की पागल होने की स्थिति पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्थिति खराब होने का सीधा असर पागलपन से नहीं होता है, वो ऐसा एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये मानसिक स्थिति को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी भी एक लंबे इलाज से। अब आप सोचेंगे कि एक सोच को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिना दवाइयों के या फिर किसी प्रिकॉशन के कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कोई परिस्थिति खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज को ठीक करने का अनुभव ज्यादा होता है, या हम यूं कह लें सीधे शब्दों में कि कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों को हमने भी महसूस किया है, हमने भी झेला था। तो आज कहीं जाकर के इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूं। सबसे पहली बात ये है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें। हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है, और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इससे आपका मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसे आप अपने मन की, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और लगता है कि वो आपकी बातों को कहीं भी इधर से उधर नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांस लेना, प्रार्थना और ध्यान करना, मन को स्थिर करना सबसे अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है। थोड़ा समय प्रकृति और शरीर को दें, हल्की वॉक करना, योग, खुली हवा में समय बिताना और अपने मूड को चिल करना। कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग बाहर घूमने क्यों जाते हैं, अरे मूड को चिल करने जा रहे हैं। अपने काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स मोड में जाना, यानी कि ऐसा नहीं है हम प्रेशर में हैं, हमारी मानसिक स्थिति जितनी भी उलझी हुई है लेकिन हम काम करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में। फिर आता है अच्छी चीजें पढ़ें और सकारात्मक संगति करें। बिल्कुल दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती होना ये आपकी मानसिक स्थिति को सबसे और जल्दी बेहतर करता है, और आपकी बहुत सारी चीजों को जो कि खराब हो चुकी हैं उन्हें ये हील करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें आपको और आपके मन को मजबूत बना देती हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है नींद और भोजन का ध्यान रखना। कम नींद और अनियमित खानपान का असर हमारे मन स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी खराब करता है। एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना और पर्याप्त गहरी नींद लेना सबसे अच्छा माना गया है। खानपान की बात करें तो आज की न्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन अगर हम हल्का और जो जल्दी पचने वाला खाना अगर खाते हैं तो हमारे पेट को भी राहत मिलती है और हमारा मन भी और मूड भी अच्छा होता है।

मन की बातों को लिखना, अपनी कोई भी चिंता, भावनाएं और दिन की सबसे अच्छी बातों को एक डायरी में लिखना मन को शांत करने जैसा होता है। साथ ही साथ ये आपको उस ओर लेके जाता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कुछ ऐसे चिड़चिड़ेपन हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो आप एक डायरी में उसे उतार देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। फिर आता है पॉइंट कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज ऐसी 3 चीजों को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद ईश्वर। सबसे पहले हम ईश्वर को भी धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने ईश्वर को भी आभार व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने माता पिता के लिए भी ये आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया और हमें ये सुंदर जीवन देखने का अनुभव प्राप्त कराया। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी मानसिक स्थिति, तनाव और मन को स्थिर रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे योग प्राणायाम, जिसकी मदद से हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 10 मिनट करें, मन को शांत करके और श्वासों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार से शुरू करने के बाद में इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, मन की बेचैनी, तनाव में राहत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं बालासन। शरीर और मन को आराम देने वाला ये आसन होता है। फिर हम कर सकते हैं एक छोटा सा रूटीन जिसमें आता है 5 मिनट की गहरी श्वास, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी, 10 मिनट ध्यान और अंत में शवासन। ये सारे प्राणायाम आपकी मन की स्थिति को तो ठीक करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको ये फील कराते हैं कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप अपने मन से हार जाएंगे, यानी कि आप सब कुछ हार जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इसीलिए मन से कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्धि प्राणायाम, कपालभाति, मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक। दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ। चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आँखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ। शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में
शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी। बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं। जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली, आपकी एज के हिसाब से, लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया, आप आधे गिलास से शुरू करिए। मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे और पानी पिएंगे, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी गैस की समस्या जितनी भी भारी होगी वह धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म तेज करता है। खाली पेट पानी पीने से शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ती है, वजन घटाने में मदद मिलती है। मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिन लोगों को जिम जाना होता है, भारी से भारी एक्सरसाइज करनी होती है। शायद उनका उद्देश्य यही होता है कि हमें पतला होना है, हमारा पेट अंदर हो जाए, टमी अंदर हो जाए और हम अच्छे से सुडौल होकर के मार्केट में जाएं, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र पर जाएं या फिर हम अपने घर पे रहें, अपने दोस्तों के बीच में जाएं। तो उनके लिए सबसे सरल उपाय गर्म पानी, यानी कि गुनगुना पानी की आदत डाल लेनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म तेज करता है, यानी कि खाली पेट पानी पीने से शरीर की जितनी भी खराब कैलोरी होती है वो बर्न की करने की क्षमता बढ़ जाती है और वजन घटाने में मदद करता है। आप मेरे कहने पे, यानी आज समता के कहने पे, एक महीना लगातार एक गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत सुबह शुरू करें और आप ये आदत को शुरू करने से पहले वेट करें और उसके बाद एक महीने के बाद अपना वजन जरूर करें। आप देखेंगे कि 1 से 2 किलो वजन आपके शरीर का कम होता हुआ दिखाई देगा, बिना किसी सर्टिफिकेट से, बिना किसी साइड इफेक्ट से, बिना किसी गोलियों से, बिना किसी भी भारी एक्सरसाइज करने से। चौथा पॉइंट आता है जो कि हम गर्ल्स के लिए, हम महिलाओं के लिए एक रामबाण जितना काम करता है। जी हाँ दोस्तों, त्वचा को बनाता है ग्लोइंग। आज हर एक महिला, हर एक लड़की की ये चाहत होती है कि हम खूबसूरत दिखें,
हमारे बाल लंबे हों, हमारे चेहरे पे कोई मुहासा नहीं हो, कोई पिंपल ना हो और हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड होकर के एक चमकती हुई त्वचा लगे, तो देर किस बात की है। सिर्फ आपको एक छोटी सी आदत को अपनाना है और अपनी जिंदगी में देखना है बड़ा बदलाव। बिल्कुल, एक गिलास पानी गुनगुना आपको नित्य प्रतिदिन योग की क्रिया में यानी कि योग करने के बाद में आपको अपनी जीवन शैली में इसको अपनाना है, जिससे आपको मिलेगा लाभ, खून साफ होता है। अगर खून साफ होगा, हमारी बॉडी का ब्लड साफ होगा तो पिंपल और मुहासे बिल्कुल नहीं होंगे, ड्राइनेस कम होती है। सर्दियों में ड्राइनेस जिन्हें ज्यादा होती है यानी कि आपको पानी की कमी है, त्वचा में नेचुरल चमक आती है। आप जितनी भी महंगी क्रीम लगा लें, लेकिन अगर आपकी स्किन पर नेचुरल चमक है तो इसका मतलब है कि आप पानी पीने में सबसे ज्यादा अच्छे हैं और पानी को पी रहे हैं। नेचुरल चमक जानने का सबसे आसान तरीका होता है दो टाइम पर, बताऊं कैसे। पहला, जब आप सुबह सो के उठते हैं आप अपने आप को शीशे में निहारें। अगर आपके चेहरे पे हल्की सी भी एक चमक है यानी कि ये चमक आपके अंदर की है, क्योंकि आपने सोते समय कोई क्रीम नहीं लगाई है और उठते ही आपने कोई क्रीम नहीं लगाई है। जो चमक आती है वो आपकी नेचुरल चमक है। दूसरा, जब आप नहा के निकलते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, अगर आपने अपने फेस को साफ किया है, साबुन से साफ किया है, लेकिन एक खिंचाव, एक चेहरे पे सूखापन आ ही जाता है जिसके कारण से वो चमक कहीं ना कहीं छिप जाती है। लेकिन अगर वो चमक आपको दिखाई दे रही है, इट मींस कि आपके अंदर पानी की कमी नहीं है। अगर वो चमक नहीं है, त्वचा रूखी हो गई है, इसका मतलब है आपकी स्किन को हाइड्रेशन की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट आता है, दिमाग को रखता है फ्रेश। रात में शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, सुबह पानी पीने से थकान कम होती है, सिर दर्द से राहत होती है और एकाग्रता बढ़ती है। मैं बता दूं स्टूडेंट्स को कि अगर उन्हें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, एकाग्रता नहीं आ रही है, थकान सी महसूस होती है, एग्जाम्स हैं, यार मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर अभी मोबाइल मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तुरंत तुरंत हम मोबाइल देखने बैठ जाते हैं, स्क्रीन को देखने बैठ जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर वो अभी से एक गिलास सुबह पानी पीना शुरू कर देंगे तो रात में शरीर डिहाइड्रेट हो जाने के कारण से जो थकावट हो जाती है, एकाग्रता नहीं होती है, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। छठा पॉइंट है, हृदय और ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम एक गिलास पानी सवेरे उठ करके पियेंगे जिससे खून गाढ़ा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, दिल पर दबाव कम पड़ता है और कहा जाता है कि यदि हृदय आपका स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ है। सातवां पॉइंट आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोज सुबह पानी पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, सर्दी जुखाम जैसी समस्याएं कम होती हैं, हम कम बीमार पड़ते हैं। आइए अब हम बता दें आपको कि ये नियम कैसे करना है और कितना करना है। सवेरे उठते ही नित्य क्रिया करने के बाद में यानी सोच के करने के बाद में उठते ही आप आराम से कहीं जमीन पर उकूड़ू बैठ जाएं, या तो फिर आप कहीं पे भी आराम से मैट पे बैठ जाएं। अगर आपको इतनी भी व्यवस्था नहीं है तो आप किसी कुर्सी पे, मेज पे, पलंग पे, सोफे पे, कहीं पे भी आप बैठ जाएं। उसके बाद में एक गिलास गुनगुना पानी लें। कहते हैं कोई भी शुरुआत छोटे से करनी चाहिए, एक गिलास पानी से करें। अगर आपको एक गिलास भी भारी लग रहा है तो आधे गिलास से आप शुरू करें, आधा गिलास गुनगुना पानी सिप सिप करके पिए। साथ ही साथ आज मैं आपको एक टेक्निक और बता दूं कि पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। पानी मुंह में रख करके आपको दांतों को चबाना है, जिससे जिस तरीके से आप खाना चबा के खाते हैं और हमें यह पाचन में सहायता मिलता है, ठीक वैसे ही पानी को भी चबा करके ही पीना चाहिए। उसके बाद इसमें अगर आप चाहें, जिन्होंने अपना वेट कम करना है, जिन्होंने अपनी टमी को अंदर करना है, तो यदि आप चाहें तो उस गुनगुने पानी में 2 से 3 ड्रॉप नींबू की और आधा चम्मच शहद डाल लें। अगर आपको सूट करे तो, मतलब अगर आपको सूट नहीं करेगा आप 1-2 दिन उसको पी के देखें, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ सादा पानी में 2 से 3 ड्रॉप नींबू की आप डाल करके इसको पी सकते हैं। आइए अब हम आपको बता दें ध्यान देने योग्य बातें। बहुत ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है,
गुनगुना पानी पीना है, जो टैप से बिल्कुल गुनगुना पानी आता है, या तो आप उसे पिए या आप रात में एक गिलास पानी को भर के रख दें और वही पानी सुबह उठ करके पिए। एक साथ ज्यादा पानी न गटके, सिप सिप करके पानी पिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर से लें। सुबह की हेल्दी रूटीन को जानने के लिए आइए हम एक चीज आपको और बता दें, वॉशरूम रूटीन। पानी पीने के 5-10 मिनट बाद पेट साफ होने की आदत जो बन जाती है ना, इससे सबसे अच्छा होता है कि आपकी लीवर की डिटॉक्स हो जाती है, जिससे आपको गैस एसिडिटी नहीं बनती है। योग प्राणायाम शुरुआत करने वालों के लिए, अनुलोम विलोम 5 मिनट, कपाल भाती 3-5 मिनट, भुजंग आसन और पवन मुक्तासन 5 मिनट। और पेट की चर्बी, गैस, तनाव में ये बहुत मदद करता है। इन तीनों प्राणायाम को करने के बाद में आप एक गिलास आराम से बैठ करके सिप सिप करके पानी पीजिए। और उसके बाद में आप अगर चाहें तो थोड़ा सा वॉक, यानी कि अगर आपकी छत खुली हुई है, अगर छत खुली हुई नहीं भी है तो आप अपने आंगन में गोल गोल घूम सकते हैं, या फिर सामने से जाएं फिर वापस लौटें, फिर सामने से जाएं और वापस लौटें, या तेज चाल आपको चलनी है योग प्राणायाम करने के बाद में और पानी को पीने के बाद में। उसके बाद में जब आपको पसीना आ जाएगा और आपको थोड़ी सी थकावट लगेगी, बस उसी समय आपको आराम कर लेना है और फिर आपका जो भी रूटीन है रोज का उसे ये कर लेना है। एक्सरसाइज के 20 से 30 मिनट बाद ही आपके पास कोई भी नाश्ता, यानी कि आप हेल्दी ऑप्शंस जरूर कर सकते हैं, जैसे फल ले सकते हैं, 4-5 भीगे बादाम खा सकते हैं, ओट्स या दलिया खा सकते हैं, या फिर उबला हुआ एग ले सकते हैं, पनीर यदि हो तो, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पूरे दिन का जो आपको पानी पीना है वो है 8-10 गिलास, थोड़ा थोड़ा करके पिए ताकि ये पूरा रूटीन एक दिन में पूरा हो जाए। तो ये थे कुछ आज के टिप्स जो कि हमने योग के साथ में किए। योग के साथ में पानी का महत्व, पानी को कैसे पीना है, कितना पीना है और किस दशा में पीना है, ये सारी चीजें आपको आज हमने बताई। तो क्योंकि मैं इन सारे रूटीन्स को करती हूँ और आप भी करिए, फिट रहिए। फिर मिलेंगे एक नए टिप्स के साथ में, तब तक करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी का शरीर नसों से, नाड़ियों से, हड्डियों से और ऐसी कई विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसकी कमी से हम स्वतः ही चल सकते हैं। उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट आता है कि नसों की कमजोरी। नसों की कमजोरी से मतलब है कि हाथ पैरों में कमजोरी, झंझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी महसूस होना या नसों का ठीक से काम ना कर पाना। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले जरूरी है कि इसका कारण जाने, जैसे विटामिन B12 की कमी, मधुमेह, सर्वाइकल, कमर की समस्या, थायराइड या लंबे समय तक का तनाव। इसीलिए अगर समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। लेकिन उसके पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ योग के माध्यम से नसों को मजबूत बनाने और

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभु को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है, जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं, अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभू की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व की शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभ अंकाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी ना

शिवाय, जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्रों वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय, श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ, अगत्स्य, गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिन्नाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक। पंचाक्षर मिदम पुण्यम यः पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवा यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है, वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसी इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती। यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

तो दोस्तों, आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं, आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको से रूबरू कराते हैं। भोलेनाथ, भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो। चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप, अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो। गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी। हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है। अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं, तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।

दोस्तों, शिव पूजन में वेल पत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है, माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप, पसीने और तप ऊर्जा से वेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे वेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। वेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि वेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। वेल पत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेल पत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू

रहना है, हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव। अनादि, जिसका आरंभ ना हो। शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं। एक सनातन सत्ता, इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों, अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती उन्हें? शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं। होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गली में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारे प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है, इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो फल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजी आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो यानिसली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान। और देखिए ना, देखते देखते आज मंडे हो गया है और डेट भी 15 के बाद कल 16 और 16 के बाद आज 17 अगस्त है। सो यस, 16 अगस्त का ये दिन और वीक का पहला डे जिसको हम कहते हैं मंडे, और मंडे में हम शुरुआत कर चुके हैं आज के इस मॉर्निंग वाले शो की, लेकिन साथ ही साथ कुदरत ने भी कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है। एंड ऑफ कोर्स ये शुरुआत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत ही कहीं ना कहीं हुई कि भाई ये देखिए आज बारिश के साथ और ऐसी झमाझम बारिश बाहर हो रही है। मुझे लगता है कि ये एक जगह का नहीं, कई जगह का मामला होगा, कई जगह पर बारिशें हो रही होंगी लगातार। फिलहाल आइए आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, क्योंकि आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। मंडे का जब दिन आता है तो थॉट में भी वो बात होती है कि पूरे पूरे वीक को लेकर के चलने वाला थॉट बन जाता है, और यही स्पेशलिटी इसको और भी ज़्यादा ख़ास बना जाती है। सो क्या लगता है आज के थॉट में क्या होने वाला होगा, क्या बता रहा होगा आज का थॉट ऑफ द डे? चलिए सीधे रूबरू कराते हैं आज के मॉर्निंग वाले सुविचार से, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आपके अपने आरजे अदनान के संग।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

आज का थॉट बड़ा ही बेहतरीन बात बता रहा है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आई, क्योंकि आज का थॉट कह रहा है कि भाई हर दिन किए गए सुधार आखिरकार असाधारण उपलब्धियां बन जाते हैं। जी हाँ, हर दिन किए गए सुधार आखिरकार असाधारण उपलब्धियां बन जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि हम जब किसी की तारीफ करते हैं, हम जब किसी को कहते हैं कि ये शख्स बहुत पसंद है हमें, तो उसमें कुछ आदतों को देख रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम आदतों की बात करें तो भाई कोई अपना हेल्थ का ख्याल रख रहा है, आप गए हैं और मार्केट में कह रहे हैं कुछ खाने को लेकर के, तीन चार लोग हैं और उस शख्स ने मना कर दिया, ना मुझे समोसा चाहिए, ना मुझे चाउमीन चाहिए, ना मुझे बर्गर चाहिए, ना मुझे डोसा चाहिए। तो थोड़ा सा लगता है, ध्यान जाता है कि यार जहाँ पे हम सब लोग खाने को एकदम तैयार हैं, आतुर हैं कि हाँ बस अब खा ही लिया जाए, वहाँ पे कोई अपनी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए सीधे सीधे इस वक्त खाने का मना कर रहा है। किसी की तारीफ हम तब करते हैं जब कोई हमारी बातों को सुन रहा हो, आर्गुमेंट ना कर रहा हो, यानी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा होता है ज़्यादातर कि बिना सुने रिएक्शन दे जाते हैं, आधी अधूरी बात सुनी हो कहते हैं हाँ हाँ इस दरअसल इसका ये, और कुछ ऐसे होते हैं कि आप एक ही बात को इवन आप खुद बार बार रिपीट कर रहे हो लेकिन वो सुनते जा रहे हैं, या कोई भी रिपीट कर रहा है और वो सुनते जा रहे हैं। सो ये सुनने की आदत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी चीज़ को करने के बाद एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि कुछ जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तो उनको किसी से कंप्लेंट भी नहीं होती है और वो उस चीज़ को गिनाते नहीं हैं, कहते नहीं हैं। सो इस तरह की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी डेली लाइफ में सुधार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वक्त बाद ये जब एक पर्सनैलिटी की तरह आपके अंदर आ जाएगा तो आप भी कुछ वैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे, आप भी कुछ वैसे ही बन जाएंगे। और सोचिए, जब आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे, जब आप लोगों को प्रॉपर सुन रहे होंगे, जब आप अपनी स्किल पर ध्यान दे रहे होंगे, जब आप अपने रिश्तों पर ध्यान दे रहे होंगे, जब आप गलती पर सॉरी बोलना सीख चुके होंगे, जब आप किसी को अप्रिशिएट करना सीख चुके होंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि जब आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होगी जो लोगों को बेहद पसंद आती है और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक असाधारण पर्सनैलिटी बन जाती है। सो दोस्त, यही बात तो कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे यही कह रहा है कि भाई हर दिन किए गए सुधार आखिरकार असाधारण उपलब्धियां बन जाते हैं। सो अगर हर रोज ये सुधार चल रहा है तो एक दिन जरूर ऐसा आने वाला है कि जब ये असाधारण अचीवमेंट की तरह बन जाएगा, सामने आ जाएगा। ये कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का। सो आज का थॉट ऑफ द डे आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया है और आज के थॉट ने ये बहुत ही प्यारी बात कही है। अब हर रोज़ हम अपने अंदर उन चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे जो हमेशा से हमको लगता है होनी चाहिए, अपने अंदर हर रोज़ उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करेंगे जो लगता है कि इसको अब नहीं होना चाहिए, और इसी तरह हमारा दिन जो है इन सभी चीज़ों को करने में गुजरेगा तो हमारे पास करने को कुछ बेहतरीन होगा और कुछ एक्साइटिंग सी बातें होंगी और हमारी लाइफ जो होगी वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरी होगी। सो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर हम इस थॉट ऑफ द डे को फॉलो करते हुए जाएंगे और लिटरली एक वक्त बाद हम फील करेंगे कि हाँ हम उस जगह खड़े हैं जहाँ पे हमने अपनी कई सारी आदतों को बदला है। फिलहाल आज का ये थॉट कैसा लगा जो कि मंडे स्पेशल बनकर आया है सिर्फ आपसे मुलाकात करने मिलने, चलिए फटाफट से आप बताइए कि आपको इस थॉट को सुन लेने के बाद अब आपके खुद के क्या विचार हैं और क्या आप भी मानते हैं कि एक दिन सच में असाधारण उपलब्धियाँ बन जाएंगे ये छोटे छोटे से सुधार।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई, वक्त हो गया है अब आपको ले चलने का आपके मैसेजेस की तरफ और वापस से वेलकम करने का, क्योंकि इस वक्त आपने ट्यून किया हुआ है हमको फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। और इसी एप्लीकेशन पर वो लोग जो आ चुके हैं चैट पर, यानी आपको सीधे मौका मिल जाता है हमसे जुड़ने का लाइव शो में। तो चलिए आपके मैसेजेस को रीड करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो जो सबसे पहला मैसेज आया है आज के इस मॉर्निंग शो में वो क्रिकेट लवर का आया है। गुड मॉर्निंग डियर सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। हमारी आशु जी का लखनऊ से मैसेज आ चुका है, आपने लिखा है सुप्रभात सर जी। सुप्रभात, आपको भी खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। वाह क्या बात है। और अगर ऐसा कोई आपके साथ है आपकी लाइफ में तो दैट्स वेरी ग्रेट भाई, बहुत अच्छी बात है। एंड इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मैसेज की तरफ, और वो प्रीति जी का है बहराइच से। आपने भी लिखा है सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी, और सावन के सोमवार की आपने शुभकामनाएं दी हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र देपन का राजस्थान से मैसेज आ चुका है, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी। गुड मॉर्निंग महेंद्र, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। प्रीति जी ने बहराइच से बोला है ऑसम थॉट, हेल्थ केयर इज वेल्थ। वाओ चलिए, आपको अच्छा लगा, पसंद आया, बहुत शुक्रिया। जबकि आशु जी ने भी हमारी लखनऊ से बोला है बहुत ही प्यारा सा सुविचार, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और कहीं ना कहीं ये बिलीफ मेरा भी है कि रोज़ अगर सच में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम अपने लाइफ में ऐड करेंगे तो हमारे पास लाइफ में कुछ करने को लेकर बहुत एक्साइटमेंट रहता है ना। जब कुछ करने को लेकर होता है तभी हम कहीं सोच पाते हैं, कोई उद्देश्य बना पाते हैं। अगर कुछ भी नहीं और ना हम कुछ सोच पा रहे हैं तो बड़ा ही बोरिंग सा हो जाता है, और जब ये सुधार एक दिन बाद दिखते हैं तो बहुत बड़ा चेंज आता है। अब या तो बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे हुए, और या तो अपने चेंजेस की तरफ बढ़ जाए। अब ये तो हमको खुद ही डिसाइड करना होगा, ये तो हमको खुद ही सोचना होगा कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। सो अगर हमको समझ में आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ हटाने लायक होता है खुद में से और बहुत कुछ ऐड करने लायक होता है अपने में। तो अब देखिए ना क्या हटाना और क्या रखना है। फिलहाल चूंकि आज नाग पंचमी है तो आप सभी लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सुबह इतना सोना तो बना दिया है और कितनी तारीफें की जाए, जितनी तारीफें की जाए उतनी वैसे कम ही लगती है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम का मॉर्निंग वाला शो। गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

जिसका आपको था इंतजार, वो अपडेट्स लेकर आया आरजे अदनान। वो घड़ी आ गई जब जॉब के बारे में हम बताएंगे और आप तो अप्लाई करते जाएंगे। ऑलराइट, सो काफ़ी वक्त से ये मैंने कोई जॉब अपडेट नहीं दी थी और बीच में मेरे पास पर्सनली भी कई सारे कमेंट्स आए थे कि भाई कुछ जॉब अपडेट्स भी बीच में अब दे दी जाए क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है। तो चलिए भाई, आपके हुक्म की तामीर करते हुए, आपके हुक्म को सर आँखों पर रखते हुए, हमने फ़िलहाल एक अपडेट निकाली है जो कि रेलवे की है और ये भी हाल ही में आई हुई है। सो क्या अपडेट है, ये 14 तारीख को ये अपडेट आई है और ये है RRB JEE वैकेंसी 2026 के बारे में, जहां रेलवे में 3993 पदों पर ये वैकेंसी आई है और ये जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दरअसल चलिए अब आपको ज़रा विस्तार से बताते हैं कि ये वैकेंसी है क्या। सो रेलवे में जो है जॉब करने के लिए जो भी कैंडिडेट्स करना चाहते हैं अप्लाई, उनके लिए है ये जॉब। और RRB की जूनियर इंजीनियर यानी JEE भर्ती में ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, उसके साथ ही JEE का जो विस्तृत विज्ञापन है वो भी जारी हो गया है। सो कुल 3993 जो वैकेंसीज हैं इस भर्ती के ज़रिए भरी जाएंगी। ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स JEE भर्ती के फॉर्म खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको www.rrbapply.gov.in पर एक्टिव हो गया है और इसी पर ही मिलने वाला है। एक बार वापस से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जान लिए, क्योंकि हो सकता है कि भाई आप भी इंटरेस्टेड हों और आप भी अप्लाई करना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए या फिर वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये सारी जानकारियां ज़रूर पहुंचा दिया करिए, ताकि भाई किसी का भला पूरी लाइफ टाइम के लिए हो जाए। और ऐसा हम चाहते हैं भी कि भाई ऐसा आप सुनते रहिए और आपको अपडेट्स मिलती रहे। सो फिलहाल इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrbapply.gov.in पर आप जो है वो जा सकते हैं। और फिलहाल ऑपरेटर जी के ज़रिए चैट बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया गया, आप यहां से भी चैट बॉक्स से भी देख सकते हैं। सो रेलवे ने सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयज़ नोटिस यानी Gen 4 2026 के जो अंडर में है इस भर्ती की डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी की है और इसी के साथ में 14 अगस्त से जो है वो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आज 17 तारीख है और 14 से इसको स्टार्ट कर दिया गया है, जबकि इसकी लास्ट डेट जो है वो नेक्स्ट मंथ 13 सितंबर 2026 तक प्रोसेस आप पूरा कर सकते हैं। सो करीब इसमें एक महीने का वक्त है और वही एप्लीकेशन फ़ीस जो भरने की लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2026 है। सो JEE भर्ती में कौन अप्लाई कर सकता है और इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब कुछ आपको हम बताते हुए चलते हैं। सो चलिए भाई आपको बताते हैं कि RRB JEE भर्ती के लिए योग्यता आखिर क्या क्या चाहिए। अगर योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या बेसिक स्ट्रीम से सब स्ट्रीम से मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो। इसके अलावा 3 का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री इन सब की हो। 3 साल का डिप्लोमा जो है मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोलर इंजीनियरिंग की बेसिक सबस्ट्रीम किया हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री वाले भी संबंधित पद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पद से जो संबंधित योग्यता रखने वाले कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन के योग्य माने जाएंगे। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए और कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 1 जनवरी 2027 के हिसाब से 33 साल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ऊपरी उम्र के नियम के हिसाब से छूट भी दी जाएगी, जिसमें SC ST अभ्यर्थियों को 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलने वाली है। सो अब बात आती है कि भाई ज़रूरी जानकारियाँ क्या है। तो संस्थान का नाम हमने आपको बता ही दिया है, RRB यानी
रेलवे भर्ती बोर्ड, पद जो है वो जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल के लिए है। पदों की जो संख्या है वो 3993 है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrbapply.gov.in पर। आवेदन जो शुरू हो चुका है वो 14 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट इसकी अगले महीने 13 सितंबर 2026 रहने वाली है। सैलरी की अगर हम बात करें तो छठवें और सातवें वेतन आयोग के मुताबिक 35,400 रुपये इसकी सैलरी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में CBT-1, CBT-2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसके अलावा भर्ती सिलेक्शन कैसे होगा ये हम आपको बताने वाले हैं आने के बाद, और RRB JEE भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ले रहे हैं एक छोटा सा शॉर्ट सा वाला म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपके RJ अदनान हाजिर हैं बताने के लिए, क्योंकि हमने बताया ना काफ़ी वक्त हो गया था और किसी वैकेंसी के बारे में फ़िलहाल हमने नहीं बताया था, और अब लगातार जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगे हम आप तक ऐसी ही वैकेंसीज की जानकारी पहुंचाते रहेंगे।

0: अरे भाई, फिलहाल कुछ छोड़ने छाड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी देखिए हम वापस आ गए हैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स साझा करने के लिए, और आपको हमें बताना है कि भाई इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स हम बात कर रहे हैं आरआरबी की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है उसको लेकर के, यानी भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है और साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है, ये अब डिटेल्स हम आपको बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो आरआरबी जेई का फॉर्म फिल करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले तो www.rrbapply.gov.in पर जाना होगा, जो कि ऑपरेटर के ज़रिए चैट पर भी आपके डाल दिया गया है। वो लोग जो सुन रहे हैं एप्लीकेशन से, वो एक्सेस कर सकते हैं चैट पर आकर के भी। और यहाँ सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स के ज़रिए आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको ईमेल, मोबाइल नंबर की डिटेल्स चाहिए होगी। इसके बाद लॉगिन करके अपना नाम, कैटेगरी, अपनी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, अपने मार्क्स और अन्य की जो डिटेल्स है उसको बहुत आराम से आपको फिल करते जाना है। इसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज़ में अपलोड करना है, क्योंकि उसमें साइज़ दिया होता है, इसे हैवी नहीं होना चाहिए, तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपलोड करना है। एप्लीकेशन फीस का आपको भुगतान करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। सो बात आती है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है, तो आपको बता दें SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD महिला, ट्रांसजेंडर और अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये फ़ीस चुकानी होगी, और क्लियर कर लेंगे अगर स्टेज तो उन्हें 500 में से 400 रिफंड होकर के वापस मिल जाएंगे। वहीं रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पूरी फीस रिफंड में मिल जाएगी। सो ये रही पूरी जानकारी जो कि हमने आपको बता दी, और हमने आपको बताया ही है कि रेलवे में ये 3993 पदों पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर की भर्ती के बारे में हमने आपको बताया। क्राइटेरिया क्या है, कैसे होना है, क्या क्या प्रोसेस होंगे, और साथ ही कब लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कितना देना है, सब कुछ हमने आपको विस्तार से बता दिया। आई होप कि भाई ये जानकारी आपके काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है। फ़िलहाल मुझे लगता है कुछ वक्त के लिए गुमशुदा हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? आप भी होना चाहते हैं? चलिए एक काम करते हैं, मिल करके ही गुमशुदा हो जाते हैं।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें

0: एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। चूँकि आपको बहुत सारी बातें बताते हैं तो आज कुछ ऐसी ज़रूरी बात है जो आपके लिए काफ़ी काम की। अब देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही बारिश होती है चाय पीने का मन काफ़ी ज़्यादा करने लगता है, एंड आई थिंक कि शायद आप भी इस वक्त चाय ही का घूंट पी रहे हों। हो सकता है, क्योंकि ये जो बारिश है, ये जो मौसम है, ये चाय पीने के लिए इंस्पायर कर देता है। जिनकी मोहब्बत है चाय, वो तो पूरा पूरा वक्त देते हैं चाय को पीने में, लेकिन जिनकी नहीं भी है वो भी दोस्ती यारी कर ही रहते हैं। लेकिन इसी के साथ में जानना ये ज़रूरी है कि किस वक्त चाय पीना हमारे लिए नुकसानदायक ज़्यादा हो सकता है, इस बात को ज़रा जान लिया जाए, क्योंकि ये है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ऑफकोर्स आपकी हेल्थ का हमको ख्याल हमेशा ही रहता है, तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा वक्त है जब हम चाय पीते हैं तो वो गड़बड़ होता है, और किन बातों का ध्यान रखें तो हम इनसे बच सकते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

सो देखिए भाई, गलत वक्त पर चाय पी जाए तो कहीं ना कहीं ये सेहत के लिए नुकसानदायक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो हम चाय सुबह और शाम यूजुअली दो टाइम सुनते हैं, और जो लोग बिजनेसमैन हैं जो दुकान पर बैठते हैं उनके पास तो 10 से 11 टाइम पीने का बहाना होता है कि भाई कोई आ गया था। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है कि किसी भी चीज़ की जो है वो ज़्यादती हमको पता है कि भाई वो नुकसानदायक हो सकती है। अच्छा, चाय के बारे में बताएं तो देखिए, चाय कॉफ़ी के जो टैनिन हैं और जो पॉलीफेनॉल्स हैं, ये हमारे खाने के जो पोषक तत्व हैं इसको ब्लॉक कर देते हैं। सबसे ज़रूरी बात इस बात को जानना है कि चाय कॉफ़ी के टैनिन और पॉलीफेनॉल्स, ये हमारा जो खाना होता है उसके जो पोषक तत्व होते हैं जो कि जाने चाहिए बॉडी में, इसको ब्लॉक कर देते हैं। सो अगर रिसर्च की बात करें तो ये आदत बॉडी में आयरन का जो अब्सॉर्प्शन है वो 39-70% तक घटा सकती है। ज़रा सोचिए, 39-70% तक ये घटा सकती है जो आयरन का अब्सॉर्प्शन है। इसके अलावा एनेमिक मरीज़ हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या टीन एज लड़कियां हैं, वो इस आदत से ज़रूर दूरी बनाएं क्योंकि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये वल्नरेबल जो है वो पॉपुलेशन है इस चीज़ को लेकर के। सिर्फ शाकाहारी डाइट लेने वाले और एसिडिटी गैस के मरीज़ों की प्रॉब्लम भी इससे बढ़ सकती है। सो बात आती है कि ठीक है, अगर इतने लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर सही तरीक़ा क्या है। सो तो सही तरीक़े के बारे में भी हम आपको ज़रा बता देते हैं। देखिए, खाने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही चाय या कॉफ़ी आप पिए। अगर आप ये करते हैं कि भाई आप खाने के फौरन बाद या थोड़ी ही देर बाद ले लेते हैं तो ये आदत आपके लिए नुकसानदायक होने वाली है। जैसा कि हमने बताया, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तो आपको गैप देना ही चाहिए, ताकि अगर आपने खाना खाया है तो इतने गैप के बाद ही आप चाय और कॉफ़ी लें। इसके अलावा हेल्दी ऑप्शंस हैं जैसे छाछ, ऑफकोर्स गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त होता है, पीने में भी काफ़ी मज़ा आता है। सौंफ और जीरे का पानी, आय हाय हाय हाय भाई, मसाले में तो जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो मज़ा आता है, और जब हम इसको पानी के साथ इसका पानी पीते हैं तो ये हमारे पेट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो हल्का गुनगुना पानी, ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर है। हमने क्या कहा था कि अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम चाय को रिप्लेस कर दें छाछ से, चाय को रिप्लेस कर दें हम सौंफ जीरे के पानी से या हल्के गुनगुने पानी से, तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाय बंद कर दिया जाए, बस ये है कि अगर हमारा एक्स्ट्रा टाइम भी हम चाय पीते हैं, ज़्यादा हम पी रहे हैं, या कभी कभी हम सोचें कि चलो पूरे वीक हम सुबह और शाम पी रहे हैं, तो किसी एक एक दिन करके निकाल करके बीच बीच में, कभी दूसरे दिन, कभी चौथे दिन, इस तरह से एक टाइम के जो चाय है उसको रिप्लेस कर सकते हैं सौंफ जीरे के पानी से या फिर छाछ से या फिर गुनगुने पानी से, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन बन जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि भाई गलत वक्त पे जो एनेमिक मरीज़ हैं, जिनको खून की कमी है, टीन एज लड़कियाँ हैं, प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, इनको ज़रूर इससे बचना चाहिए। और जो सिर्फ शाकाहारी डाइट लेने वाले हैं और एसिडिटी गैस के जो मरीज़ हैं उनको भी इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो चाय कॉफ़ी जो है अगर ये गलत वक्त पर पीते हैं तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसलिए इन सारी ही चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आप तक ये बात पहुँच गई है और आप इस बात से इत्तेफाक भी रख रहे हैं और आप इस बात को मान भी रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में लेकर भी आने वाले हैं, तभी तो ये सच्ची बात होगी कि हाँ हमने सुना और समझा।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही, और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है।

तो मुझे पहले तो एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी घर में किचन में रखी हुई चीज़ होती है जिसको चोट लगने से लेकर चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। जी हाँ, अब आप ज़रा इस बात को सोचिए और फिर बताइए कि किचन में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जब चोट लगने से लेकर के, चाहे चोट लगता है कोई जगह, कोई ज़ख़म होता है या फिर अपने चेहरे का ग्लो बढ़ाना होता है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में हम बताने वाले, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि भाई आप अंदाज़ा लगा के क्या आप बता सकते हैं कि आखिर हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ज़रा सोचिए सोचिए, और ये किचन में ही पाया जाता है जो आपके चोट से लेकर के आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपको खूबसूरत बनाता है। ज़रा सोचिए, हाँ फिर कॉमेंट करके बताइए चैट बॉक्स पर।

0: सो आंसर इज हल्दी, हल्दी औषधि है, एंटीसेप्टिक है वो जो हल्दी है. ओके, सो मैंने सवाल पूछा था ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके किचन में पाई जाती है और वो चोट लगने के साथ साथ चेहरे के स्किन का ग्लो बढ़ाती है. वैसे अगर मैं खाली ये कहता कि चेहरे के स्किन का ग्लो बढ़ाती है तो यकीन मानिए शायद थोड़ा सा मुश्किल था आपका बता पाना, लेकिन जैसे ही चोट का नाम लिया हमने आपको कंफर्म हो गया भैया ये हल्दी है, हल्दी लगा लो फटाक से. तो चलिए बताते हैं हल्दी को लेकर के, जिसको चोट लगने से लेकर के चेहरे के ग्लो को बढ़ाने तक हल्दी सभी की पहली पसंद होती है. तो ज़रा एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस हल्दी के बारे में, आइए इस बात को जान लेते हैं आज अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में.
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite, RJ Khan.

सवाल ये आता है कि भाई हर चीज़ के लिए हल्दी आखिर क्यों? तो देखिए, खाने का टेस्ट बढ़ाने के अलावा क्या दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पसंदीदा मसालों में से एक हल्दी हमारी सेहत के लिए भी कमाल कर सकती है? सवाल ये आता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में तो हम सुनते हैं हल्दी हल्दी, पर क्या सेहत के लिए सच में ये कमाल करने वाली है? तो चलिए अब आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं हल्दी के बारे में। सो हल्दी की करीब 30 किस्में पाई जाती है। शायद अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन 30 तरह की किस्में पाई जाती हैं हल्दी की, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? एशिया में, अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका के खाने में काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ हमारे यहाँ बनती है, अक्सर हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो हल्दी का इस्तेमाल बहुत ही आम बात है, और यहाँ लंबे वक्त से ये माना जाता रहा है कि इसमें एंटीसेप्टिक और सूजन को कम करने वाले भी गुण होते हैं। सो भारत में ये हल्दी सेरेमनी का भी हिस्सा है। ऑब्वियस सी बात है, भारत तो इसको लेकर के सेरेमनी बाकायदा सेलिब्रेट करता है शादियों से पहले, और शादियों में पहले की एक रस्म है जिसमें हल्दी का लेप भी लगाया जाता है। सो चूँकि हल्दी की सप्लीमेंट्स, जिनमें आमतौर पर क्या होता है, करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है, और माना जाता है कि यही इसके सेहतमंद गुणों के लिए ज़िम्मेदार है, यानी यही है जो हमारी सेहत के लिए ज़िम्मेदार है, जिसको बोलते हैं करक्यूमिन। ठीक, इसको हड्डियों और जोड़ों की बेहतर सेहत के लिए करके इम्यून सिस्टम तक मजबूत करने को लेकर हर चीज़ में फ़ायदेमंद बता करके इसको बेचा भी जाता है, यानी चाहे हड्डियों के जोड़ हों या बेहतर सेहत को पाना हो या फिर अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना हो, हर चीज़ में इसका फ़ायदा बताया जाता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो हल्दी के इन फ़ायदों को लेकर के अभी शक में हैं। जी हाँ, सो अमेरिका के मिनासोटा की केमिस्ट डॉक्टर कैथरीन नेल्सन ने करक्यूमिन पर हुए 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर की जो है वो कहीं ना कहीं समीक्षा की है, और अब डॉक्टर कैथरीन नेल्सन जो कि केमिस्ट है अमेरिका की, क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हमने पाया है कि इसके बारे में दावे तो ऐसे किए जाते हैं जैसे ये हर बीमारी का काम आ सकता है, लेकिन असल में शायद इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। हल्दी की समस्या उसकी रासायनिक संरचना में हो सकती है, जिसकी वजह से इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना आसान नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है और रिसर्च के दौरान किए जाने वाले टेस्ट में भी दखल दे सकती है, यानी कई बार ऐसा लग सकता है कि ये काम कर रही है जबकि सच में ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहना है डॉक्टर कैथरीन नेल्सन का, जो कि केमिस्ट हैं अमेरिका की। कैथरीन कहती हैं कि शरीर हल्दी को अच्छी तरह से सोख नहीं पाता है। मुंह से लेने का इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा शरीर के खून में पहुंचता है, और इसी वजह से कई लोग इसके साथ काली मिर्च लेते हैं ताकि बॉडी इसे बेहतर तरीके से जो है वह एब्जॉर्व कर सके। किसी चीज़ को काम करने की दवा बनाने के लिए केमिकल स्ट्रक्चर के मामले में ये सचमुच सबसे ख़राब चीज़ों में से एक है। सो अब बात क्या है? दरअसल ये है कि हल्दी पर दशकों से बहुत रिसर्च हुई है, लेकिन इसके नतीजे जो हैं वो अक्सर अलग अलग होते हैं और स्टडीज़ की क्वालिटी भी एक जैसी नहीं होती है। सो कनाडा के ओंटारियो में मौजूद लंदन हेल्थ साइंसेज सेंटर में किडनी की बीमारी के जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अमित गर्ग, वो कहते हैं कि हल्दी के फ़ायदों का दावा करने वाली कई रिसर्च इंसानों पर नहीं की गई थी। उन्होंने और उनके साथियों ने अब तक की दो सबसे बड़ी स्टडीज़ की हैं। पहली स्टडी में ये पता लगाने के लिए था कि क्या करक्यूमिन एओर्टिक एंज्यूरिंग्म रिपेयर करवाने वाले लोगों में किडनी चोट और सूजन को रोक सकता है, लेकिन 600 मरीजों पर किए गए ट्रायल में उन्हें कोई फ़ायदा दिखा नहीं फिलहाल। इसके बाद उन्होंने किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों पर करक्यूमिन के एक छोटे माइक्रोपार्टिकल के रूप में इस्तेमाल करके देखा कि इससे उनकी किडनी की सेहत बेहतर होती है या बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन इस बार भी वो ऐसा कोई सबूत नहीं जुटा सके जिससे ये साबित हो सके कि करक्यूमिन से फ़ायदा होता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर हल्दी हज़ारों सालों से खासकर भारत में दवा और इलाज के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो इसकी वजह क्या है? देखिए, प्रोफेसर अमित गर्ग जो कि किडनी से जुड़े बीमारी के विशेषज्ञ हैं कनाडा में, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इस मामले में खुले दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन एक मानक ज़रूर होना चाहिए।
अगर ये हम दावा कर रहे हैं कि किसी चीज़ का कोई ख़ास फ़ायदा है, तो उसके पीछे मजबूत और हाई क्वालिटी वाली वैज्ञानिक रिसर्च होनी चाहिए। हालांकि अगर लोगों को हल्दी से बना खाना पसंद है तो मैं उन्हें इसे खाते रहने की सलाह ज़रूर दूंगा। सो फिलहाल ये फ़ायदेमंद तो है, लेकिन एक बात जो सामने आई है रिसर्च से कि जिस तरह के दावे होते रहे हैं अभी उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। हाँ, कई चीज़ों में फ़ायदा लोगों को होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि बताया गया कि भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसा है केमिकल कि ये अलग अलग तरह से अलग अलग रिजल्ट्स देता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है रिसर्चर्स के बीच में। हालांकि आप हल्दी का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और आपको हल्दी को लेकर के क्या बिलीफ है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर आप भी हल्दी के जबरा फैन हैं तो कहीं ना कहीं आप दूध में हल्दी मिलाते होंगे, चोट लगने पे हल्दी रखते होंगे और कई बार हल्दी यूं ही पानी के साथ गटक जाते होंगे, है ना।

0: भाई मोहन एक बात बता।
1: हाँ रिंकू पूछ।
0: कभी स्टेडियम में गर्मी क्यों नहीं लगती है?
1: भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा गर्मी नहीं लगती, पर मुझे नहीं पता तू ही बता क्यों नहीं लगती।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999। अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे।

0: अभी कैसी अपडेट जिसको सुनकर के आप हैरान होने वाले हैं एंड लिटरली आप सोचने वाले हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, और कभी ऐसा हुआ तो क्या आप भी कुछ इस तरह से अपनी हेल्प करा सकते हैं चैट जीपीटी से। आप कोई कहे कि भाई कोई खोई हुई चप्पल अगर चैट जीपीटी ढूंढ कर दे दे तो कितना यकीन करेंगे, और क्या आपको बिलीव होगा कि हाँ चैट जीपीटी खोई हुई चप्पल भी ढूंढ कर दे सकता है? नहीं ना। चलिए हम बताते हैं, फिलहाल ये कारनामा सही साबित हुआ है, कैसे आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

दरअसल हुआ ये है कि भाई खोई हुई चप्पल चैट जीपीटी ने खोजी है। आप थोड़ा सा यकीन शायद ना कर पाए, लेकिन आपको बताते हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर, चूंकि हमको पता है कि भाई भीड़ बहुत होती है, सो अपनी चप्पलें खो जाने के बाद गोवा के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल और एक्सप्लोरर शुभांग बोरकर ने चैट जीपीटी की मदद से मदद लेने का अनोखा तरीका अपनाया और मंदिर के बाहर सैकड़ों जोड़ी चप्पलों के बीच अपनी चप्पल को ढूंढने के लिए इनको चूंकि मुश्किल हो गया था, तो इन्होंने एआई से पूछा कि भाई चप्पल कहाँ है। दरअसल शुभांग ने अपनी पहली चप्पलों की तस्वीरें चैट जीपीटी को भेजी और फिर मंदिर के बाहर रखी चप्पलों के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें खींच करके चैट बॉट को भेजते रहे। उन्होंने चैट जीपीटी से इन तस्वीरों को स्कैन करके अपनी चप्पलों की पहचान करने में मदद मांगी। एआई ने आखिरकार खोज के निकाल लिया जोड़ी। सो कई तस्वीरों को देखने के बाद, उनका मिलान करने के बाद चैट जीपीटी ने एक ऐसी जोड़ी की तरफ इशारा किया जो शुभांग की चप्पलों से मैच करती नजर आई। सो शुभांग ने इसे पूरे एक्सपीरियंस का वीडियो इंस्टाग्राम पर यूज्ड चैट जीपीटी को फाइंड टू माई लॉस्ट क्लॉग्स के नाम पर शेयर किया है। सो एआई का इस्तेमाल भी चूंकि कमाल का ये दिखा और महाकाल मंदिर के बाहर, चूंकि बाहर चप्पल ढूंढने की छोटी सी परेशानी ने एआई के इस्तेमाल का एक दिलचस्प एग्जाम्पल पेश किया। सो ये घटना हमको दिखाती कि लोग चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल अब सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी रोज़मर्रा की छोटी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी नए और क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। सो सच में खोई हुई चप्पलों का वापस से आना और उसके बाद मिल जाना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। वैसे इस बात को जान करके क्या आपको सच में हैरानी होनी हो रही है? क्योंकि मुझे तो वाकई काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ये हुआ कैसे। बट अच्छी बात है कि भाई शुभांग ने जिस तरह से क्रिएटिव तरीके से चैटबॉट को तस्वीरें भेजी और पूछते रहे कि इनकी पहले की तस्वीर भेज करके कि भाई इससे मिलान करके मुझे बताओ कि इस पूरी चप्पलों की भीड़ में मेरी वाली चप्पल कहाँ है, और उस तरह से चैट जीपीटी ने हेल्प करते हुए स्कैन किया और बताया फाइनली कि भाई आपकी चप्पल यहाँ पर है और ऐसे हो सकती है। तो ये एक सच में बहुत ही लाजवाब उदाहरण है। फिलहाल इसी के साथ चलिए चलते हैं भाई, आपकी तरफ से कंटेंट भी आ गए हैं और प्रीति जी बहराइच से भेजी हैं, स्वास्थ्य ही धन है। लिखती हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है मानव जीवन में। लाख धन हो लेकिन यदि हम अस्वस्थ हैं तो सब कुछ बेकार। जो इंसान करता है अपने धन पे घमंड और सदा रहता है अकड़ा अकड़ा, ऐसे इंसान को कोई नहीं करता पसंद। प्रेम व्यवहार से जो इंसान होता सदा नम्र, उसे हर इंसान पसंद करता। मधुर वाणी अधिकतर हर इंसान को आती रास, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अनेकों धन न देता अस्वस्थ इंसान का ध्यान, बल्कि इंसान ही आता है काम। इसलिए कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। सदव्यवहार हम स्वस्थ रहकर ही कर पाएंगे, इसलिए हेल्थ इज वेल्थ। क्या बात है। सो हेल्थ को इतने अच्छे से डिफाइन करने के लिए और साथ ही उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारी प्रीति जी फ्रॉम बहराइच। इसके बाद यामिनी चौहान जी लिखती हैं कि कभी कभी दो दिल प्यार की वजह से नहीं, दर्द की वजह से करीब आते हैं। एक दूसरे के जख्मों को सहलाते सहलाते कब एक दूसरे के मरहम बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे रिश्ते हमारे साथ रहे और ये ज़रूरी नहीं, मगर एक दूसरे के भीतर उनकी मौजूदगी अक्सर उम्र भर रहती है। फिर एक दिन रास्ते अलग हो जाते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक खामोश सी जगह हमेशा बची रहती है, जहाँ ना कोई शिकायत पहुँचती है ना कोई दूरी। बस दो अधूरे लोग एक दूसरे की याद में थोड़े से मुकम्मल रह जाते हैं। क्या बात है। मैं फिर भी तुमको ही चाहूंगा, लिखा है कुंदन राज दत्त उर्फ निश्चल जी ने। चाहे राहों में कितने ही कांटे क्यों ना आए, मैं फिर भी तुमको ही चाहूंगा। चाहे तुम मुझसे कितनी दूर चली जाओ, मैं फिर भी तुम्हारे पास आना चाहूंगा। तुम्हारी यादों में हर शाम सजाऊंगा, तुम्हारे ख्वाबों में हर रात बिताऊंगा। तुम भूल भी जाओ अगर मेरा नाम, मैं फिर भी तुम्हें अपना कहता जाऊंगा। तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ लूंगा, तुम्हारे दर्द को अपना समझ लूंगा। तुम रूठोगी तो प्यार से मनाऊंगा, तुम रोगी तो सीने से लगाऊंगा। तुम्हारी मुस्कान मेरी खुशी होगी, तुम्हारी खुशी ही मेरी जिंदगी। तुम बदल जाओ तो भी शिकवा ना होगा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम ना होगा। वक्त चाहे हमें कितना आजमाए, किस्मत चाहे कितनी दूर ले जाए, तुम्हारे नाम की धड़कन रहेगी।
तुम्हारी चाहत दिल में जिंदा रहेगी। मैं हर जन्म में तुम्हें ही चाहूंगा, हर दुआ में तुम्हें ही मांगूंगा। तुम साथ रहो या ना रहो मेरे, तुम रहोगी हमेशा ख्यालों में मेरे। तुम्हारी तस्वीर आंखों में बसाऊंगा, तुम्हारे बिना भी तुम्हें महसूस कर पाऊंगा। अगर मोहब्बत मेरी अधूरी रह जाए तो भी ये दिल न तुम्हें बदनाम ना कर पाए। तुम्हारी यादों को सीने से लगाऊंगा, तन्हाई में भी तुम्हें मुस्कुराकर याद करूंगा। तुम मेरी किस्मत में हो या नहीं, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। दुनिया चाहे मेरे इश्क को ठुकराए, मेरा दिल तुम्हें फिर भी अपनाए। आखिरी सांस तक यही अरमान रहेगा, मेरे दिल में तुम्हारा ही नाम रहेगा। तुम मिलो तो जिंदगी खूबसूरत होगी, ना मिलो तो मोहब्बत पूरी होगी। क्योंकि इश्क में शर्तें कहाँ होती है, सच्ची चाहते कभी ख़त्म कहाँ होती है। इस जन्म में तुम मेरी बनो या ना बनो, मैं फिर भी तुमको ही चाहूँगा। क्या बात है, बहुत इंटेंस लिखा है, थैंक यू सो मच। मिस्टर आकाश लिखते हैं नवदीप वेस्ट बंगाल से कि हमें घायल करने का इरादा है क्या ये जो कातिल तस्वीरें पोस्ट किए जा रही हो। अर्ज है, हमें घायल करने का इरादा क्या जो यूं कातिल तस्वीरें पोस्ट किए जा रही हो। कभी बालकनी से कभी टेरेस पर से हमें धूर कर धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रही हो। और कह देना अपने भाई से हमें बेरोजगार न बुलाएं, कि कहीं तुम्हारे दरबार के बाहर भूख हड़ताल पे ना बैठ जाऊं। कि कह देना अपने भाई से हमें बेरोजगार न बुलाएं, कहीं तुम्हारे दरबार के बाहर भूख हड़ताल पर न बैठ जाऊं। इतना भी मासूम मत बनो, आंखों की साजिशें बता रही मेरी मोहब्बत की आदत बनते जा रही हो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और इसके बाद गुंजन जौहरी जी लिखती हैं सहारनपुर से कि कुछ खत अलमारी में नहीं दिल की तहों में रखे जाते हैं। उन पर वक्त की धूल तो जम जाती है, पर शब्द कभी बूढ़े नहीं होते। लिखे थे जो अल्फाज कभी आज मेरी उंगलियों में धड़कते हैं, बस फर्क इतना है कि अब उन्हें भेजने का पता नहीं बचा। एक अनकहीं खामोशी है अब जब सवालों का कोई जवाब नहीं। इंतजार करना सिखा दिया वक्त ने बिना शिकायत बिना शोर। मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश नहीं, बस तुम्हें मुस्कुराते हुए याद रखने की कोशिश की है। क्योंकि हर चाहत मुकम्मल हो ये ज़रूरी तो नहीं। कभी किसी की यादों के पिटारे में मेरे नाम का कोई ख़त मिल जाए तो उसे पढ़कर बस इतना समझ लेना कि किसी एक की चाहत थी अधूरी सी बेइंतहा, जिसने खुशी नहीं एहसासों को चुना और यही सबसे उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। वाह क्या बात है, कितना खूबसूरत लिखा है आप सभी लोगों ने, कितना उम्दा भेजा है। माय गॉड, बहुत बहुत ही उम्दा, बहुत ही अलग। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने लिखा। ना सिर्फ लिखा बल्कि अपने जज्बातों को हम तक भी पहुंचाया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, लिखने वालों और पहुंचाने वालों। फिलहाल प्रीति जी ने कहा है सभी की पंक्तियां औसम। मिश्रा जी ऑप्टिकल गोंडा से हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। और महेंद्र लिखते हैं, वो तो अलग बात है सर जी, हमारे राजस्थान में सर्दियों में हल्दी की सब्जी बनाकर खाते हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है, हमारे बुजुर्गों का मानना है। इससे घुटनों और कमर के दर्द में नहीं होता और भविष्य में कभी हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच बताने के लिए सर जी, कच्ची हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है ऐसा कहना है आशु जी का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो भी इस वक्त ट्यून किए हुए हैं फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। एंड हाँ, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, इतना ज़्यादा प्यार दिया। सो आप सब लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फिलहाल अब आरजे नान के चलने का वक्त आ गया, आइए इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं और हाँ आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप बने रहिए अपने 89.6 एफएम पर।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: 89.6 FM के श्रोतागण, आज हमारी गांव की गूंज की टीम एक नए ऐसे गांव में है जहां मिट्टी खुद संगीत को पैदा करती है। हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के उस सुंदर और ऐतिहासिक गांव पिपराइच में।
5: तो चलिए चलते हैं, आज बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं उस गांव में और वहां जा कर के भोजपुरी गाने गाते हैं, क्योंकि भाषा वही अच्छी लगती है जहां जन्मी हो।
6: आओ आओ सब लोग, समता, जया, गीता दीदी, अरे इधर आइए आइए। सबसे पहले मिलते हैं यहाँ की दादी माँ से।
3: दादी माँ नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। दादी जी, हम लोग आज यहाँ भोजपुरी गीत सुनने और सुनाने आए हैं और साथ में सीखने भी आए हैं।
6: बिटिया, भोजपुरी यानी खेतों की हरियाली का स्वर, गंगा घाट से निकली आरती का स्वर, सावन की कजरी और बेटी की विदाई में निकला करुणा और आशीर्वाद से भरा हुआ
3: गांव के गूंज के प्यारे श्रोतागण, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भोजपुरी आखिर है कहाँ की भाषा।
6: भोजपुरी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार के पश्चिमी और उत्तर हिस्से और झारखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है।
5: हाँ हाँ बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बनारस, मऊ, आजमगढ़ जैसे जिलों में भी भोजपुरी की मिठास हर घर घर में पाई जाती है।
6: और बिहार में छपरा, आरा, बक्सर, सिवान, सारण, वहाँ तो हर गली में भोजपुरी के लोकगीतों की गूंज सुनाई देती है।
3: और मालूम है आपको, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और नेपाल तक भी भोजपुरी बोली जाती है। यह सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि प्रवासी भारतीयों की पहचान है।
6: तो आओ चलें, हम सब मिलकर एक प्यारा सा भोजपुरी गीत गाते हैं।

0: तुम लोग जानती हो ना, भोजपुरी का नाम पड़ा है भोजपुर क्षेत्र के नाम पर, जो बिहार में स्थित है।
1: इस भाषा में संस्कृत, हिंदी और मगही का सुंदर संगम मिलता है।
2: भोजपुरी गीतों में जीवन के हर रंग हैं, जन्म, विवाह, खेती, तीज त्योहार, होली और छठ भी।
3: छठ पर्व के गीतों की बात ही अलग है, उसमें आस्था और माँ गंगा के प्रति समर्पण झलकता है।
1: तो चलिए चलते हैं, क्यों ना हम लोग भी एक प्यारा सा सुंदर सा भोजपुरी गीत गा लें।

0: अरे देखिए ना, भोजपुरी गाते बतियाते हम लोग कितनी दूर निकल आए, और वो देखिए हम लोग तो खेतों के पास आ गए हैं, जहाँ हमारे किसान भाई कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और साथ में सुंदर सुंदर भोजपुरी गाने भी गा रहे हैं।
1: क्योंकि गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए थकान भी भाग जाती है और मन भी खुश रहता है। पसीने की हर बूंद अमृत सी लगती है और माटी की सुगंध तो बस मन में बस जाती है।
2: मालूम है किरण, पहले शादी में 3-3 दिन तक लोकगीत चला करते थे।
1: अच्छा,
2: दुल्हन की बहनें, भाभियां, सहेलियां सब मिलकर खूब गीत गाती थी, बड़ा मजा आता था।
3: और होली पर तो सब लोग एक साथ गाते हैं और खूब भर भर कर गुलाल और रंग भी खेलते हैं।
1: सच में कितना ज्यादा मजा आता होगा। आओ हम लोग भी मिलकर कुछ भोजपुरी गीत गाते हैं। आओ सब लोग, अरे बुला रही हूँ, आओ आओ।
4: दिन भर चाहे

0: लोग पिपराइज गांव के घाट के पास खड़े हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और जैसे लग रहा है कि हवा में भी संगीत खुला हुआ है।
1: सच कहा तुमने समता, इस घाट को देखते ही एक ही पर्व याद आता है।
2: क्या
1: पूछो? कौन सा?
2: कौन सा?
1: छठ महापर्व है ना। कितना सुंदर है यहाँ का दृश्य। देखो जगह जगह पे दीपक जल रहे हैं, चूल्हे पर लोगों के पकवान पक रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं रुक जाऊं, बस जाऊं।
3: छठ पर्व पर पानी, सूर्य देवता की पूजा, माँ गंगा का आशीर्वाद और भोजपुरी गीतों की मधुर धुन सुन करके कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
2: छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहले नहाए खाए, फिर खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ। और इन 4 दिनों में पूरे गांव में जो गीत गूंजते हैं ना, वो तो मन को छू ही लेते हैं। क्यों गीता दीदी, मैं सच कह रही हूँ ना?
1: बिल्कुल, एकदम सत्य कहा है तुमने किरण। मालूम है किरण, मुझे बचपन से एक गीत बहुत पसंद है जो छठ के समय हर घाट पे सुनाई देता है, केलवा के पात पर उगेला सूरज देवा। सुना है ना?
2: हाँ सुना है।
1: तो चलो गाते हैं ना इस गीत को।
2: चलिए गुनगुना लेते हैं थोड़ा सा। केलवा

0: करेलू संग भरतिया से झाके झूके।
1: मजा आया ना?
2: यही गीत मुझे बहुत पसंद है।
0: मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।
3: और पता है छठ का सबसे सुंदर दृश्य तब होता है जब डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है।
1: हाँ, जीवन भी तो हमें यही सिखाता है ना, हर परिस्थितियों में श्रद्धा और कृतज्ञता होनी चाहिए। ये गीत पीढ़ियों से गाए जा रहे हैं और हर बार वही पवित्रता, वही भावना लेकर आते हैं।

0: अब शाम की परछाइयां लंबी हो रही हैं। सूरज अपनी लालिमा को समेट कर घर की ओर वापस लौट रहा है। दूर मंदिर से सुनाई दे रही है शंख की ध्वनि और चूल्हे से उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि गांव अब विश्राम करना चाहता है।
1: भोजपुरी की असली खूबसूरती यही है, इसमें दिखावा नहीं सिर्फ सादगी है। जैसे यहाँ के लोग वैसे ही उनके बोल एकदम खरे और मीठे।
2: मन तो बहुत भारी है पर समय की पाबंदी है। इस पावन मिट्टी को नमन करते हैं और इस सफर को विदा कहते हैं। फिर मिलेंगे किसी और पगडंडी पर। रव्वा सुनत रहें 89.6 FM इहा गांव की गूंज।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्च

0: उत्तर शिक्षा सेवा आयोग प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
4: हो कैसे खेलन जाइबो,

0: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

खटकती। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, काश कि हम होश में अब आने ना पाए। बिल्कुल भाई, मौसम तो कुछ ऐसा ही है, बहुत ही बेहतरीन और बारिश वाला, और रिमझिम ये सावन की फुहार याद दिला रही है कि जो कहते हैं ना कि सावन है, सावन है तो दिल मचल जाता है, कागज़ की कश्ती बनाकर फिर पानी में बहाने को। याद आ जाता है वही बचपन, कुछ नई शरारतें करने को। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, हर सुबह एक नई उम्मीद की किरण लाती है। करो हर दिन कुछ नया, क्योंकि ये बरसात भी अनकहे बहुत कुछ कह जाती है। इन्हीं प्यारी सी लाइंस के साथ वेलकम वेलकम वेलकम और वॉर्म वेलकम, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला कार्यक्रम, जो कि है ज्ञान असली लाइव। और ज्ञान असली लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई कहते हैं ना कि बारिश है, और जो बारिश है वो हमें भिगा रही है और हमारे लिए क्या लाई है, तो आज की ये बारिश आपके लिए लाई है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव, जिसमें कि आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ आपको बताएंगे, बहुत कुछ नया है, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपके लिए थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी हंसी है, जो कि तो बनती ही है भाई। देखिए, मस्ती अगर ना की जाए ना तो फिर क्या ही कहना, अगर मस्ती नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन लेने में भी तभी मज़ा आता है जब वो थोड़ी सी मस्ती के साथ मिलती है। तो कुछ ऐसा ही है कि मस्ती के साथ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में हम आपको देंगे थोड़ा सा मोटिवेशन भी। तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले पहले पहले फटाफट से आप सभी से कहना चाहती हूँ लिसनर्स कि फटाफट से आ जाइए और अपनी हाजिरी हमारे चैट बॉक्स में लगा दीजिए। हमारे सभी लिसनर्स का बहुत बहुत वार्म वेलकम है, उनका भी जो कि हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उनका भी जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, और उनका भी जो हमें हमारे एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। तो आइए चलिए बताते हैं कि आज सबसे पहले हमारे पास क्या है। भाई आज जैसे कि आप सभी को पता है लिसनर्स कि आज है नागपंचमी। नागपंचमी को बहुत जगह गुड़िया भी कहा जाता है। तो आज नागपंचमी का हम त्यौहार मना रहे हैं, नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। तो आज कुछ ऐसे ही आपको हम बताने वाले हैं कि नागपंचमी आज क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, और साथ ही साथ में क्यों ऐसा कहा जाता है कि पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले के समय में लोग अनजाने में जो है ना हमेशा ये कहते थे कि सांप को जो है दूध पिलाना चाहिए, मतलब ऐसी प्रथा है नागपंचमी में कि सांपों को दूध पिलाया जाता है। लेकिन आपको क्या पता है कि साइंस से क्या कहता है? तो चलिए आज नागपंचमी का कुछ नया रुख लेकर के आते हैं और आपको बताते हैं कि साइंस में इसकी क्या मान्यता है। वैसे तो हम जब अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखते हैं तो ये मानते हैं कि नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि सांप जो होते हैं वो दूध को नॉर्मली क्या होता है ना कि वो दूध को पचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कभी भी सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसलिए आज के जो समझदार आज के जो साइंटिस्ट हैं, जो भी साइंस है, वो हमेशा यही कहता है कि कभी भी सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर आप मिट्टी की धातु जैसे कि मिट्टी के बर्तन में या किसी भी चीज़ में अगर आप उन्हें दूध पिलाते हैं ना तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये हमारा साइंस कहता है, ये हमारी धार्मिक मान्यताएं जो होती हैं वो नहीं कहती, ये हमारा साइंस कहता है कि उन्हें दूध ज़्यादा नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके साथ साइंस भी जुड़ा होता है और हमारी धार्मिक मान्यताएं जो होती हैं वो दोनों ही जुड़ी होती हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत सही हैं और बिल्कुल हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली हम सेगमेंट की तरफ और आपको बताते हैं कि इसकी धार्मिक मान्यता क्या है, आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि हमें दूध ज़रूर पिलाना चाहिए और नाग देवता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मान्यता है कि जिस दिन नाग देवता की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है। भय से मुक्ति का मतलब है कि भाई देखिए, सांप से तो सभी डरते हैं, मतलब आप नाम ले लीजिए और लोग उठकर कुर्सियों से भागने लगते हैं। वैसे तो मैं भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसी तरह सभी डरते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आज के दिन आप नाग देवता की पूजा करते हैं तो आपको भय से मुक्ति मिलती है। भय से मुक्ति का मतलब होता है कि हम डरते नहीं हैं, हमें लगता है कि अरे कोई बात नहीं ना, हमारे अंदर जो एक डर होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है।
इसलिए कहते हैं कि नाग देवता की पूजा आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पौराणिक कथा ये है कि द्वापर युग में यमुना नदी में कालिया नाग नाम का एक बेहद जहरीला नाग रहता था, जिसने पूरे पानी को जहरीला बना दिया था। एक दिन कन्हैया की गेंद नदी में जा गिरी। श्री कृष्ण नदी में कूदे और उन्होंने कालिया नाग के घमंड को चूर चूर करते हुए उसके ऊपर तांडव किया और फिर वो निकाल लाए अपनी गेंद को। तो ये माना जाता है लिसनर्स कि कहीं ना कहीं ये एक बुराई पर नहीं कहेंगे, पर जैसे कि आपने देखा ना कि कालिया नाग में विष था और हमारे जो श्री कृष्ण थे वो बाल रूप में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कालिया नाग को हरा कर उसका मर्दन किया और उसके बाद जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं बुराई अच्छाई जीती और बुराई हारी, इसलिए आज का दिन मनाया जाता है। इस दिन के साथ एक कथा और भी जुड़ी हुई है जो कि समुद्र मंथन की कथा कही जाती है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो इसमें नाग देवता यानी कि शेष नाग को बांधा गया था और विष्णु भगवान ने कछुए का रूप लेकर समुद्र मंथन कराया था और सभी को कुछ ना कुछ मिला, देवताओं को मिला, राक्षसों को मिला जब समुद्र मंथन हुआ, लेकिन जो कि नाग देवता थे उन्हें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उन्होंने तो निस्वार्थ भाव से एक रस्सी की तरह काम करके समुद्र को मथने में मदद की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और साथ ही साथ में ये भी किया कि आज के बाद से मैं तुम्हें नागमणि देता हूँ और तुम शेष नाग कहे जाओगे और एक विशेष दिन सिर्फ तुम्हारी पूजा होगी और जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी पूजा का प्रावधान खुद ब खुद मिलेगा। कहते हैं कि आज के दिन अगर आप नाग देवता की पूजा करते हैं तो शिव की पूजा का, जो हमारे भोले बाबा हैं उनकी पूजा का फल यूं ही मिल जाता है। मतलब आपको दोनों फल मिलते हैं, नाग देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल खुद ब खुद मिल जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे जो भोले बाबा हैं वो बहुत ही भोले हैं, बहुत ही भोले हैं और साथ ही साथ में बहुत ही प्यारे भी। तो ये थी कथा कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, उसकी क्या पौराणिक कथा है, उसकी क्या मान्यताएं हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे और आगे आपको बहुत कुछ हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि भाई मौसम है बहुत ही प्यारा बारिश का और बारिश जो हो रही है ना वो थम थम के बरस रही है। मतलब थम थम के बरसने का मतलब ये है लिसनर्स कि भाई कभी हो रही है, कभी धीमी हो जाती है, कभी फिर तेज़ हो जाती है, कभी फिर धीमी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हुआ ना थम थम के बरसना, तो आइए हम भी थोड़ा थम थम के बरसते हैं और ज़रा सा एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं जो कि बारिश को ही डेडिकेट है, बहुत ही प्यारा है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, मिलती हूँ इस सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, सुनिए और एंजॉय करिए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो में, जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव। और आज हम बातें कर रहे हैं, अभी अभी हमने बात की आज का जो कि त्यौहार था उसे लेकर, जो कि है नागपंचमी। और अब हम बात करने वाले हैं कि हमेशा होता है ना कि ये कहा जाता है कि प्रेशर, आप कह लीजिए वर्क प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, वो सभी के ऊपर होता है। पर आजकल हमारी यूथ्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे सबसे ज़्यादा हम कह लें कि इफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि युवाओं के लिए एक तरीके से ये माना जाता है कि यूथ्स के लिए ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशर होता है कि उन्हें बेस्ट परफॉर्म करना है। और आजकल के बढ़ते हुए इस कंपटीशन के युग में सबसे ज़्यादा यूथ्स के लिए ये एक तरह से एक प्रॉब्लम मानी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें फिज़िकली भी इफ़ेक्ट करती है और मेंटली भी। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं ज्ञान असली लाइव में। आज हम आपको बताएंगे कि परफॉर्मेंस प्रेशर होता क्या है, यूथ्स में ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है कि 90% युवा कहीं ना कहीं इससे पीड़ित माने जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हम आपको बता दें कि 90% कहीं ना कहीं यूथ इसी प्रॉब्लम से इफ़ेक्टेड माने जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका साइकोलॉजिकल एक उन्हें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करता है और साथ ही साथ फिज़िकल हेल्थ को भी। तो हमें आपको आज ये बताना है कि किस तरीके से आप इससे अवेयर रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम किसी चीज़ से अवेयर रहते हैं ना, कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप किसी चीज़ से अवेयर हैं अच्छे से, तो आप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम 50% तो कम हो ही जाती है। सो आइए आपको बताते हैं कि ये होता क्या है। तो यूथ्स में, यानी कि हमारे यूथ्स की अगर मैं लैंग्वेज यूज़ करूँ, तो इसमें इसे कहा जाता है साइलेंट विलेन। और कहीं ना कहीं ये साइलेंट विलन होता भी है। आपने देखा होगा ना कि हिंदी फिल्मों में नहीं, आजकल तो हॉलीवुड की फिल्मों में भी जब हम फिल्म देखते हैं तो हमारा ध्यान हीरो पे तो होता ही है, बट हीरो के साथ साथ हमारा ध्यान जो होता है ना वो विलन पे भी होता है कि भाई विलन करने क्या वाला है, क्या है उसकी स्ट्रैटेजी और कैसे वो हीरो के साथ क्या करने वाला है, कैसी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने वाला है। पूरा हमारा फोकस हीरो पे भी होता है और विलन पे भी होता है। तो आज भी हम एक ऐसे ही विलन की बात करने वाले हैं कि जिसका निशाना हमारा हीरो, यानी कि हमारा माइंड है, हमारी मेंटल हेल्थ है। तो आज हमें उस विलन से अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना है। तो कैसे बचाना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इस विलन के बारे में जान जाएं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस विलन की स्ट्रैटेजी है क्या। तो सबसे पहले तो हर वक्त हर चीज़ में बेस्ट दिखने और रहने का जो ज़बरदस्त दबाव होता है ना, उसे ही परफॉर्मेंस प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि जो कि यूथ्स में आज सोशल मीडिया के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के इस समय में यूथ्स को हमेशा ये लगता है कि उन्हें बेस्ट में बेस्ट दिखना है, बेस्ट में बेस्ट रहना है, हर चीज़ में बस बेस्ट बेस्ट और बेस्ट ही रहना है। बट ऐसा हो नहीं पाता है। आप हर बार सोचो कि मैं सब कुछ बेस्ट कर पाऊँ, तो मुझे नहीं लगता है कि आसान है कि हम सब कुछ बेस्ट कर पाएँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कैलिबर नहीं है या आप कर नहीं सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमेशा बेस्ट दिखने का प्रेशर ही हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। आज के यूथ के लिए प्रेशर सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये 360 डिग्री का प्रेशर है कहीं ना कहीं, क्योंकि एकेडमिक्स में होता है कि हमेशा जैसे कहा जाता है ना कि अरे 90% तुम्हें लाना है वरना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इतना नहीं लाओगे तो मेरिट कैसे बनेगी। करियर में होता है कि कॉलेज ख़त्म होते ही लाखों पैकेजेस आ जाते हैं, स्टार्टअप आ जाते हैं, और फिर एक करियर की टेंशन होती है कि पढ़ाई तो हमने कंप्लीट कर ली, अब आगे क्या। और इसके बाद हमारी सोशल लाइफ तो है ही, इंस्टाग्राम पे कूल दिखना, ट्रेंड करना, फॉलो करना और हमेशा हैपनिंग लाइफस्टाइल दिखाना। कहीं ना कहीं यूथ्स में ये सारे ही रीजंस होते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर के। आपको लगता है कि आपको हमेशा बेस्ट दिखना है, बेस्ट करना है, बट ऐसा हो नहीं पाता, और यही एक मेंटल प्रेशर बन जाता है जो धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी लाइफ में एंट्री करता है। तो आइए बताते हैं कि आपकी लाइफ में इस विलन की एंट्री होती कहाँ से। तो भाई आ गया है टाइम विलेन की एंट्री कराने का, तो चलिए एंट्री करा ही देते हैं। तो स्कूल या कॉलेज के पहले दिन ही हमें एक रेस में दौड़ा दिया जाता है कि देखो शर्मा जी का बेटा, तो भैया उतने तुमने शर्मा जी के बेटे के बारे में सुना, अरे उसने तो 95 स्कोर किया है, और वो कपूर साहब का बेटा, उसे तो 97 मिले हैं। बस यहीं से ये दिमाग में बैठ जाता है और बच्चे के मन में इस विलेन की एंट्री हो जाती है यूथ के दिमाग में। भाई उन्हें लगता है कि अब तो मुझे भी 99% या 96% स्कोर करना ही है, वरना मम्मी पापा के फिर वही सारी बातें सुननी होंगी, और धीरे धीरे यही बन जाता है परफॉर्मेंस प्रेशर। दूसरा आता है कि भाई आजकल सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो हमारी सोशल मीडिया की लाइफ में सभी को परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट कपड़े होने चाहिए, परफेक्ट स्टाइल होना चाहिए, एक अच्छी सी कूलनेस होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना अरे यार यूथ्स हैं कूल होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं आजकल कूल दिखना है। तो हर स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है वो यही सोचता है कि मुझे कूल तो दिखना ही है। कहीं ना कहीं रील्स में जब हम देखते हैं कि हमारी मतलब यूथ्स जो लड़के लड़कियाँ हैं कार खरीद रहे हैं, वेकेशंस इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है हमारा फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मैं इस लाइफ से पीछे छूट रहा हूँ। देखिए जब हम अपनी उम्र के ही यूथ्स को देखते हैं ना कि अरे ये तो वेकेशन है, ये तो इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं, वो शिमला जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और दूसरे की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हमारे किसी फ्रेंड ने स्टेटस लगाया और उसका ऑफिस का पहला दिन है, और उसने स्टेटस लगाया अरे मैं मेरे ऑफिस में हूँ ना, मेरा पहला दिन है, और वो देख करके हमें फील होता है अरे यार मुझे तो अभी तक जॉब ही नहीं मिली, अगर मुझे भी जॉब मिल जाती तो मेरा भी ऐसा ही होता। तो कहीं ना कहीं यही होता है परफॉर्मेंस प्रेशर। धीरे धीरे यह विलन आपके दिमाग में जगह बनाता जाता है और आप समझ भी नहीं पाते। यहीं से एंट्री शुरू होती है और फिर धीरे धीरे फेलियर का डर भी यहीं से शुरू होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि फेल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि अगर कोई एक बार फेल हुआ तो फिर उसके ऊपर पूरा ये लगा दिया जाता है अरे तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुमसे नहीं होगा ना, अपनी उम्र के बच्चों को देखो। लेकिन युवा की आज की जो सोच होनी चाहिए, मतलब हमारे जो आज के यूथ्स हैं, जो जेंजी है, वो यही सोचता है कि कहीं ना कहीं क्या ये इतनी बड़ी बात है, और यही परफॉर्मेंस प्रेशर का कारण बन जाता है जब हम सोचते हैं कि क्या इतनी बड़ी बात है फेलियर होना। अरे इंसान फेलियर क्या नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो फेल होना, पास होना, ये सब तो बहुत नॉर्मल बातें हैं। कहा जाता है ना कि वही कहीं ना कहीं गिरते हैं जो कि संभलना जानते हैं, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सो आज ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं यूथ्स भी समझें कि हारना कोई बड़ी बात नहीं होती, बस लड़ने का हुनर आना चाहिए, और ज़रूरी है कि उनके मम्मी पापा भी समझें कि जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, वही है कि एक पेपर डिसाइड नहीं करता है कि आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए, आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं आपके अपने वैल्यूज़। हो सकता है कि कोई पढ़ाई में एकेडमिक्स में बहुत अच्छा ना हो, पर उसमें कोई और एक बहुत अच्छा टैलेंट हो, ज़रूरत है तो बस उस टैलेंट को अंदर से निकालने की और एक अपनी पहचान बनाने की। तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन अभी तक के लिए हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और अब आप सभी को मन कर रहा होगा ना कि मैम की बकबक बकबक बकबक तो काफ़ी सुन ली, अब कोई सॉन्ग हो जाए। तो आइए आपको सुनाते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इस सॉन्ग को सुनते हैं और मिलती हूँ इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुनिए, इन्जॉय करिए और मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं उन पर सोचिएगा ज़रूर। ब्रेक के बाद आते हैं एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपको कुछ नया बताने के लिए। तब तक के लिए हम साथ में इस विलेन को भगाना कैसे है ये भी लेकर आएंगे, यानी कि हमारी हीरो की एंट्री कराएंगे। क्योंकि भाई जब तक हीरो की एंट्री नहीं होगी तब तक विलेन भागेगा कैसे। तो हीरो की एंट्री कराएंगे इस ब्रेक के उस पार। सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव में। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

का महीना आया है और सावन के इस प्यारे से महीने में कुछ नया लाया है। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, वेलकम बैक आपके अपने पसंदीदा शो ज्ञानश्री लाइव में। और हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और इससे पहले कि आगे बढ़ें और हीरो की एंट्री कराएं, भाई हमने कहा था ना कि ब्रेक के उस पार आते हैं तो इस विलन की छुट्टी करने के लिए हीरो की एंट्री कराते हैं। तो हीरो की एंट्री तो ज़रूर होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। तो सबसे पहले बताते हैं कि हीरो है क्या, मतलब कौन है, सॉरी है क्या नहीं, कौन है। तो अभी तक हमने आपको प्रॉब्लम बताई, अब बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अगर आपके घर में भी ऐसे यूथ्स हैं कि जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं हर घर में जो बच्चे हैं यानी कि यूथ्स हैं उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है और सभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं आता है कि वो आखिर करें क्या। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि आखिर हम करें क्या कि जिससे हमारा बच्चा इस प्रॉब्लम से निकल जाए और वो बेहतर हो जाए। तो आज हम आपको इसके लिए कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो कि मेरे पास हैं। कि हमेशा याद रखिए कि परफेक्ट यानी कि परफेक्शन का चश्मा उतार कर हमेशा हमें दुनिया को देखना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को परफॉर्मेंस प्रेशर से बचाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और खुद, हम कहते हैं ना कि खुद से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से कोशिश करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए खुद से कोशिश करें। इसलिए यूथ्स को भी हम कहना चाहेंगे कि जिन्हें भी ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो कहीं ना कहीं, हाँ मेंटली बहुत प्रेशर होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से कोशिश करें। अच्छा, जब हमारा पैर कभी गड्ढे में पड़ जाता है तो हम उसे निकालने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं कि दूसरा कोई आएगा, कोशिश करेगा और फिर निकलेगा। हम खुद से कोशिश करते हैं और हमेशा खुद से ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद बेहतरी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगी यूथ से हमेशा कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश खुद करिए। तो आइए जानते हैं कि क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि हमेशा परफेक्शन का चश्मा लगाकर दुनिया को नहीं देखना चाहिए। कहीं ना कहीं यूथ्स को भी समझना होगा कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो सिर्फ एक रील देख लीजिए आप या कुछ भी देख लीजिए, लेकिन वो पूरी फिल्म नहीं होती ना। कोई भी इंसान 24 घंटे खुश या परफेक्ट तो नहीं दिख सकता। आप अपनी तुलना जब दूसरों से करना बंद कर देंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपसे आपकी तुलना होगी। देखिए, हमेशा जब भी आपको बेहतर बनना हो, जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे बेहतर बनना है, तो अगर आपको बेहतर बनना है तो हमेशा अपनी तुलना खुद से करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी तुलना खुद से करने लगेंगे तो आप बेहतर से भी बेहतरीन बन जाएंगे। और जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे फील होने लगता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है। और तब हमारे अंदर जो एक्चुअल टैलेंट होता है हम उसे कहीं ना कहीं पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इसलिए कभी भी किसी से भी खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि अगर अगले के पास कोई एक अच्छा टैलेंट है, कोई एक अच्छी चीज़ है, आप अपने में ढूंढने की कोशिश करिए, आपके पास भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुख है तो है, आंखों में आंसू हैं तो हैं, तकलीफ है तो है। हमेशा ये नहीं दिखाना चाहिए नहीं नहीं आई एम ऑल राइट और मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना यार, सब ठीक है, आई एम वेरी कूल। तो ये दिखाने की कोशिश हमेशा नहीं करनी चाहिए कि आप कूल हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप खुश हैं, लेकिन जब जो चीज़ हो ना, जो एक्चुअल आपकी सिचुएशन हो, उसे हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरी सिचुएशन ये है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी 90% प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है और फिर कभी हमें परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता है। मान लीजिए आप स्टेज पर जा रहे हैं, आपको कोई परफॉर्मेंस देनी है, आपको नर्वसनेस हो रही है और आप उसको बार बार इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ ना, आई एम ओके, मैं नर्वस नहीं हूँ, आई एम ओके, तो आपकी नर्वसनेस कभी दूर नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं नर्वस हूँ, और उसके बाद आपने सोचा कि अब मैं इस नर्वसनेस को दूर कैसे करूँ, तो जब प्रॉब्लम के बारे में सोचा तो उसका सलूशन आपको खुद ब खुद आ गया, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोचा तब। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी आप एक्सेप्ट करेंगे ना चीज़ों को और एक परफेक्शन से नहीं देखेंगे तो हर प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि हमेशा प्रोसेस पे होना चाहिए।

नहीं, हमेशा कहते हैं कि फोकस करो तो प्रोसेस पे करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। आज केवल सिर्फ 1%, अगर रोज़ आप 1% बेहतर करते जाएंगे ना, हर हमेशा हर दिन एक नई चीज़ को, एक नई पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लाना चाहिए और 1% खुद में, सिर्फ 1% बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक दिन खुद में 1% बेटर करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं हर दिन बेहतर होगा। हमेशा कोशिश करिए बेहतर से भी बेहतरीन की तरफ जाने की। ये नहीं कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सब कुछ बेहतर ही हो। और इसी के साथ धर्मेश त्रिपाठी जी आ गए हैं, जो कि लिख रहे हैं, ओके क्यों नहीं दिख रहा सर। आई थिंक धर्मेश जी कोई टेक्निकल इशू होगा, तो उस पर हम बात कर लेंगे और बहुत ही जल्द जो भी आपकी प्रॉब्लम है ऐप को लेकर के, वो सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा धर्मेश जी। तो आइए लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ धर्मेश त्रिपाठी जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानश्री लाइव में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जो कि थर्ड पॉइंट हमारा है वो ये है कि कभी भी खुद को गलती ना करने का लाइसेंस नहीं देना चाहिए। गलती ना करने का लाइसेंस देने का मतलब होता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि अरे नहीं नहीं मुझसे कोई गलती नहीं होगी, आई एम ओके यार, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे, सोच लीजिए कि हम कोई गेम खेलने जा रहे हैं और हम गेम में ये सोच रहे हैं कि हम कभी, हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी और मैं हमेशा जब भी खेलूँगा तो बेस्ट खेलूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। कहते हैं ना कि कभी सचिन तेंदुलकर भी ज़ीरो पे आउट होता है, कभी विराट कोहली भी, यू वेलकम धर्मेश जी, और कभी विराट कोहली भी 10 रन बना के आउट हो सकते हैं या कभी 0 रन पे भी आउट हो सकते हैं। आप सोचिए कि अगर वो ये सोचें कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी और हर मैच में भाई मेरी तो सेंचुरी लगने वाली है, तो कैसा होगा? अगर ऐसा सोचते तो शायद आज इतना बड़ा नाम नहीं होते। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझसे तो कोई गलती नहीं होगी। इंसान है, गलतियाँ हो सकती हैं, बट हमेशा गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सो आइए चलिए अब बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, बस यूँ गए और यूँ आए। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट शो जिसका कि नाम है ज्ञानश्री लाइव। स्टे ट्यून्ड।

0: हैं और गुना में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गुना में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

बिल्कुल, सावन आया है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी सॉन्ग के साथ फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने बहुत ही प्यारे से और पसंदीदा शो में, जिसका कि नाम है ग्यारस की लाइव। और आ गई हूँ मैं फिर से। तो भाई, अभी तक हमने आपको स्टार्टिंग में बताया जो कि वो थी इन्फॉर्मेशन, और फिर हमने आपको थोड़ी सी मस्ती वाली चीज़ें भी बताई, मतलब विलन की एंट्री भी करा ली और उसके साथ हीरो की थोड़ी सी फाइट फाइट फाइट भी करा ली। अब बारी आती है कि कुछ मोटिवेशन वाली बातें करने की। तो चलिए, अब उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैट बॉक्स में एक नज़र डाल लेते हैं। और कमल नैन जी आ गए हैं, गीता श्रीवास्तव जी बहुत सारे हार्ट भेजे हैं उन्होंने, हेलो गीता जी कैसी हैं आप। और इसी के साथ गीता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं राधे राधे, राधे राधे आपको भी। तो चलिए, आइए अब चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले पॉइंट की तरफ, जो कि है कि भाई मोटिवेशन। मोटिवेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं ना, कहते हैं ना कि अगर किसी को अच्छा मोटिवेशन मिले तो वो पहाड़ की चोटी तक भी जा सकता है। वैसे हमें पहाड़ की चोटी तक नहीं जाना है। राधे राधे, हाँ राधे राधे गीता जी कैसी हैं। तो चलिए, जब तक कि गीता जी अपना हालचाल बताती हैं, मैं बताती हूँ कि आज मोटिवेशन में है क्या। तो आज मोटिवेशन में है ये कि होगी एक प्यारी सी कहानी कुछ यूथ्स की ज़बानी। मतलब हर दिन हम आपको बताएंगे किसी एक ऐसी यूथ की कहानी जो कि मिसाल है। कहते हैं ना कि जब किसी की कहानी हम सुनते हैं तो उससे हम उस किरदार से खुद को भी कहीं ना कहीं जोड़ते हैं और समझते हैं कि हमारी जर्नी कैसी होनी चाहिए। वरना तो हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स बस हमारी लाइफ में, लेकिन किसी दूसरे की लाइफ जब सुनते हैं तो लगता है यार अगर स्ट्रगल है ना, तो स्ट्रगल के बाद फिर एक बहुत बेहतर सी लाइफ भी है। तो इतनी सारी चीज़ें बताने का मतलब ये था कि चलिए ये भी बताते हैं कि किसके बारे में बताने वाली हूँ। तो भाई, इनसे पहले कि मैं बताऊँ, मैं कुछ क्लू दे देती हूँ। बच्चे तो बच्चे, पर बड़े भी शो को बहुत चाव से देखते हैं। और एक लाइन है ना, दिल से बुलाया बालवीर आया। मतलब जब हम छोटे थे तो ये लाइन सुनने की और बालवीर देखने की एक जो क्यूरियोसिटी होती थी वो सब में होती थी। मतलब लगता था कि हाँ, जब हम छोटे थे तो कंपेयर करते थे कि मम्मी क्या सच में बालवीर होता है, क्या सच में बालवीर आता है सबकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। लेकिन फिर समझ में आया कि बालवीर कहीं बाहर नहीं, आप ही के अंदर होता है, बस आपको उसे जगाने की और बाहर निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि बालवीर सिर्फ एक किरदार नहीं है, बालवीर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सोच है। और जो उन्होंने इसका रोल प्ले किया है बहुत ही एक अच्छे, और कहीं ना कहीं कहा जाए कि यूथ्स में मिसाल, बिल्कुल वो एक मिसाल की तरह ही है, जिनका कि नाम है देव जोशी। देव जोशी ने इस कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से न कि सिर्फ निभाया, बल्कि उन्होंने किसे एक ऐसी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं अगर आपके अंदर टैलेंट हो उसे सॉल्व करने का। और इसी उनके बहुत ही बेहतर, हम कह रहे हैं एक्टिंग के लिए या उनकी इस पॉजिटिव सोच के लिए, साल 2019 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसे बाल शक्ति भी कहा जाता है, से उन्हें सम्मानित किया गया। और ये माना गया कि उन्होंने कला और संस्कृति में एक असाधारण योगदान दिया है। बालवीर लाखों बच्चों के लिए एक ऐसी सोच है, एक ऐसी पॉजिटिव कहीं ना कहीं साइड है, जो कि उन्हें हमेशा सही चीज़ों को करने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज के लिए, और हमेशा ये समझाती है कि जितनी भी बार चलो उतनी बार पॉजिटिविटी की तरफ ही चलो, क्योंकि नेगेटिविटी जो है उसे लास्ट में हारना ही है। और अगर बात करें उनकी कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक और कैरेक्टर की, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद का, जो कि उन्होंने निभाया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर हम किशोर चंद्रशेखर आज़ाद की एक कल्पना करते तो उसमें उनका जो चेहरा, उनकी जो भी उन्होंने एक्टिंग की, वो सब कहीं ना कहीं बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, वही हाव भाव, वही सारी चीज़ें। तो कहते हैं ना कि जब किसी कैरेक्टर को आप निभाते हैं तो उसमें डूब जाना होता है, फील करना होता है उसकी सोच को, फील करना होता है उसकी पॉजिटिविटी को, जो कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे फील किया। तो आज हमारे यूथ्स के सेगमेंट में जो मोटिवेशन हमारे लिए हैं वो देव जोशी हैं। सोचना चाहिए कि बहुत सारी स्ट्रगल उनकी लाइफ में भी थी। वो बताते हैं कि जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ बम्बई आया और मुझे एक्टिंग में
एक सीरियल्स में, शोज़ में अपने आप को डालना था, तो बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ी, क्योंकि पढ़ाई भी करनी थी और शूटिंग भी करनी थी। वो बताते हैं कि 8-8 घंटे रात को जागकर मैं पढ़ता था और फिर पूरे पूरे दिन शूट करता था। मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिलता था, मैं 1 घंटे कहीं दिन भर में मैं सो पाता था, लेकिन फिर भी मैं दोनों चीज़ें कर लेता था। बहुत सारे स्ट्रगल थे, शुरू में उन्हें काम नहीं मिला, सबने उन्हें ये कहा कि अरे बच्चा कहाँ, आप अभी तो ये छोटा बच्चा है ना। और बच्चे जब बड़े बड़े हमारे इस एक्टिंग करियर में सेट नहीं हो पाते, शोज़ में जा नहीं पाते, तो बच्चा क्या कर पाएगा। लेकिन वो बताते हैं कि 7 साल के इंतज़ार के बाद उन्हें ये रोल मिला, और फिर जब उन्होंने करना शुरू किया तो धीरे धीरे जो लोग उनको ये कहते थे ना कि बच्चा है, उन्होंने ही माना कि बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उन्हें करने के लिए एक अच्छा सा पॉइंट चाहिए होता है। तो यही है कि हमारे इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है, और जब मेहनत की जाती है तो मेहनत बहुत बेहतरीन तरीके से रंग लाती है। लेकिन बस इंतज़ार होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, और हमें सब कुछ लाइफ में मिलेगा ये सोच होनी चाहिए। तो आइए चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं। आती हूँ सॉन्ग के उस पार आपसे बाय बोलने के लिए, तब तक के लिए सुने, इन्जॉय करें और बने रहें ज्ञानश्री लाइफ में। आइए सुनते हैं।

सपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, हम भी आएंगे और आपसे मिलेंगे, लेकिन कुछ थोड़े से कहते हैं ना कि कुछ टाइम लेकर के। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और ज़बरदस्त रहिए। देखिए यही होता है, बारिश के साथ साथ कई बार ज़बान भी फिसल जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिए लिसनर्स, मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। स्वागत है आप सभी का रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम भी अलग और अजीब सा लगता है, नाम है काला अजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं कहानी से करना चाहता हूं। टीकन देवी जी, आप तो गांव-गांव जाती हैं, क्या आपने कभी कोई ऐसा मामला देखा? वैसे रुकिए रुकिए भाई, मैं तारुफ तो करा दूं। आज हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद है हमारी टीकन भाभी। सो कैसी हैं आप?
2: बहुत ठीक हूँ भैया, आप अपना बताइए कैसे हैं आप?
1: बस भाभी बहुत अच्छा हूँ। आप जिस तरह से जानकारियाँ देती हैं उससे मेरा और हमारे गांव वालों का, हमारे सभी श्रोताओं का बहुत भला होता है और हमारा बहुत पैसा बच जाता है बीमारियों के खर्च में। लेकिन आज चूंकि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप भाभी गांव-गांव जाती हैं, तो क्या आपने कभी कोई ऐसा काला आजार का मामला देखा है?
2: अरे आरजी भैया, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था, लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ, उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई साया है। महीनों तक इलाज नहीं हुआ, जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ, जान तो बच गई, लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, यानी काला आजार के बाद की बीमारी। आज भी वो घर से कम ही निकलती है, लोग उसे देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजी भैया, अगर समय पर इलाज हो जाता तो आज ये सब ना होता।
1: सच में भाभी ये बहुत दर्दनाक है। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कि काला आजार क्या होता है और ये कैसे होता है और साथ ही साथ इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। सो टीकन भाभी, सबसे पहले ये बताइए कि काला आजार होता क्या है?
2: देखिए आरजे भैया, काला आजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसे हम आम भाषा में भले ही काला आजार कहते हैं लेकिन इसका असली नाम विसरल लीशमैनियासिस है। ये बीमारी एक बहुत ही छोटे कीड़े के काटने से फैलती है जिसे रेत मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात ये है कि ये ज्यादातर रात के समय काटती है जब लोग सो रहे होते हैं। जब ये रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, प्लीहा यानी तिल्ली और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में हमें ये बीमारी साधारण लगती है लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
1: अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन भाभी, इसके लक्षण आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं? लोगों को कैसे पता चले कि ये काला आजार है?
2: बहुत अच्छा सवाल है आरजे भैया। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वो पहले जैसा काम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे पेट भी फूलने लगता है क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है जिससे चेहरा पीला पड़ने लगता है और व्यक्ति बहुत ही कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
1: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में अंदर से बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, क्यों?
2: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अगर समय पर इसका इलाज न कराया जाए तो करीब 95% मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो अलग अलग स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है। अगर हम इस काला आजार की बात करें तो ये बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
2: भैया, भारत में ये बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
1: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता का विषय है।
2: हाँ अर्जे भैया, और खास बात ये है कि ये बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहाँ साफ सफाई की कमी होती है और जहाँ पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहाँ ये रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: तो भाभी, अगर किसी को लगे कि ये लक्षण उसे है तो उसे आखिर क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत ही आसान और तेज जांच की सुविधा उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में ये बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं। और सबसे जरूरी बात ये है कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसे की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए।
1: मुफ्त इलाज? ये तो बहुत राहत की बात है भाभी।
2: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्दी असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
1: बिल्कुल भाभी, अभी आपने बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत वक्त लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
2: अरे नहीं नहीं आरजे भैया, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। पहले के समय में जरूर जांच में थोड़ा समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधा दे दी है कि गांव के पास ही अब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्दी काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसे हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा नाखून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
1: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो सच में बहुत आसान हो गया।
2: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध हैं।
1: लेकिन टीकन भाभी, क्या यह टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद है?
2: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देते हैं और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को पुष्टि की जरूरत लगे तो वो आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्दी शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
1: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है, क्यों?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ कि अगर किसी को 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो बिना सोचे समझे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाएं और टेस्ट कराएं। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। तो क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
2: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वो लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वो आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही बात कही और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों ही गांव के पास उपलब्ध हैं, क्यों भाभी?
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
1: बिल्कुल, लोगों के बारे में तो आपने बताया कि लोग समय पर कदम उठाएं, पर साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए कुछ कर रही है?
2: जी, सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है। एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस समय, जिसका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और ये NCVBGC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ये है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाएं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में ये लक्ष्य हासिल भी कर लिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: क्या बात है भाभी, ये तो सच में गर्व की बात है।
2: हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है। करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिससे रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
1: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं भाभी इससे बचने के लिए?
2: बहुत आसान उपाय हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए, ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचें। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी गंभीर बीमारी से भी खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो टीकन भाभी, एक बात और बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलत फहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर और उसके बारे में सुनी सुनाई बातें बहुत करते हैं। इसको लेकर आप क्या मानती हैं?
2: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे भैया, और यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे गांवों में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत, साया या किसी बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक या ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
2: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि ये बीमारी छूने से फैलती है, इसलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग तो मरीज को अलग कमरे में रखने लगते हैं या उससे बात तक नहीं करते। लेकिन सच्चाई तो ये है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसलिए मरीज से डरने या उसे अलग करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: क्या बात है भाभी, बिल्कुल अच्छी और सच्ची बात कही आपने। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बात और जानना चाहूँगा कि और आखिर कौन कौन सी गलत धारणाएं होती हैं लोगों में काला आजार को लेकर?
2: कई लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो गया तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है और जटिल हो सकती है। और एक बात और, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियां पनप रही हैं तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: अच्छा, तो आखिर इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से आखिर कैसे बाहर आएं?
2: समाधान बहुत साफ है भैया, सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। किसी भी तरह के झाड़ फूक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितना भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई जरूर रखें, दीवारों की दरारें भरें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दें, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दें।
1: बहुत ही जरूरी बात बताई भाभी आपने, लेकिन आपने शुरुआत में एक दुखद कहानी सुनाई थी। क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी हो?
2: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के ही एक गांव में मेरी एक सहेली है, रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। लेकिन रीना ने डरने के बजाय समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक करवाया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया भी। एक दिन उसे भी हल्का बुखार हुआ। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। वो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने नहीं वाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं बल्कि समय पर सही कदम उठाना है।
1: सच में यही तो असली बदलाव है, जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
2: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत भी है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान लें और इलाज करा लें तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
1: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम का। समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचा सकता है।
2: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत फहमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज से ही एक कदम बढ़ाइए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
0: जागरूक बने, सुरक्षित रहे और काला आजार को मिलकर हराए।
1: तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस शो को हम यहीं पर पूरा करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है,
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे
4: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
3: तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
5: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, एचआईवी एड्स और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
6: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
5: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
6: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
5: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
6: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें। इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
5: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
6: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
5: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
6: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं। इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
5: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
6: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
5: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
6: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
5: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि अनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निःशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बारे
6: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो यह है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या पीएचसी या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा जो आंगनवाड़ी आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर पीएचसी सीएचसी या जिला अस्पताल में जाएं तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
5: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके होता है?
6: जी हाँ बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
7: मैम एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
6: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
5: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
6: आजकल की पीढ़ी के लिए खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते, इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर पिज्ज़ा नूडल्स मोमोज जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
5: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
6: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है, लेकिन ये एक ज़रूरी बात है।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूले। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे।
7: हाँ हाँ, अंशिका।
6: नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं हूँ आपकी आरजे समता
7: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
6: हाँ जी, ऐसे बोलेंगे क्योंकि ना हमेशा से मैं जब बोलती हूँ तो आधा ये खा जाती है, मतलब आधा ये देर से जागृत होती है सुप्त निंद्राओं से। तो मुझे लग रहा है कि जब हम इसको ऐसे करके बोलेंगे ना तो ये जागृत रहेगी और फिर हम दोनों लोग बोल पाएंगे। तो भाई कल संडे था और पता नहीं क्यों जब मैं एक दिन नहीं आती हूँ ना स्टूडियो तो मुझे इतना खालीपन सा लगता है घर में और मुझे लगता है कि मैं बीमार होने लगती हूँ अंशिका। पता नहीं क्यों कि मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए और आज के दिन फिर क्यों ऐसे। तो संडे तो अच्छा जाता है, जो बात है कि काम इतना रहता है और फिर घर हमें खुद का भी काम इतना रहता है तो कुल मिला करके बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट भी होती हैं घर में रहने से, लेकिन एक मिस वाला हो जाता है, अंशिका से नहीं मिल पाते
7: हैं ना।
6: हाय राम, मैंने यही कहने वाली थी, अंशिका से दूर रहती हूँ ना इसीलिए बीमार पड़ जाती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ अंशिका, हम दोनों लोगों को शादी यही आसपास करनी चाहिए और अगर मेरी शादी कहीं बाहर होगी भी तो मैं ऑलमोस्ट टाइम यही रहूंगी, 2-3 दिन के लिए बाहर जाऊंगी केवल।
7: वाह, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात कही,
6: बड़े दिनों बाद पहली बार वो भी अच्छी बात वो भी आज शिव पार्वती के मिलन के दिन।
7: बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात, मतलब जैसे कहते हैं ना 100 में अगर हमें पॉइंट्स देने हो तो 100 में 200%, बिल्कुल करेक्ट बात। बस अब तो जल्दी से हो जाए क्योंकि क्या है ना कि
6: तुम्हें पता है अंशिका, जैसे एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि आठवां अजूबा, तो आठवें अजूबे को किसी ने देखा नहीं है। मुझे लगता है कि हर किसी को हम लोग कह सकते हैं ना, ये है आठवां अजूबा, ये है आठवां अजूबा। तो मेरे लिए भी लोगों के मन में आठवां अजूबे वाली बात है, कि जिस दिन समता मैम शादी करेंगी, जिस दिन समता मैम की लाइफ में कोई आएगा, समवन इज स्पेशल, एंड जो जो समता मैम जिसे अपना कहेंगी, है ना गीता जी? गीता जी बताइए सही बात है कि नहीं है, ये बात सच्चाई है कि नहीं? क्योंकि गीता जी, प्रीति जी, आशु जी ने भी मुझे कई बार कहा है कि समता मैम आप शादी कब कर रही हैं, मतलब श्वेता जब गई थी तो उसके बाद से मुझे कई बार कॉम्प्लीमेंट्स आते थे ये, तो कि कोई एक ऐसा होगा जिसे समता मैम अपना कह सकेंगी, तो यस एग्जैक्टली उस इंसान की मेरी ज़िंदगी में आज मैं ये खुलेआम कह देना चाहती हूँ कि उस इंसान की मेरी ज़िंदगी में एंट्री हो चुकी है, और बहुत जल्दी आप सभी को मतलब इस गुड न्यूज़ से मैं परिचित कराऊंगी, अंशिका और मैं दोनों साथ में कराएंगे। बट सुन सहेली हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, इतना पता है मुझे, है ना अंशिका?
7: भले ही शादी हो जाए, हम मम्मी पापा का घर छोड़ के चले जाए,
6: हाँ,
7: लेकिन डोंट वरी, क्योंकि आपको छोड़ के नहीं जाएंगे,
6: आपको छोड़ के नहीं जाएंगे।
7: और रही शादी की बात, तो यस मैम की तो बहुत जल्द हो जाए, ऐसा मैं
6: हो गया बस,
7: लेकिन अपने लिए मैं भी थोड़ा टाइम लूंगी, क्योंकि मैं छोटी हूँ ना, बच्ची।
6: नहीं नहीं, तू
7: बड़ों की बात,
6: नहीं नहीं बच्ची नहीं है, तू बच्ची नहीं,
7: नहीं बच्ची नहीं हूँ, अरे साथ में भी कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई,
6: बट अभी नहीं, अभी कोई भी बात नहीं, अभी सिर्फ कमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर अभी जब होगा तो उस चीज को हम लोग सभी के सामने रखेंगे, बट हर किसी की लाइफ में ये दिन भी आता है, ऑब्वियस ही बात है, अंशिका की लाइफ में भी आएगा, मेरी लाइफ में भी आएगा, तो खुशी होती है बताने में, दैट्स इट, है ना?
7: तो हो चुकी है शुरुआत, हो चुकी है शुरुआत, बहुत ही प्यारी प्यारी बात,
6: वो भी नाग पंचमी के दिन
7: और खुशियों के साथ। मैम ने मुझे नाग पंचमी तक नहीं

0: इतनी बे ठीक से पढ़ो मैसेज ठीक से पढ़ो।
1: इतना बेबाकी से बातें करने के लिए शुक्रिया,
0: बताने के लिए।
1: अच्छा सॉरी,
0: चश्मा लगाओ अंशिका, फिर से पढ़ो मैसेज।
1: ओके, इतना बेबाकी से बताने के लिए शुक्रिया।
0: जी हाँ, मतलब उनका मतलब समझी तुम कि इतनी बेपाक तरीके से आपने बताई है जो बातें, उसका शुक्रिया। थैंक यू सो मच गीता जी।
1: लगता है मुझे भी नंबर आ गया है
0: चश्मे का,
1: लेना ही पड़ेगा।
0: हाँ, चश्मा लगवा लो, ज्यादा
1: लगवा लो।
0: पर मैं बिना चश्मे के पढ़ रही हूँ इतनी दूर से।
1: यस मैम,
0: ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की जो आंखों की रोशनी होती है ना, वो अभी भी सही है। तुम सामने बैठ के नहीं पढ़ पा रही हो। चलिए, तो अब शिव पार्वती और नाग पंचमी के उपलक्ष्य में आई बहुत ही प्यारी सी एक पोयम लेकर के आई हूँ, और मैं उसको पढ़ती हूँ, ठीक है अंशिका?
1: जी मैम।
0: सावन की पावन रिमझिम में नाग पंचमी का त्योहार आया। सावन की पावन रिमझिम में नाग पंचमी का त्योहार आया है। भोलेनाथ और माता पार्वती ने सृष्टि पर प्यार बरसाया है। शीश पर गंगा, गले में मुंडमाला, महादेव का रूप ही निराला है, पर उनके कंठ का असली आभूषण तो वासुकी नाग काला है। माता पार्वती संग विराजे हैं, डमरू की डमडम गूंज रही, नाग देवता को दूध पिलाकर दुनिया आज उन्हें पूज रही। भोले के रक्षक विश्व के रक्षक जीवों के देवत्व जगाते हैं। शिव भक्ति के चरणों में रहकर नाग सदा सुख पाते हैं। श्रद्धा से जो शीश झुकाए उनके सब संकट टल जाते हैं। गौरी शंकर और नाग देवता मिलकर झोली भर जाते हैं। पंचमी के इस शुभ अवसर पर मन में भक्ति का दीप जलाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती हम सब पर अपनी कृपा बसाएं।
1: वाह, बहुत ही प्यारी कविता और बहुत ही प्यारी सी लाइंस। बहुत ही एक कहते हैं ना कि जब किसी के थ्रू आप कुछ सुनते हैं तो हमेशा उसमें फीलिंग्स होती है। बहुत ही फीलिंग था। थैंक यू मैम।
0: चलिए, तो आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली, और मैं हूँ आपकी आरजे समता।
1: मैं हूँ आरजे अंशिका।
0: तो आइए शुरू करते हैं आज के ब्यूटीफुल से शो को। और आज है मंडे, जैसा कि आप सभी को पता है कि होता है खाना खजाना, यानी कि लजीज खाना खजाना। बहुत सारी डिशेस को लेकर के आए हैं, साथ में मास्टर शेफ की भी डिशेस को लेकर के आए हैं। लेकिन आज के इस प्यारे मॉनसून को हम एक बार एक ही फ्रेम में दोनों साथ में बोलेंगे हैप्पी मॉनसून, लेकिन एक साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे अंशिका?
1: हैप्पी मॉनसून। तो आइए हैप्पी मॉनसून के साथ बता देते हैं आज का हैप्पी वाला रियल फैक्ट
0: जी,
1: क्योंकि आज हैप्पी है हमारे पास, आज सब कुछ हैप्पी हैप्पी है। ऐसी कुछ बात हुई है, जैसे कहते हैं ना कि घर से जब सुबह आप निकलते हो तो हम कहते हैं दही शक्कर खा के जाना शगुन होता है। तो आज कुछ प्यारा सा शगुन अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है, तो इसलिए आज हैप्पी वाला रियल फैक्ट ऑफ लाइफ बताती हूँ
0: जी।
1: तो वो ये है, मत कहो खराब है तकदीरें, खुद खींचो ना अपनी किस्मत की लकीर। यानी कि कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी तकदीर खराब है, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। जिनके अंदर अपनी किस्मत खुद खींचने का जज्बा होता है उनके लिए पूरी दुनिया भी बुरी नहीं होती। और जो जैसे एक बार एक ही बात है कि जब मैं छोटी थी मैम, तो मेरे पैर पे वो कहते हैं ना जैसे कभी कभी सूज जाता है और घाव हो जाता है, तो कहीं खाल खींच गई थी, घाव हो गया था, तो जैसे ना फोड़ा हो गया है, तो वैसे हो गया था। तो बहुत ज्यादा उसमें पेन था और पूरा सूजा हुआ था, फूला हुआ था, पक गया था, तो मवाद हो जाता है, तो वैसे हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको फोड़ना पड़ेगा और फिर दवाई लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं छोटी थी तो मुझे बहुत पेन, मैंने कहा बहुत पेन होगा जब मैं आप फोड़ोगे तो मैं आपसे नहीं फोड़वाऊंगी, मतलब मैं नहीं इलाज करवाऊंगी, मुझे बहुत दर्द होगा। तो मैं डर गई, मैंने उसको नहीं करवाया। लेकिन 3 दिन के बाद वो इतना ज्यादा इतना बड़ा हो गया कि पूरा मेरा पैर सूज गया और मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि अब तुम सोच लो क्या करना है। तो फिर हमने क्या किया कि हम डॉक्टर के पास गए और हमने उसका पूरा फुल ट्रीटमेंट कराया और वो ठीक हो गया। तो उसी तरीके से कि अगर जख्म को भरना है तो फिर आपको दवाई भी करवानी होगी और आपके जख्म का इलाज आपके जख्म में ही होगा। इसलिए हमेशा खुद कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी कहावत है, अपना हाथ जगन्नाथ। जिसकी अपने हाथों में पावर होती है, खुद के पास सब कुछ करने की ताकत होती है, वो कभी नहीं हारता है। इसलिए अपनी किस्मत हमेशा खुद बनाइए, दूसरों पर डिपेंड मत रहिए।
0: बिल्कुल। तो इसी प्यारे से रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में हम जो आज का थॉट भी हमने मिक्स था उसमें, तो आइए आज भोले बाबा और माँ पार्वती को फिर से समर्पित करते हुए आज के शो को शुरू करते हैं। तो अंशिका, मैं चाहती हूँ कि आज स्टार्टिंग में एक भोले बाबा

और पार्वती माँ का एक प्यारा सा भजन हो जाए, क्योंकि आज के दिन ना मतलब ऐसा होता है ना कि हम हर मतलब आज मैं मॉर्निंग में जब मैं अभी आ रही थी अभी, तो मैंने देखा कि सारे रास्ते इधर के बंद हैं, है ना, तो रास्ते बंद, कोई भी मतलब गाड़ियां नहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं कैसे जाऊंगी, मतलब आज मंडे के दिन तो खैर मैं बोलती हूँ कोई भी भैया लोग आते हैं और मुझे छोड़ के जाते हैं, बट आज तो फिर माहौल भी ऐसा था कि बिल्कुल बारिश हो रही है, कैसे जाना है कैसे आना है, बट एक अलौकिक आज के दिन की जो एक शक्ति होती है वो हमारे अंदर खुद भी खुद आ जाती है। तो प्यारा सा दिन है आज का दिन, और ये 128 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आज के दिन बना है कि आज है सावन का तीसरा सोमवार प्लस नागपंचमी एंड सोमवार के दिन, तो ये बहुत ही बड़ा वाला संयोग आया है। आई थिंक सभी को इसमें बिल्कुल तृप्त हो जाना चाहिए। तो आइए हम एक नहीं आपको दो भजन सुनाएंगे आज भोले बाबा और पार्वती माता के ऊपर, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से भजन को स्टेज पर।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता
4: और साथ में है RJ।
3: देखा गैप हो गया। तो दोस्तों मैं हूँ आपकी आज समता
4: और मैं हूँ RJ अंशिका,
3: ऐसे ही बोलेंगे। देख लेना नीचे कुछ हो ना, नागपंचमी
4: प्लीज बहुत हार्डली रिक्वेस्ट है क्योंकि फिर मेरा जो कंसंट्रेशन है वो हिल जाता है।
3: वैसे दुखरनाथ बाबा हमारे बगल में ही हैं और आज मंदिर के बाहर बहुत सारे नाग देवता बैठे हैं। अंशिका डरना नहीं चाहिए आज के दिन, उनके उन सांप के पांव पकड़ना चाहिए। अब पूछो सांप के पांव कहाँ होते हैं?
4: कहाँ होते हैं?
3: उनकी पूंछ पकड़ना चाहिए।
4: हाँ।
3: है ना,
4: पूंछ पकड़ना,
3: छूना चाहिए, उनसे प्रणाम करना चाहिए। सोचो कि माँ जो हमारे भोले बाबा है उनके गले में जो सांप रहता है उनका नाम पता है तुम्हें?
4: नहीं,
3: अभी जो तुमने मुझे पोयम जो मैंने बोली थी ना,
4: हाँ।
3: उसमें है उनका नाम।
4: आई थिंक वो कहते हैं वासुकी नागराज।
3: हाँ। देखा, नागराज के बारे में जानकारी भी इनको पूरी है लेकिन उनसे डरती भी बहुत है। तुम्हें पता है मैं मुझे कुछ टाइम तक मुझे सब लोग क्या कहते हैं नागिन की उपाधि मिलती थी। मुझे नागिन वो वाली नहीं, वो गंदी वाली नागिन नहीं जो डसती है, ये वो हाँ। वाली नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं नागों से बहुत खेली हूँ। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम तो अभी तक अपने आप को डसवा चुकी होती कई बार। मैं नागों से बहुत बार खेल चुकी हूँ।
4: ना करिए प्लीज रिक्वेस्ट।
3: मैं नागों से बहुत बार खेल चुकी हूँ बचपन में और इंसिडेंट्स पे इंसिडेंट्स हैं। मैं बहुत एक दो आप आज मैं एक तो बताऊंगी, बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स है वो, जरूर तो सुनना चाहेंगे आप लोग लिसनर्स, आप लोग भी बताएं सुनना चाहेंगे, फिर हम रेसिपी की ओर आएंगे।
4: नहीं सुनना चाहते हैं,
3: सुनना चाहेंगे ना। तो एक बार की बात है कि टेंथ हमारा था, टेंथ में थी मैं और मेरे एग्जाम्स हो गए थे। तो क्या होता था कि मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वाला शौक था, मतलब जैसे कहते हैं ना क्रेजी अबाउट दिस, ऐसे जैसे बोलते हैं, तो वो था। और मैंने मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि मैं कभी भी सेकेंड नहीं आई हूँ, ठीक है, कभी भी मैं सेकंड नहीं आई हूँ।
4: मैम हमारी हमेशा फर्स्ट रही,
3: फर्स्ट ही हमेशा से रही।
4: वही मैंने अभी कहा कि मैम,
3: एंड निजी जिंदगी में भी फर्स्ट रही हूँ मैं,
4: बिल्कुल
3: ठीक है। तो हुआ ये था कि पढ़ाई के दौरान जब एग्जाम्स खत्म हो गए तो मई का महीना था और हमारे यहाँ एक दूध वाला आता था और मैंने उससे जो उसकी चावल की बाली होती है ना, थली जो होती है, जो ऐसे बिक्री होती है,
4: धान
3: गोल्डन कलर की,
4: जी जी,
3: तो मैंने उसको एक बार बोला था, वो लेके आया था और मुझे शौक होता था घर को सजाने का, तो मैंने एक पॉट बनाया था कंचों से, जो बहुत पहले चलता था, एक बड़ा सा पॉट ले लो, कंचों को चिपका दो प्लास्टर ऑफ पेरिस से, फिर उसको गोल्डन पेंट किया था मैंने, उसमें मैंने वो धान रखा था, धान को सिल्वर से पेंट करके, क्योंकि वो धान जो होती है ना वो काफी दिन तक चलती है, तो उसको मैंने डेकोरेट करके अपने कॉर्नर पॉइंट पे मैंने उसको सजा के रखा था। अब और वहीं पर मेरी बहुत सारी बुक्स कॉपीज का पूरा ढेर लगा था कॉर्नर पे, तो मैंने उसको अपनी कॉपीज को और अच्छे से डेकोरेट करने के चक्कर में वो पॉट मैंने वहीं रखा था। अब क्या हुआ कि बारिश का समय नहीं था, मई की बात है क्योंकि अप्रैल तक हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे, ठीक है। आप सभी लोग भी प्लीज मेरी बात को सुने, प्रीति जी, गीतू जी, बहुत ही मजेदार बात है ये, नागों से मेरा वास्ता है, मैं वो बता रही हूँ आपको। तो ये तो एक छोटी सी, मतलब ये तो बहुत ही बिना डरे वाली बात है,
4: जी
3: अब नीचे नहीं देखो, नहीं है यहाँ पे वो,
4: नहीं है
3: अब नहीं है। तो ये तो बहुत,
4: वैसे भी आ भी जाएगा तो आप है ना,
3: मैं हूँ ना, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, मतलब बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो उसमें से एक एक इंसिडेंट मैं बता रही हूँ। तो एग्जाम्स खत्म हो गए, तो मैंने सोचा कि एग्जाम्स हो गए, अब मुझे कॉपियाँ और कॉपी ये बुक्स हटानी है वहाँ से, तो मैं वो कॉर्नर खाली करने लगी, सारी कॉपी वॉपी मैंने हटाई। और अब क्या हुआ कि जो पॉट था वो पॉट भी मुझे उसके जो बाली थी, क्या बोलते हैं उसको, जो ये तुमने
4: धान,
3: धान वो थोड़ी सी कलर पेंटेड किया था, तो थोड़ी सी वो काफी टाइम पे वो झड़ने लगी थी, हो गया था उसको महीना दो महीना हो गया था। तो मैंने सोचा कि इसको हटा करके दूसरी मंगवा के उसको पेंट करके रखूंगी। तो मैंने अपना हाथ जो था वो घड़े में पॉट में डाला, पॉट में डाला, और पॉट में डाला जैसे तो मुझे कुछ हल्का सा गीला गीला लगा। विश्वास नहीं करोगी कि
4: मत करिए,
3: मैं नहीं नहीं, मतलब मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ,
4: अच्छा,
3: मैं
4: अच्छा।
3: तुम विश्वास नहीं करोगी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें लगेगा कि मैम ऐसे कैसे बता रही है। वो मेरा मेरी फिंगर दो पता है वो कहाँ गई थी,
4: कहाँ पे?
3: वो सांप के मुंह में गई थी।
4: ओह माय गॉड।
3: और मैं तब भी बच गई, वो सांप के ऐसे जैसे जैसे उसको आहट हुई ना, तो उसने आ करके ऐसे मुंह खोल लिया था अंदर, और मेरा हाथ उसी में, मतलब जैसे मैंने बाली को निकालने के लिए अंदर किया तो मेरे हाथ वो गीले गीले हो गए। आई मीन उसका जहर होगा कि क्या होगा, वो उसमें मेरी फिंगर्स पे लग गया, और मैंने जैसे हाथ बाहर निकाला वो फटाक से रेंगता वो बाहर आया, और पॉट मेरे हाथ से छूटा, और मैं मतलब चिल्लाई नहीं, नॉर्मल में मैंने कहा मम्मी उसमें सांप है। मम्मी ने कहा तुम इतनी नॉर्मल में बोल रही हो सांप है, मैंने कहा हाँ सांप है इसमें। तो फिर ये हुआ कि सब पूरी चीज़ें बताई मैंने कि हाथ मैंने डाल दिया था उसके मुंह में चला गया था। फिर खैर मैंने हाथ को कई बार धुला उला, तो अभी भी जैसे सोचते तो गुदगुदी सी लगती है बॉडी में। फिर हम लोगों ने किसी को बुलाया उसको, फिर मतलब घर में ढूंढ ढूंढ के उसको निकाल के बाहर किया गया। तो ये इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसे कई बार, मैं एक बार रूम में सो रही थी और मेरी जो रूम की जो रॉड लगी हुई थी वो रॉड के ऊपर से वो तो बहुत काला और बड़ा सांप था, मेरी दो बुआओं के बीच में सो रही थी मैं, और जैसे लाइट ऑफ कर ऑन किया तो वो ऐसी लंबी सी वो ऐसे था शिव भोले। तो इसीलिए भोले बाबा ने मुझे प्यार से अपनी बेटी बना लिया है कि बेटा ये पहले से ही जो ये नागों का जो सिलसिला है ये पहले से ही है।
4: माय गॉड, मतलब
3: मैं इतनी ब्रेव हूँ, देखो।
4: हाँ बहुत ब्रेव है आप, हैट्स ऑफ टू यू। और मुझे लूज बम्स आ गए थे सुन करके वो चीजें, क्योंकि भाई ये मतलब ऐसा है कि इंसानों से तो मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन ये एक ऐसा जीव है जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो डर है लेकिन डर के साथ में पूरी श्रद्धा है हमारे, मतलब जो भी देव
3: पर है। तुम्हें मेरी बात सुनकर कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा।
3: हाउ फील?
4: थोड़ा सा डर हुआ, थोड़ा सा डर लगा,
3: ज्यादा से ज्यादा नहीं,
4: नहीं थोड़ा सा, क्योंकि जब आपने वो बताया ना कि वो उसके मुंह में चले गए थे तो वो सोच के मुझे ऐसे बहुत ज्यादा वो
3: लगा। सोचो तुम अगर होती वहाँ पे तो क्या करती?
4: पता नहीं, शायद अब तक मैं ऊपर होती।
3: नहीं तो तुम तो, तुम्हें लगा गीला गीला तो तुम्हें लगा होगा कहीं पेठा तो नहीं है, लाओ उसको निकाल के खाएं, फिर तो तुम
4: नहीं। मैम ऐसी सिचुएशन में मैं खुद को सोच भी नहीं सकती।
3: हाँ
4: क्योंकि अगर मेरा हाथ उसके मुंह में गया भी होगा कभी, अगर मैं ऐसा इमेजिन भी करूं तो फिर तो मेरा जो होता वो होता, शायद फिर आप आरजे अंशिका को यहाँ सुन नहीं रहे होते, कहीं और ही पहुंच गई होती मैं अब तक।
3: एग्जैक्टली, तो बस आज नाग पंचमी के दिन एक ये स्टोरी मुझे याद आ गई,
4: हमारी मैम सांपों से खेल चुकी।
3: हाँ मैं खेल चुकी
4: और एक सांप का फन भी कुचल चुकी है ना मैम, कुचल चुकी है बहुत अच्छे से।
3: नहीं कुचला तो नहीं है अभी,
4: नहीं
3: कुचलना बाकी
4: है, हो गया मैम
3: कुचलना बाकी है,
4: 50%
3: उसको पिंजरे से निकाल के फेंक दिया है,
4: 50% हो गया।
3: हाँ कुचलना बाकी है, और फिर उसको हाथों से नहीं कुचलूंगी,
4: बातों से
3: भी नहीं, हाई हील से।
4: ओ फिर मुझे सॉन्ग याद आ गया,
3: हाई हील्स वाला,
4: मेरी हाई हील से मार तू खा लेगा, वही कुछ मुझे
3: हो गया। चलिए तो अब हम रेसिपी को लेते हैं आज की, जो कि आज सोमवार है और हमारे भोले बाबा के दिन है, तो फटाफट हम आज की एक रेसिपी को सुनेंगे एंड देन मास्टर शेफ की व्रत वाली रेसिपी की ओर।
4: बिल्कुल चलेंगे रेसिपी की ओर, लेकिन उससे पहले मैम क्या है ना कि भोले बाबा को हमारी जो माता पार्वती जी हैं वो बुला रही हैं।
3: अच्छा।
4: तो एक काम करते हैं कि उन्हें उन तक पहुंचा देते हैं और फिर आते हैं आपसे रेसिपी बताने के लिए।
3: ये पहुंचाने का काम मतलब एक सॉन्ग?
4: हाँ
3: ओके ठीक है ठीक है, चलो
4: तो चलिए शिव पार्वती का बहुत ही प्यारा सा भजन सुनते हैं और आते हैं भजन के उस पार आज कुछ मीठा लेकर।
3: हाँ जी ठीक है, तो बस हम यू गए यू आए इस प्यारे से आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं भोले बाबा के भजनों के साथ में और कुछ व्रत की रेसिपीज के साथ। बस हम यू गए यू आए।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता
3: और साथ में है आरजे अंशिका।
2: देखो बेचारी मेरी मोबाइल तुमने गिरा दी ना,
3: क्या करें मां,
2: इतनी बेचारी। वैसे एक तो सीधी साधी मेरी मोबाइल है,
3: जो सीधे साधे होते हैं वही गिरते पड़ते
2: हैं। सही बात है, जैसे कि हम ये बात लेकिन हजम नहीं हुई। नहीं तुमने नहीं बोला अभी।
3: नहीं अरे नहीं, पूरा तो बोलने में पूरा नहीं बोलने देती।
2: हाँ
3: मैंने कहा नहीं आप नहीं गिरेंगे।
2: नहीं ऐसा नहीं था, तुमने कहा नहीं आप सीधी नहीं है।
3: आप सीधी नहीं है ये मैंने कहाँ कहा।
2: अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चले अब रेसिपी फटाफट। हाँ। कुछ खिला दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
3: तो चलिए खाते हैं भाई। व्रत जब होता है तो मन में ये होता है कि व्रत है, तो आज हम आपको गुजिया खिलाएंगे।
2: व्रत में गुजिया?
3: यस, और उसके साथ खिलाएंगे बहुत ही अच्छा सा चाशनी वाला हलवा भी।
2: चाशनी वाला हलवा और गुजिया,
3: क्योंकि आज है गुड़िया, मतलब ऐसे नाग पंचमी को गुड़िया भी बोलते हैं।
2: हाँ हाँ।
3: तो बहुत लोगों के यहाँ गुजिया बनती है और रस वाला हलवा भी बनता है, लेकिन वो रवे का बनता है और मैदे की गुजिया बनती है, क्योंकि नॉर्मली तो यही होता है। लेकिन आज हम व्रत वाला हलवा और गुजिया खिलाएंगे आप
2: जी,
3: जो वो भी खा सकते हैं जिनका फास्ट है।
2: okay.
3: क्योंकि भाई ना इंसाफी क्यों, अगर आप त्योहार मना रहे हैं तो फिर उनके लिए भी होना चाहिए ना, क्योंकि जिनका फास्ट है।
2: हाँ,
3: क्योंकि
2: बिल्कुल।
3: इस बार मैंने फास्ट नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन हर बार तो मैं फास्ट रखती हूँ ना। वैसे मेरे यहाँ नहीं होता है ना, नाग पंचमी होती है ना गुड़िया होती है।
2: हाँ।
3: लेकिन मैं मेरे फ्रेंड्स के घर जब जाती हूँ, तो जब जाती थी मैम, तो हमेशा वो कहते थे लो अंशिका खाओ, और मुझे मन मार के कहना पड़ता था नहीं मैं नहीं,
2: मेरा आज व्रत है,
3: मेरा आज व्रत है। तो फिर मेरी फ्रेंड है, बहुत मतलब मुझे मानती है, तो उसने बोला कि ठीक है हम तुम्हारे लिए व्रत वाला बना के रखेंगे और तुम आना तो फिर खाना, ऐसा नहीं कि तुम ना खाओ। तो बस वही है कि आज कुछ मैं आपको भी बता देती हूँ कि व्रत की वजह से थोड़ा सा अपने मन को दबाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे भोले बाबा जो हैं वो कहते हैं खाओ मस्त रहो जबरदस्त रहो, वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे भक्त जो है वो अपने मन से और पेट से समझौता करें। तो आज वो आपसे नहीं कराते हैं मन से और पेट से समझौता, बताते हैं कि करना क्या है, सिर्फ कुछ चेंजेस करने हैं। और वो चेंजेस ये हैं कि गुजिया आपको बनानी है ना, तो गुजिया बनाने के लिए ले लेना है आपको 1 कप आटा, या आटा राजगीरा लीजिएगा या फिर सिंघाड़ा। राजगीरे का आटा बहुत मुश्किल से मिलता है, जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए आप 1 कप सिंघाड़े का आटा ले लीजिएगा। देसी घी ले लेना है आपको 1.5 कप, 1 कप चीनी ले लेनी है, 2 कप पानी ले लेना है चाशनी बनाने के लिए, और उसके बाद में आपको ले लेना है 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और ढेर सारे कटे हुए मेवे। कटे हुए मेवे में है बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, आपके पास जो भी है सब कुछ आपको ले लेना है। अब इसमें बारी आती है कि हम स्टफिंग क्या करेंगे, क्योंकि उसमें तो खोआ भरा जाता
2: है गुजिया में ना,
3: गुजिया में।
2: और किससे ऊपर की जो परत है वो किससे बनाई जा रही है?
3: वो बनाई जा रही है सिंघाड़े के आटे से।
2: ओह माय गुडनेस।
3: और अंदर आप खोआ आराम से भर सकते हैं, क्योंकि खोआ खाने की
2: दूध का होता है। हाँ।
3: व्रत में बिल्कुल मनाही नहीं होती है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप खोआ जो बना रहे हैं ना वो
2: आप घर का बनाए, मार्केट का नहीं।
3: बिल्कुल घर का बनाए, मार्केट का नहीं, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कुछ उसमें मिक्स एंड मैच हो, तो आप घर पे बनाइए। ये हो गया। अब आते हैं कि बनाना कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक पैन ले लेना है, उसमें 2 कप पानी डालना है और 1 कप चीनी डालकर इसकी चाशनी पहले तैयार कर लेनी है।
2: ओके,
3: हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, तो 1 तार की चाशनी के लिए 1.5 कप चीनी जो मैंने अभी आपको बताई वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसको आपको कर लेना है अच्छे से। चाशनी बन जाने के बाद जब वो हल्की ठंडी हो जाएगी, मतलब गुनगुनी ही रहेगी, तभी आपको हाथ पे उसको डाल करके अपने फिंगर्स पे एक बार चेक कर लेना है। तो जब ऐसे चेक करेंगे तो वो 1 तार की अगर हो रही है तो इसका मतलब आपकी चाशनी
2: परफेक्ट
3: रेडी है। अब चाशनी रेडी हो गई, अब हमें क्या करना है कि इसे रख देना है। इसमें इलायची पाउडर आपको पहले मिला देना है, और फिर इलायची पाउडर मिला करके एक बार इसको आपको उबालना है और फिर बंद करके इसको रख देना है। अब आते हैं कि हमें कैसे गुजिया का प्रोसेस करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक
2: अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे गुजिया आप बोल रहे हो तो गुजिया बनाने के लिए तो एक सख्त आटा गूंथा जाता है, लेकिन कुट्टू और सिंघाड़े का आटा तो बहुत सॉफ्ट होता है।
3: यस मैम, लेकिन इसको जब आप गूंथेंगे तो गूंथने के लिए भी कुछ ट्रिक है जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाएगा।
2: अच्छा जी।
3: और अगर थोड़ा सा नरम रहेगा भी तो गुजिया काफी सॉफ्ट बनेगी।
2: सॉफ्ट बनेगी,
3: जैसे मैदे की हम कहते हैं ना क्रिस्पी होनी चाहिए, ये भी क्रिस्पी होगी जब आप इसमें देसी घी का डालेंगे,
2: मोयन डालेंगे,
3: मोयन डालेंगे तब।
2: ओके,
3: तो आइए अब बताते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी गर्म करना है। इसमें आप राजगीरे का आटा ले रहे हैं या सिंघाड़े का, लेकिन बता दूं कि राजगीरे का आटा जल्दी मिलता नहीं, लेकिन सिंघाड़े का आटा आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले आपको सिंघाड़े का आटा डालकर इसे भूनना है, और तब तक भूनना है जब तक ये पूरा ब्राउन ना हो जाए। याद रखिए, जितने अच्छे से आटा भुना हुआ होगा उतनी ही अच्छी बनेगी आपकी गुजिया। अब आपने इसको अच्छे से भून लिया, और फिर आपको क्या करना है कि जब अच्छे से ये भुन गया, उसके बाद आपको खुशबू आने लगती है। जैसे हम जब रवा भूनते हैं ना, तो हमें रवे में से खुशबू आती है, तो पता चल जाता है ना कि हमारा रवा भून गया,
2: भून चुका है।
3: वैसे ही ये भी भून चुका होगा जब आपको खुशबू आएगी। अब आपको क्या करना है कि आपको इसमें अच्छी तरीके से इसको पहले थोड़ा सा घी गरम करिए, अलग आपको घी गरम करना है, और वो घी गरम करके इसमें डाल देना है। कुछ और बताओ, चीनी नहीं गुड़ से बताओ। वंदना जी, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में हम गुड़ का भी तड़का लगा देते हैं, क्योंकि हमारे किचन में कुछ अतरंगी सतरंगी हमेशा होता रहता है।
2: ये बताओ, गुड़ खा सकते हैं ना?
3: हाँ मैम।
2: तो पहले ये रेसिपी कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर
3: जी।
2: ठीक है,
3: तो चलिए बताते हैं आपको कि आपको अब क्या करना है। तो आपने क्या किया कि उसको अच्छे से
2: एक मिनट, वायु नंदन, वंदना तुम बोली हो अभी हमको,
3: नहीं ओ सॉरी,
2: चश्मा लगाओ अंशिका।
3: हाँ मैम, आज कुछ
2: तो वायु नंदन जी, बता दूं कि आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस तरीके का अगर मैसेज आया, गाना सुनाओ बढ़िया वाला, तो ये चीजें हमारे शो में नहीं होती हैं। और आपसे बहुत प्यार वाला अनुरोध है कि आप इस तरीके के मैसेज करेंगे तो हमें मैसेज डिलीट करने के साथ साथ मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आपको जो रेसिपी सुन रही है, अभी ये विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है, तो इस तरीके के मैसेजेस आप ना करें प्लीज।
3: बिल्कुल, तो आइए बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ, जो कि मैं आपको बता रही थी कि आपको क्या करना है। तो आपको अलग पहले घी कायदे से गरम कर लेना है। जैसे हम जब पूड़ी के लिए वगैरह के लिए गरम करते हैं, तो हम देखते हैं ना कि उसमें छोटी सी आटे की वो डाल करके कि हाँ अच्छे से गरम हो गया है, तो वैसे ही आपको एक बार चेक कर लेना है। जब वो अच्छे से गरम हो जाएगा, उसके बाद आपको उसको कच्छुल से उठाना है और उसे उसी आटे में डाल देना है, जैसे हम मोयन देने के लिए डालते हैं ना नॉर्मली, और डाल करके अच्छे से आटे को अपने हाथों से मल के खूब अच्छे से उसको मिक्स एंड मैच कर लीजिए। जब वो पूरा मिक्स एंड मैच हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथों पे लेकर लड्डू बांध के उसको देखना है, क्योंकि हमारे आटे में मोयन अच्छा है या नहीं ये तभी पता चलता है जब हमारे लड्डू बनने लगते हैं
2: जी।
3: अगर आपके लड्डू प्रॉपर बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अच्छे से वो आटा, उसमें मोयन है, वो रेडी हो।
2: हाँ, मोयन का ही मेन कहते हैं ना हम लोग, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि मेनली इन सब चीजों में, जैसे खस्ता हो गया, नमक पारा हो गया, तो उसमें मोयन का ही मेन काम होता है।
3: बिल्कुल, अब आ गया आपका मोयन, तो यानी कि आपका आटा जो है वो प्रॉपर रेडी है। अब आपको हल्का हल्का पानी डालते हुए इसे गूथ लेना है। और अगर आप अपने आटे को टाइट करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी टिप बताती हूँ। जो चाशनी आपने बनाई है, उसमें से एक बड़ा चम्मच चाशनी का उठाइए और अपने आटे में डाल दीजिए।
2: ओके,
3: आटा टाइट हो जाएगा।
2: ऐसा होता है?
3: यस मैम, अगर आप किसी भी चीज में आटे में चीनी डाल देंगे ना मोयन डालने के बाद, तो वो खुद ब खुद टाइट हो जाएगा।
2: वो टाइट हो जाएगा, तो यानी कि जो ये रागी बोल रहे हो ना, और उसका कुट्टू के आटे में अगर हम हल्की सी एक चाशनी का एक चम्मच डाल देंगे, तो वो ऑलरेडी वो टाइट हो जाएगा।
3: बिल्कुल,
2: गुड आइडिया। एंड ये तो टिप ऑफ द डे हो गया भाई।
3: बिल्कुल मैम, तो ये आपका आटा, अगर आप चाशनी डाल देंगे उसके बाद आप गूथेंगे धीरे धीरे, तो रेडी हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, चाशनी हल्की सी ही गर्म हो, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म होगी तो फिर वो जब आप आटे को गूथेंगे तो आपके हाथ में लग सकती है। अब आपने इसको कर लिया अच्छे से, तो आटा रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है कि जब ये आटा आपका हो जाए, तो 10 मिनट आपको इसे रेस्ट पे रख देना है। रेस्ट पे आपने रख दिया, अब आते हैं स्टफिंग पे। स्टफिंग के लिए सबसे पहले आपको खोए को अच्छी तरीके से भून लेना है
2: जी।
3: अच्छे से जब आप उसको भून लेंगे, तो वो ब्राउन ब्राउन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको चीनी बहुत कम डालनी है, क्योंकि पहले तो आप चाशनी वाली बना रहे हैं, और दूसरी बात आपने आटे में भी चाशनी डाली है, तो खोए में चीनी ना हो, मैं तो कहती हूँ मत डालिए।
2: हाँ।
3: क्योंकि खोए में अपनी एक नेचुरल मिठास होती है। आपको अब इसमें सारे मेवे, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी आपके पास है वो आपको इसमें डाल देना है। हाँ लेकिन एक बात और है, चिरौंजी मत डालिएगा
2: जी,
3: क्योंकि आप इसे व्रत में खाने वाले हैं, तो चिरौंजी व्रत में नहीं खाई जाती, आप चिरौंजी मत डालिएगा।
2: ओके।
3: और बाकी सारे आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब सारे ड्राई फ्रूट्स आपने डाल दिए और इसके बाद अच्छे से मिक्स एंड मैच कर लिया, आपका ये स्टफिंग रेडी हो गया। स्टफिंग रेडी होने के बाद आपको इसमें अच्छे से जैसे गुजिया का हम बनाते हैं ना लोई बना करके, और उसमें अच्छे से इसको भर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम मैदे की गुजिया बनाते हैं तो हम बगल बगल में जो लगाते हैं ना ऐसे मैदे में घोल करके घोल, वो मैदे का होता है। लेकिन जो कि आपने इसके सिंघाड़े के आटे का बनाया है तो आप सिंघाड़े के आटे का ही घोल बना लीजिएगा और किनारों किनारों पे लगा के अच्छे से उसको आप वो कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं गुजिया। अब गुजिया बंद कर लेनी है, अच्छी सी गुजिया की आपके पास मशीन होगी, गुजिया आप मशीन में चाहे तो बना सकते हैं, और अगर मशीन नहीं है तो हाथों से जो बनाई जाती है वो भी बहुत अच्छी बनती है।
2: हाँ।
3: हाथों से वो करके डिजाइन करके आप वो भी बना सकते हैं, अच्छे से बनाइए और देसी घी में तलिए,
4: क्योंकि देसी घी में भी अपने अपनी एक टेक्निक है। अंशिका, एक एक टिप ऑफ द डे मैं भी बताना चाहती हूँ। आप नॉर्मल घी में अगर आप इसको तलते हैं, या तो आप डालडा में या तो देसी घी, हालांकि आप तो कोई डालडा यूज नहीं करता है, लेकिन अगर आप रिफाइंड में करते हैं तो वो उतना टाइटनेस नहीं आता है, लेकिन आप देसी घी में आप तल के देखिए, एक अच्छे से एक क्या कहते हैं क्रिस्पी भी आ जाता है और वो बढ़िया से जैसे कहते हैं ना बंध जाती है, तो वो एक टाइटनेस भी आ जाती है उसके उसमें तलने से।
3: तो बढ़िया देसी घी में आप फ्राई करें और अच्छी सी आपकी गुजिया रेडी हो गई। अब आते हैं हलवे पे, क्योंकि भाई आधा तो नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे तो हम आपको पूरा ही, लेकिन इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी
4: जी,
3: और वो इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो आपके पास पहले से हैं,
4: ऑलरेडी हैं,
3: ऑलरेडी हैं। बस आपको करना ये है कि थोड़ा सा आटा लेना है सिंघाड़े का, उसे अच्छे से भून लेना है देसी घी में।
4: ओके।
3: अच्छे से भूनने के बाद में जब वो भुन जाए तो आपको इधर चाशनी रेडी रखनी है।
4: हाँ।
3: हलवे के लिए जब भी चाशनी बनानी चाहिए तो पकी हुई और थोड़ी सी गाढ़ी बनानी चाहिए।
4: हाँ।
3: ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं ना कि बिल्कुल पतली चाशनी
4: पतली बना देते हैं,
3: और जब वो आपके हलवे में जाता है तो मिठास नहीं लाता है और ना ही हलवा अच्छे से जमता है,
4: और वो बहुत क्या कहते हैं लिक्विड बन जाता है, वो समेटा वाला नहीं रहता है फिर। हाँ,
3: गाढ़ी सी अच्छी चाशनी तैयार कर लेनी है। जब अच्छी सी तैयार हो जाएगी उसके बाद आपने जो भुना हुआ आटा है उसमें ये चाशनी डाल देनी है। चाशनी डालने की थोड़ी देर बाद आपको 5 मिनट चलाना है, आपका हलवा रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें सारे मेवे डाल देने हैं, इलायची पाउडर डाल देना है, फिर से एक बार इसको अच्छे से मिक्स एंड मैच कर लेना है, बस रेडी हो गया आपका हलवा
4: जी,
3: और बढ़िया सा पैकेज
4: जी, बिल्कुल। तो वायु नंदन द्विवेदी जी, इट्स ओके, आपने क्षमा मांगी है, इट्स ओके, आपको बात मेरी बहुत जल्दी समझ में आ गई, इट्स ओके, बट हमारे भी प्रोग्राम की कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं, आप बाकी मैसेजेस भी आप देख सकते हैं, बट आप अभी आप नए नए आए हुए हैं या आई हुई हैं तो हमने ज़्यादा आपको नहीं कुछ भी बोला, बट मैं बता दूं कि ये विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है और आज का दिन होता है रेसिपी का, तो प्लीज़ अगर आप लोग इस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे भी शो की एक कहते हैं ना कि खूबसूरती होती है, और वो खूबसूरती आपसे ही होती है, ऐसा नहीं है हम लोगों से होती है, आपसे होती है, आप सुनते हैं, आप उसको जैसे कहते हैं ना कि सराहना करते हैं उस प्रोग्राम की। तो चलिए, इट्स ओके, आपने सॉरी भी बोल दिया, चलते हैं गाने की ओर, और गाने के बाद आएंगे चैट बॉक्स में सीधे एंड हमारे मास्टर शेफ की रेसिपी।
3: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: पसंद है और खुद भी कुछ भी खा के पानी पी लो, तो चलिए सामान लिखना शुरू करें।
1: जी मैम।
0: सबसे पहले आप मैदा ले लेंगे 2 कटोरी। अब आपकी इच्छा कटोरी बड़ी हो या छोटी हो, जो भी हो, लेकिन जो कटोरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं पूरी तौल उसी पे रखिएगा। ये नहीं है कटोरियां बदल दे।
1: जी मैम।
0: एक ही कटोरी रखिएगा। तो मैदा आप 2 कटोरी ले लेंगे, देसी घी 3/4, मतलब 3 हिस्सा भरा रहे 1 हिस्सा खाली रहे, वो ले लेंगे आप। और मीठा सोडा, अगर आप 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो 2 चुटकी आप मीठा सोडा ले रहे हैं।
1: जी।
0: अगर आप 1 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो 1 कटोरी आप मीठा सोडा ले रहे हैं, चुटकी 1/4 चुटकी। और चीनी आप 1 कटोरी ले रहे हैं, तो 2 कटोरी मैदा हो गया, देसी घी 3/4 हो गया, मीठा सोडा 2 चुटकी हो गया और चीनी 1 कटोरी।
1: जी।
0: और तलने के लिए तेल, अब चाहे आप रिफाइंड लीजिए, सरसों का तेल छोड़ के आप किसी में भी तल सकती हैं।
1: जी मैम।
0: तो चलिए सबसे पहले तैयारी कर ली। अब आपने अब विधि देखिए। पहला नंबर, मैदे को अच्छी तरह से छान ले, ठीक है
1: जी।
0: और जहाँ तक हो मैदे को आप 2 बार छानिए छन्नी से।
1: जी मैम।
0: उसके बाद उसमें देसी घी मिला दीजिए, बेकिंग पाउडर मिला दीजिए और अपनी हाथ की उंगलियों से बराबर बराबर चलाते हुए खूब मैदा घी और बेकिंग पाउडर को आप एक सार कर लीजिए।
1: जी।
0: जब सब मिल जाए तब आप उसमें पानी का छींटा दे दे सानिए, पानी एकदम से मत डालिएगा।
1: जी मैम।
0: थोड़ा सा चम्मच में ले लेके आप डालती रहिए, क्योंकि हमें खूब अच्छा कड़ा कड़ा सा डो बनाना है।
1: जी।
0: मुलायम नहीं बनाना है, जैसे हम लोग मठरी अठरी बनाते हैं वैसा नहीं बनाना, कड़ा बनाना।
1: जी मैम।
0: फिर इसको जो डो हमने तैयार किया है इसको 10 मिनट के लिए हम कपड़े से ढककर अलग रख देंगे, ठीक है
1: जी।
0: उसके बाद अब तैयारी क्या करेंगे कि कढ़ाई में जो है वो डालेंगे तेल और धीमी आंच पे चढ़ा देंगे गरम होने के लिए।
1: जी मैम।
0: क्योंकि अगर जब हमारा आटा तैयार हो जाएगा तो बेलने में हमें समय नहीं लगेगा, तो हम इधर अपनी धीमी आंच पे गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसके बाद मीडियम आंच कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि जो हमने 10 मिनट पहले डो सान के रखा है उसको हाथ से खूब अच्छे से मल लेंगे।
1: जी।
0: और मलने के बाद 2 ही लोई बनेगी 2 प्याले कटोरी में, तो हम आधा कर लेंगे और उसको खूब अच्छे से मल करके और 1 अंगुल बराबर, मतलब मोटा 1 सेंटीमीटर बराबर मोटा बेल लेंगे।
1: जी मैम।
0: और बेलने के बाद चौकोर टुकड़ों में या तिकोनों में आपकी इच्छा,
1: जैसे आप चाहें,
0: हाँ उस इसमें काट लेंगे पर मोटा रहेगा।
1: जी।
0: अब आप क्या करेंगे कि कढ़ाई में आपने तेल डाल रखा है, आप एक एक उठा, मतलब एक घान जो आपने बेला है वो उठा के डाल दीजिए और तुरंत नहीं चलाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जब थोड़े खुरमे जो है जब ऊपर आने लगे, जब आप तेल में डालेंगी
1: जी,
0: तो पहले नीचे रहेंगे, जब ये थोड़ा घी अब्सॉर्ब कर लेंगे तो ये ऊपर आने लगेंगे।
1: जी मैम।
0: जब ये ऊपर आने लगे आप तभी इसको चलाएंगी।
1: जी।
0: और गुलाबी गुलाबी सेक करके अलग निकाल के पूरे को रख लेंगी।
1: जी मैम।
0: ठीक है। अब आप क्या करेंगी, आपका पूरा खुरमा बन गया, सेक लिया, अलग रख लिया। अब एक और कढ़ाई लेंगे, उसमें हम चीनी डालेंगे, जो हमने जो है चीनी ली है ना 1 कटोरी, और उसको छोड़ जो है आधी कटोरी हम पानी डालेंगे।
1: जी।
0: नाप करके ही डालिएगा और तेज आंच रखेंगे, और जब गाढ़ा बुलबुला सा बनने लगेगा, तुमने देखा होगा चीनी जब पकाओ तो बुलबुल मतलब पहले खौलती है फिर बुलबुले छोड़ने लगती है।
1: जी।
0: जब बुलबुले छोड़ने लग जाए, अब आप इसमें हमको चाशनी नहीं देखनी कि 1 तार की है कि 2 तार की है, जब बुलबुले आ रहे हैं उसी समय हम जो ये खुरमा बनाए हैं ये सब खुरमे उसमें डाल देंगे।
1: जी।
0: भले वो पिघली पिघली रहेगी, उसके बाद आंच हम बंद कर देंगे, थोड़ी देर 1-2 मिनट चलाएंगे आंच पे ही, फिर हम आंच बंद कर देंगे और कढ़ाई को उतार लेंगे या उसी पे रखा रह देंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे हम उसको चलाते रहेंगे। अब आंच तो है नहीं पर वो चाशनी गर्म है

0: पिघली हुई भी है। तो हम इसको चलाते जाएंगे और एक समय आएगा कि खुरमा जो है वो पूरा का पूरा चाशनी, क्योंकि हमने तार की तो बनाई नहीं है
1: जी जी,
0: पर वो पूरा खुरमा एब्जॉर्ब कर लेगा चाशनी को
1: जी मैम,
0: और बस आपका तैयार है। और जूसी जब आप खुद खाएंगे, बच्चों खाएंगे, तब इसके अंदर हल्की हल्की सी चाशनी आपको मिलेगी खाने के लिए। ऊपर से जो है आप बच्चों को दीजिए सर्व करने को गरम गरम, खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, शीशी में भर के रख लीजिए, एक महीने तक ये बहुत अच्छा चलेगा।
1: वाह, मतलब इतने अच्छे खुरमे सुन के तो मन यही कर रहा है मैम कि घर जाऊं अभी बनाऊं और बस फटाफट से खा,
0: फटाफट खा लिया जाए, बहुत अच्छा बनता है
1: जी।
0: और जैसे हम लोग चाशनी में बनाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ढाई तार की चाशनी हो जाए या तीन तार की हो गई, तब हम लोग डालते हैं, तेजी में चीनी सूख जाती है ऊपर ऊपर, फिर हम लोग निकाल लेते हैं। पर ये उससे थोड़ा भिन्न है
1: जी,
0: थोड़ा क्योंकि जूसी मीठा खुरमा है
1: जी,
0: इसमें हल्का हल्का सा जो हमने चाशनी में उतार के बनाया है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करा है, एक दो घंटा लगेगा आपको। तो हम चलाते जाएंगे थोड़ी देर बाद, फिर उलट पुलट दिया फूल, तो इससे वो पूरी चाशनी पी लेगा
1: जी मैम। तो चलिए लिसनर्स चलते हैं और इस मीठे मीठे खुरमे के साथ सुनते हैं एक मीठा मीठा सा सॉन्ग, बस यू गए यू आए, स्टे ट्यून।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बच्चों आजकल जो है बन बहुत खाते हैं, कभी कहेंगे ना कि हम पाव भाजी खाएंगे
1: जी,
0: कभी कहेंगे कि इसी में मोयनीज लगा दो हम मोयनीज खाएंगे। तो आज हम आपको बहुत सरल ढंग से बन सिखाना सिखा रहे हैं।
1: अरे वाह।
0: और इसमें कोई ना ज्यादा सामान लगना है ना ज्यादा ही मेहनत लगनी है
1: जी मैम।
0: और आपको ये बहुत ताजा ताजा बहुत बाजारों में देखते नहीं है, कोई पैर से सान रहा, कोई हाथ से डबल रोटी सान रहा। एक तो आप अपने घर में तैयार करेंगी तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगी। तो चलिए सामान लिखिए। सबसे पहले तो हम ईस्ट पाउडर बाजार में मिलता है, आप उसको मंगा के अपने घर रख लीजिए
1: जी।
0: तो अब विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्याला गुनगुना दूध लेंगे। गुनगुना मतलब ना बहुत तेज गर्म हो ना बहुत ठंडा हो
1: जी।
0: उंगली में डालिए, आप डालिए जब दूध में उंगली तो आपका मतलब आराम से महसूस करें कि गुनगुना है
1: जी मैम।
0: अब आप उसमें जो है 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे।
1: पिसी हुई चीनी,
0: हाँ, जो हमारा दूध है उसमें हम 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे
1: जी मैम।
0: उसके बाद हम उसमें 2 चाय का चम्मच ईस्ट पाउडर डाल देंगे
1: जी।
0: और 10 मिनट तक ढक करके इसको अलग करके रख देंगे, ठीक है
1: जी मैम।
0: अब जो है हम मैदा लेंगे 3 कप अलग से, उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, ठीक है
1: जी मैम।
0: और खूब अच्छे से इसको भी हम मिला लेंगे। अब ये जानती हो मैदा छानेंगे ही हम 2 बार,
1: हाँ।
0: उसमें तब नमक मिलाएंगे। अब ये बार बार बताने वाली बात नहीं है, जब हम लोग कोई चीज यूज करते हैं तो 2 बार छान ही लेते हैं, खास तौर पे बरसात के समय। और उसमें हम जो है नमक डाल देंगे, फिर हाथों से जो है खूब अच्छे से। अब जो है इसमें हम 3 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर जो बाजार में आता है ना, जिसको हम लोग लेते हैं, तो इसमें हम 3 टेबल स्पून बटर डालेंगे
1: जी मैम।
0: अब उसके बाद इसको भी खूब हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो हमने ईस्ट का घोल तैयार करा है, जो हमने ईस्ट एक्टिवेट किया है, जो दूध में डाला था, उसको हम इसी मैदे में डालेंगे
1: जी।
0: तो आप जब ये ईस्ट एक्टिवेट हुआ ये आप कैसे जानेंगी, जानेगी जो दूध है आपका वो जैसे फटाफटा ऊपर नहीं जमने लगता है
1: जी मैम,
0: वैसा जम जाएगा, तब आप जानिए कि ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है।
1: ओके मैम।
0: अब आप उसको ले करके और उससे आप मैदे को सान लेंगे,
1: उस ईस्ट से जो हमने, हाँ, पहले ही घोल के रखा हुआ है उसी से मैदा सान,
0: बिल्कुल सान लेंगे
1: जी जी।
0: आप अपने चाहे हाथों से मिलाइए, अगर आपके पास हैंड मिक्सर है ग्राइंडर आप उससे चला लीजिए, तो खूब अच्छे से मैं चलाना है
1: जी मैम।
0: अगर हाथ से है तो आप हाथ से खूब अच्छे से। अब आप इसको भी क्या करेंगी कि 10 मिनट तक ढक करके फिर रख देंगी इस मैदे को जो आपने बहुत अच्छे से मिलाया है
1: जी,
0: जो हमने हैंड ग्राइंडर से मिलाया है सब है, उसको 10-15 मिनट आप ढक देंगी
1: जी।
0: उसके बाद फिर उठाएंगी। अब हाथ में आप हल्का हल्का बटर या घी लगा लेंगी
1: जी मैम,
0: और हाथ से हथेली से आप लोग जैसे भटूरे लंबे लंबे नहीं मिलाते
1: जी,
0: वैसे खूब अच्छे अच्छे करके मिला लेंगे। मिला लेंगे उसके बाद एक लंबी लोई बनाएंगे इसकी, और बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद हम एक ट्रे लेंगे, ट्रे में जो है हम घी लगा लेंगे पहले नीचे, चाहे बटर लगा देंगे। उसके बाद छोटे छोटे गोले जैसे पाव मिलते हैं ना गोल
1: जी
0: गोल
1: जी,
0: हथेलियों से चला चला करके उसमें आप जब भी यूज करेंगी तो आप जो है बटर लेंगी, ठीक है
1: जी।
0: और फैट वाला लीजिएगा, बिना फैट वाला मत लीजिएगा
1: जी मैम।
0: और वो मक्खन से गोल गोल मिला करके आप ट्रे में रख दीजिएगा। ट्रे में रखने के बाद आप जो है इसको 180 डिग्री ओवन पे डाल देंगे
1: जी,
0: और वो हल्का हल्का। अब जिसके घर ओवन नहीं है, है ना, तो वो क्या करेगा, अब छोटे बर्तन में जैसे आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कुकर है या लंबी जो भी है, उसमें आप नीचे बालू डाल दीजिए या उसको गर्म कर लीजिए, छोटे जो है डब्बे में यही घी लगा के ऊपर से ढक दीजिए बिना पानी आने के, बिना स्टीम के। थोड़ी थोड़ी देर में खोल के आप देखिए तो जैसे कुकर धीमे धीमे गर्म होगा, धीमी आंच पर, धीमी आंच पे रखिए तो ये जो बन है वो भी लाल हो जाएगा और बहुत अच्छे, जैसे बिस्किट कुकर में तैयार होते हैं, केक होते हैं, वैसे ये भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है बना के देखिए। जब आप इसको निकाल लेंगी, अब आप चाहती हैं कि भरा रहे, तो आजकल तो बच्चे भरा बहुत पसंद करते हैं।
1: जी
0: तो जब आपने गोल गोल लोई तोड़ ली, उसके बाद आप इसमें एक एक टुकड़ा चीज का काट काट के धर दीजिए और गोला बना लीजिए और ऊपर से मक्खन लगा करके आप इसको सेक लीजिए। और अगर आप कुकर में कर रही हैं तो भी ये कर सकती हैं। और अब आप क्या करेंगी, चीनी फिर एक टेबल स्पून आप पीस लीजिए खूब अच्छे से महीन।
1: जी मैम।
0: और जब आपके ये बन जो है तैयार हो जाए तब इसको हल्का हल्का चीनी में लपेट दीजिए। ठीक है, तो जब बच्चे खाएंगे तो ऊपर से खूब अच्छी चीनी लगी हुई है और अंदर चीज लगा हुआ है। चीज आपके ऊपर है, अगर आप चाहती हैं डालना तो भर लीजिए और नहीं चाहती हैं तो सादा ही बन रखिए। और ये डोनट्स देखिएगा इतने अच्छे लगते हैं और इतने हल्के बनते हैं। हमने तो देखा बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको डीप फ्राई भी करते हैं।
1: जी मैम।
0: तुम करके देखना, अगर फूट रहा है तो थोड़ा सा मैदा बढ़ा लेना और नहीं तो ऐसे ही डीप फ्राई तेज आंच में आप कर करके अलग निकाल लेंगे।
1: जी।
0: और तब आप इस पे चाहे तो छन्नी से चीनी आप इसको जो पीसी है उसको छिड़क दीजिए। इसको निकाल के थाली में रखा और ऊपर से छन्नी डाल से छान लिया तो सब पे चीनी लग जाएगी और बहुत सुंदर लगते हैं। देखिएगा आज की डिश आपके बच्चों के लायक है और बहुत ही अच्छी है और बहुत सरल है। बस इसमें है, जब आटा आपका सन जाता है 10 मिनट रख देती हैं, उसके बाद हथेलियों से खूब लंबे लंबे जैसे हम भटूरे बनाते हैं हथेलियों से वैसे ही मलिएगा। मलने के बाद आप जैसा हमने बताया है वैसा रखिए। देखिए कितने सुंदर बन डोनट्स तैयार होते हैं। कभी भी आप इससे पाव भाजी बना सकती हैं, ऊपर चीनी मत छिड़किए। कभी भी ब्रेड बटर में दे सकती हैं, कभी को मोयनीज लगा के दे सकती हैं, चाहे जैसे भी दीजिए। और देखिए आज की डिश आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी।
1: बहुत पसंद आएगी और मुझे तो बहुत पसंद आई।
0: सरल भी बहुत है।
1: बहुत सरल है मैम, मतलब इतनी जल्दी आप घर के डोनट्स खा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सोचिए वैसे होता है ना कि जब बच्चे कहते हैं मम्मी डोनट्स खाने तो मन में आता है आप बाहर से लेकर,
0: बाहर से ले।
1: लेकिन अब तो ऐसा नहीं करना है। मैम ने जैसे कि अभी बताया घर में तैयार होने वाले हैं ये डोनट्स, तो फटाफट से अपने किचन में जाइए और अपने बच्चों के लिए इसे जरूर बनाइए। थैंक यू सो मच मैम।
0: नमस्कार श्रोताओं।
1: तो चलिए लिसनर्स,
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: यस यस यस यस यस, आ गए हम लोग। और जैसे हम लोग कोई बातें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है, ठीक वैसे ही आज रेसिपीज को सुनने में टाइम इतना भाग गया कि सिर्फ और सिर्फ हम आपसे आए हैं आज टाटा बाय बाय करने के लिए। हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: बल्ली कित है?
5: ओ देश गुरु,

हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, आदाब, स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले प्रोग्राम कॉल ऑफ ट्यून गोना में। घड़ी में वक्त हो चला है 3:03 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजी मौजूद हैं आप सभी के साथ और आज का मौसम है सुहाना और मन है कुछ बढ़िया गाना बजाना। और इसी के साथ आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, यानी कि आपके फरमाइशों सिलसिला आज मोनिका स्पेशल वाले प्रोग्राम में स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि अपनी फरमाइशें भेजने के लिए आपको करना पड़ेगा डायल एक नंबर, और वो नंबर है 6393316429। आई रिपीट, 6393316429। इस पर आप अपनी फरमाइशें हमें कॉल करके फटाक से भेज दीजिए ताकि हम आपकी फरमाइशों को ट्यून कर सकें। और जिस कदर खूबसूरत मौसम आज हो रहा है ना, उस हिसाब से भाई मजा आने वाला है। आप लोग मुझे सावन के डेडिकेटेड सॉन्ग्स, मैसेजेस जो दिल आए भेज दीजिए, बस भेज ही दीजिए, इंतजार मत कीजिए क्योंकि भैया इंतजार का फल यहाँ अक्सर खराब होता है। फिलहाल के लिए क्या ख्याल है, पहली फरमाइश की तरफ चलें? अगर हाँ तो आइए चलते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ। और पहली फरमाइश किसी और की नहीं, हमारे रिजू जी की आई है और वो सुनना चाहते हैं, तो फिर आओ। और उन्होंने हमें इतना याद किया कि इस कदर हम आ ही चुके हैं। फिलहाल सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो कॉल ट्यून गोंडा विद योर आरजी नदी 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी रहेगा आज पूरे एक घंटे, तो इंतजार मत कीजिए, बस अपनी फटाक से गाने भेजते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे रिजु जी की फरमाइश पर मुस्तफा जाहिद की आवाज में तो फिर आओ। आवारापन फिल्म से आपने इस बेहद ही खूबसूरत से गाने को एंजॉय किया। और वक्त है अब हमारे चैट बॉक्स में चलने का। हमारे चैट बॉक्स में जो मौजूद हैं, सबसे पहले मैसेज जो आया है वो रिजु जी का ही आया था, उसके बाद नव्या जी का आया, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं नमस्ते, हमको भी गाना सुनाइए। बेशक हम आपको गाना सुनाएंगे, परंतु आपको करना पड़ेगा कॉल, बिकॉज ये है आपका कॉल ट्यून गोंडा और आप करेंगे कॉल 6393316429 पर। इसके अलावा थैंक्स फॉर प्लेइंग माई फेवरेट सॉन्ग, थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश की थी आपने। इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम आवास विकास, लिख रहे हैं उन्नति जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कॉलर ट्यून में आपका स्वागत है, माय सॉन्ग मुझे छोड़कर तुम कहाँ गया। जी हम आपको छोड़ के कहीं भी नहीं गए थे, बस कुछ वक्त का हमने ब्रेक लिया था और हम वापस आ गए हैं आपके अपने कॉलर ट्यून में। फिलहाल नमस्ते, कैसे हैं आप एंड गुड आफ्टरनून, आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद आया है तो सुनाओ मैडम जी, सावन का महीना पवन, ओके सावन का महीना पवन करे शोर, बिल्कुल सुनाएंगे अगर आपने कॉल कर दिया होगा तो। इसके बाद महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम राजस्थान, लिख रहे हैं नमस्ते आर्जनती मैम जी, शुभ दोपहरिया, नमस्ते टू यू शुभ दोपहरिया, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। तो भैया अपने अगले गाने की तरफ यानी कि अपनी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर उनका फेवरेट सॉन्ग मुझे छोड़कर तुम कहाँ गए। भाई हम तो कहीं भी नहीं गए, लेकिन लगता है जिसकी फरमाइश पर ये गाना है वो आपसे कहीं रूठ कर दूर गए हैं, अगर नहीं तो भी उन्हें मना लीजिए। फिलहाल एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून को ना, अपने अपने मैसेजेस अपने अपने गाने भेजते रहिए 6393316429 पे कॉल करके। और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान 89.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन।

धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश में आप एंजॉय कर रहे थे मुझे छोड़कर तुम कहाँ गए, और इतना खूबसूरत नगमा था ना, आप इसको सैड सॉन्ग में जबरदस्त गाने समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ दीपक जी जुड़ गए हैं हथियागढ़ से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आर्जुनती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कॉल ऑफ यूनगोना में। ओके, इसके बाद लिखा है अरे हमें नहीं पता, पहली बार सुन रहा हूँ। चलिए अगर आप पहली बार सुन रहे तो आपको हमने माफ़ किया, यानी कि हमने आपको माफ़ किया, लेकिन दूसरी दफ़ा ऐसा नहीं होने वाला है। आजकल आकांक्षा मैम जी कहाँ गई हैं, भैया ये सवाल हमारे दीपक जी का है, और आपको बता दिया आकांक्षा मैम अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए आगे की तरफ बढ़ी है, और हम उन्हें ऑल द बेस्ट विश करते हैं। ज़बरदस्त सैड सॉन्ग, थैंक यू सो मच, और आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ, और आप इन्जॉय कीजिए सबिया जी की फरमाइश पर, तुम्हें बारिश पसंद है और मुझे बारिश में तुम, हालांकि मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद है। एक वक्त था जब हम भी बारिश के दीवाने हुआ करते थे, बट जब से मैंने बारिश में कीचड़ देख ली है और मुझे पता है कि इस कीचड़ में भी तैर के जाना पड़ता है, तब से बारिश ना पसंद होती जा रही है। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा सॉन्ग है, नेहा कक्कर की आवाज़ में है, तो इन्जॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, अगली फरमाइश को लेकर के आपके अपने कॉलर ट्यून में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। अपनी फरमाइशों को भेजते रहिए 6393 316429 पर।

सबिया जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं, तुम्हें बारिश पसंद है, मुझे बारिश में तुम, नेहा कक्कर और रोहन प्रीत सिंह की आवाज में आपने इस खूबसूरत से सॉन्ग को एंजॉय किया। समय का लिरिक्स है और ऑफ कोर्स नवजीत जी हैं इसके डायरेक्टर। फिलहाल क्या ख्याल है, आगे बढ़ा जाए? अगर हाँ तो आगे चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो आपको 90s की याद दिलाने वाली है, इस बारिश के मौसम में, इस खूबसूरत से मौसम में आपको एक बहुत ज़बरदस्त हाई बीट फरमाइश जो आई है 90s की तरफ से। सुनील कुशवाहा जी ने हमें भेजा है गाना, तिनक तिनताना, वो धुन तो बजाना।

सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं उदित नारायण और अलका जी की आवाज में तिनक तिन ताना आमिर खान और मनीषा पर फिल्माया गया गाना मन फिल्म से, जो कि 1999 में आई थी। एंड इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं इम्तियाज अहमद जी, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं। एंड माफी चाहूंगी धर्मेंद्र मोहन जी, आपका सिंगर बदल गया तो, लेकिन कल ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोशिश करूंगी आपका वही गाना प्ले हो जो आपने भेजा है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग फिर से 90s की आवाज, 90s की याद, अलका जी की आवाज में आप इंजॉय करने जा रहे हैं करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार पर फिल्माया गया गाना मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो ना जाओगे। जानवर फिल्म से इंजॉय करते रहिए अलका जी की आवाज में। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, जो कि हमारे शिव मोहन तिवारी जी की होने वाली है, तो बने रहिएगा, सुनते रहिए क्वालिटी गुना आपकी अपनी आज होती के साथ।

अंजी और आप सुन रहे हैं मौसम की तरह, कहीं तुम भी बदल तो ना जाओगे। रेनू तिवारी जी की फरमाइश थी, बहुत ही प्यारा सा गाना था। और आपको बता दें, अलका जी और मनहर उदास की आवाज़ में आपने इस खूबसूरत नगमे को एंजॉय किया था। आनंद मिलन का म्यूज़िक था एंड जानवर फिल्म से बहुत ही प्यारा सा नगमा। हमारे साथ नाजिया अंसारी जी जुड़ गई हैं, लिख रही गुड आफ्टरनून। एंड दीपक जी लिख रहे हैं, आज उन्नती मैम जी आपने आज आकाशा के बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए मेहनत कर रही हैं, उनको बेहतर भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, मेरी तरफ से भी उनको ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप किसी दिन आपकी मुलाकात उनसे दोबारा ज़रूर होगी। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, यानी कि अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो आई है वो आई है हमारे शिव मोहन तिवारी जी की, और ये गाना आपको अपनी दादी नानी की याद दिलाने वाला है, क्योंकि ये कुछ आवाज़ ही ऐसी है। मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं धर्मकांटा फिल्म से ये गोटेदार लहंगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉलर ट्यून गोंडा विद राजनीति 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर।

हां जी, तो सिर्फ शिव मोहन तिवारी जी की फरमाइश थी, धर्मकांटा फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे मोहम्मद रफिया और आशा जी की आवाज में ये गोटेदार लहंगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा सॉन्ग था। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हमारी फरमाइश आई है वो है राम नरेश जी की, प्लस हमारे सुजीत जी की फरमाइश, सावन का महीना पवन करे शोर, क्योंकि राम नरेश जी ने हमसे कहा था कि कोई सावन के लिए स्पेशल गाना सुना दीजिए। तो आई थिंक बॉलीवुड में ऐसे खूबसूरत गाना आपको सावन का नहीं मिलने वाला है, हालांकि मिल भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो एंजॉय करते रहिए सुजीत जी और राम नरेश जी की फरमाइश पर, सावन का महीना पवन करे शोर, मुकेश जी और लता की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है। और एंजॉय करते हैं मेरे, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, अगले गाने पर और आपकी अगली डेडिकेटेड मैसेज की तरफ। फिलहाल इम्तियाज जी आपको करना पड़ेगा कॉल, एज यूजुअल आपको पता है कॉल अट्यून में कॉल करना पड़ता है बॉस।

भाई सावन को लेकर के ना, हमारे पुराने जमाने के जितने भी गाने हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, सुन के मजा आ जाता है। एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखा है दीपक जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया।

लता जी और मुकेश की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं सावन का महीना, पवन करे शोर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। सुनील दत्त नूतन पे फिल्माया गया गाना मिलन फिल्म से 1967 में यह फिल्म रिलीज की गई थी और फरमाइश थी हमारे राम नरेश जी की और सुजी जी की। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और अगला गाना और भी ज्यादा खूबसूरत, आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब, क्योंकि ये सॉन्ग है अखियों के झरोखों से। और आपको बता दें ये फरमाइश है हमारी अनु पांडे जी की, तो एंजॉय करते रहिए लता जी की आवाज़ में एक बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही उम्दा बेहतरीन सनगमा।

तारीफ के लिए। फिलहाल आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ। सुरेश कुमार जी की फरमाइश में आप एंजॉय करने जा रहे हैं रिमझिम के गीत सावन गाए मोहम्मद रफी की आवाज में और लता जी की आवाज में। सुनते रहिए ये यादें जो आपको हमेशा पुरानी यादों से जोड़ देते हैं। ये वो गाने हैं जो आपको 2026 में रहते हुए सीधे उस जमाने में लेकर जाते हैं जब मोहम्मद रफी हमारे साथ थे, हमारे बीच में थे। फिलहाल एंजॉय कीजिए, बहुत ही प्यारा सा नगमा है।

0: ऐसे बन
1: लता जी और रवि की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे रिमझिम के गीत सावन गाए, और ये फरमाइश थी हमारे सुरेश कुमार जी की। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपनी अगली फरमाइश पर, महेंद्र जी की फरमाइश एक दिल है। एंजॉय कीजिए एक रिश्ता फिल्म से कुमार सानू और अलका जी की आवाज में अक्षय कुमार करिश्मा पर फिल्माया गया गाना। एंड नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि भैया इतनी तारीफ की है तो गाना तो बनता है। तो भैया हम आपको बता दें, सुजीत जी की फरमाइश ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। श्याम नाम की पगली हमारे साथ जुड़ गई है और अभी तक बाहर बारिश हो रही थी और इन्होंने चैट बॉक्स में भी बरखा कर दी है, बारिश कर दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत करते हैं आपका हम कॉल ट्यून गुना में। नव्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई है एंड इसी के साथ आइए चलते हैं, और यहीं से मुझे लगता है कि अब अपनी स्पीड को थोड़ा तेज करना पड़ेगा क्योंकि फरमाइशों का जो कार्यक्रम है बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बट हमें सबकी फरमाइशों को कंप्लीट करके जाना है। तो फिलहाल एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं इस गाने के उस पार अगली फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

और अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए घड़ी को मद्देनजर रखते हुए आपने एंजॉय कर लिया महेंद्र जी की फरमाइश एक दिल है। और अब आरी हमारी अगली फरमाइश की। पलक जी ने हमें भेजा है एक हार्ट टचिंग सॉन्ग और गाने का नाम है ओ खुदा। तो आइए एंजॉय करते हैं। वैसे मूवी तो फ्लॉप थी लेकिन ये गाना लोगों को इतना पसंद आया है कि आज भी ये लोगों के दिलों में है। अमल मलिक का सॉन्ग है तो एंजॉय करते रहिए हीरो फिल्म से। और ऑफ कोर्स हमें आशा है कि उन्नति मैम आपसे मुलाकात होगी। जी हाँ, आपको हमसे मुलाकात अब रोज रोज होने वाली है कॉलेज गोदा में ही।

एल्बम से आप एंजॉय कर रहे थे ओ खुदा, और ऑफ कोर्स पलक जी की फरमाइश थी। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपनी अगली फरमाइश की तरफ, रमेश कुमार और उस्मान खान जी की फरमाइश, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, मिथुन पर फिल्माया गया गाना। एंजॉय करते रहिए 90s की यादें, तरोताजा करते रहिए कुमार सानू की आवाज में।

कुमार सानू की इस बेहतरीन से गाने को बीच में रुकने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन क्या करूं भाई, वक्त बहुत कम है और उस्मान खान और रमेश कुमार जी की फरमाइश थी ये, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। इसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। अगली फरमाइश हमारी समरीन जी की है और वो सुनना चाहती हैं तू है तो मैं हूँ। बेशक बहुत ही प्यारा सा गाना आपने फरमाइश कर दी है, अक्षय, सारा, वीर, तनिष्क और अर्जय सिंह की आवाज़ में। आपको बता दें इरशाद कामिल के बोल है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा यार इतना खूबसूरत क्यों है। इरशाद कामिल जब लिखते हैं ना तो वो पेन से नहीं, पेन से लिखते हैं, दर्द से लिखते हैं।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप एंजॉय करते हैं समरीन जी की फरमाइश तू है तो मैं हूँ स्काई फोर्स फिल्म से। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और हम चलेंगे अब अपने 90s के दौर में वापस से, क्योंकि हमारे मुमताज अंसारी जी ने फरमाइश की है तेरे दर्द से दिल आबाद रहा दीवाना फिल्म से। इंजॉय करते रहिए और बहुत ही कमाल का ह्यूमर रखते हैं हमारे नागेश्वर धाकड़ जी, बहुत ही कमाल के जोक्स भी क्रैक करते रहते हैं चैट बॉक्स में एंड ऑफ कोर्स

कुछ भूल गए और कुछ याद रहा। मुमताज अंसारी जी की फरमाइश थी, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, दीवाना फिल्म से आपने एंजॉय किया। और अब आ रही है हमारी सोना मौर्य जी की फरमाइश की तरफ बढ़ने का, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ाई यमुना किनारे। आइए एंजॉय करते हैं, सलमान खान का गाना है और आप एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर, किसकी होने वाली है बताते हैं। लेकिन इस गाने के उस पार है नागेश्वर जी, भैया लिख रहे हैं कि मेरा तो काम ही है आप लोगों को हंसाना। जी हाँ, आपका काम बहुत ही बेहतरीन है और आप जब भी आते हैं सच में चैट बॉक्स में माहौल बदल जाता है।

भैया इस गाने को बीच में रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा गाने की फरमाइश की थी हमारे सोनम मौर्य जी ने, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ा हूँ नदिया किनारे। और आइए चलते हैं हमारे इम्तियाज जी की फरमाइश को पूरा करते हैं और मेका बाजी की आवाज में गोविंदा पर फिल्माया गया गाना, एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

इम्तियाज जी की फरमाइश ने हमारे पूरे शो को खत्म करने का माहौल बदल दिया है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी आखिरी फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी मिसबाह जी की, साथ ही ये उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है जो हमारे साथ जुड़े तो जरूर हैं लेकिन अपनी फरमाइशें हम तक भेज नहीं पाए हैं। तो आपके लिए डेडिकेटेड सॉन्ग हमारी अधूरी कहानी। एंड नागेश्वर धागर जी ने कहा है कि इम्तियाज जी की फरमाइश में उन्हें भी शामिल कर दिया जाए, तो बेशक आप शामिल हैं। फिलहाल इंजॉय करते रहिए आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा फीडबैक में जरूर से बताइएगा आपके अपने चैट बॉक्स में। और ये फरमाइश हमारी मिसबाह जी की आई हुई थी, तो आप एंजॉय करिए। आप सभी को डेडिकेटेड हमारी अधूरी कहानी। इसी के साथ अब चाहूंगी आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी कल दोबारा से कॉलेज गोंडा में। सुनते रहिए 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो 91.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गोधूली। शाम 5 बज चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और हम आज एक बार फिर से एक ऐसी खास शख्सियत को लेकर के आए हैं जिनसे हमें बातचीत करनी है, उनके बारे में जानना है, एंड उनकी फील्ड जो है वो काफी ज्यादा काम की है। यानी हम जो बताने वाले, आप उनके कार्यक्षेत्र से खुद को रिलेट कर पाएंगे और कहेंगे वाह भाई, आज तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। जी हाँ, सो आज हमारे साथ में मौजूद है यंग और डायनेमिक पर्सनालिटी डॉक्टर श्रुति गुप्ता, जो कि MD डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं अपने इस शो में जिसका नाम है गोधूली।
2: थैंक यू सो मच
1: टू यू। एंड जैसा कि अभी हमने बताया, गोंडावासी आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर आपके कार्यक्षेत्र के बारे में कि ये जो त्वचा विशेषज्ञ होते हैं इनका काम क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि प्लीज आप बताएं आपकी पैदाइश कहाँ की है, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं, कितने सिबलिंग्स हैं, और आपकी अर्ली एजुकेशन के बारे में।
2: मेरा नाम डॉक्टर श्रुति गुप्ता है, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे अर्ली एजुकेशन 12th तक वहीं पे पढ़ी हूँ। उसके बाद प्रिपेयर करके MBBS में एडमिशन हुआ, वो मेरठ में एडमिशन हुआ। 7 साल मेरठ में ही MBBS की पढ़ाई करी पूरी। फिर आगरा से MD में फाइनली एडमिशन मिला। 3 साल MD करके अब यहाँ गोंडा में प्रैक्टिस कर रही हूँ।
1: ऑलराइट, तो ये तो आपने चूंकि डॉक्टर बनने का सफर दावा बताया, अब चलते हैं आपके एक बार वापस से फैमिली की तरफ, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं।
2: मेरे फादर डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर अजीत गुप्ता, मुरादाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं। मदर होम मेकर है, और मेरे भाई हैं सिबलिंग, वो डॉक्टर भी हैं, 1 साल बड़े हैं, और डॉक्टर प्रणव गुप्ता नाम है।
1: अच्छा, तो ये ऐसी कौन सी चक्की का आटा खाया था जी, पूरा की पूरी फैमिली डॉक्टर ही बनी, इसके बारे में बताया।
2: चक्की का तो नहीं था।
1: अच्छा, चक्की का नहीं था, मार्केट का था।
2: हाँ, मार्केट का आटा था।
1: अच्छा, वैसे ही होता है कि जिस प्रोफेशन में फादर होते हैं, वालिद होते हैं आपके, कहीं ना कहीं उसका असर होता है बच्चों पे। और कहीं ना कहीं आपने बताया कि आपके भाई भी डॉक्टर हैं और आप खुद भी चूंकि डॉक्टर हैं यहाँ गोंडा में। ये तो आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। बच्चे जो होते हैं वो शरारती होते हैं, शैतान होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। आपका बचपना कैसा रहा, मतलब थोड़ा शरारती थी आप या बहुत चुप चुप रहने वाले बच्चों में से थी, क्या थी, कैसी थी आप?
2: बचपन में मैं अपने इस टाइम के एटीट्यूड से बहुत डिफरेंट थी। तब मैं एकदम शांत हुआ करती थी। उस टाइम पे कुछ दोस्तों ने, अब बड़े होते हुए दोस्तों ने ऐसा बना दिया है कि अब बातें कर सकते हैं, पर उस टाइम बहुत शांत स्वभाव के थे।
1: ओके, यानी बड़ी शाय पर्सनालिटी की थी, लेकिन उसके बाद होता ना कि दोस्तों की संगत जो होती है बहुत कुछ सिखा देती है। तो ऐसा बनने के बाद अच्छा लगता है या लगता है कि नहीं गलत किया दोस्तों ने?
2: नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा किया दोस्तों ने, सिखा दिया बातें करनी है। बिल्कुल।
1: ऑलराइट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये एक अच्छी बात आपकी बात से निकल के आई कि आपके फ्रेंड्स बड़े अच्छे हैं, और मैं तो चाहूंगा कि भाई ऐसे फ्रेंड्स सभी को मिले जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी

0: मदद करे। अभी तो बात हो गई ये कि फ्रेंड्स कैसे थे, आप पढ़ने में कैसी थी? आप
1: पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी, कभी मतलब कम नहीं था पर बहुत ऐसे नहीं पढ़ना होता था। पेरेंट्स कभी फोर्स नहीं करते थे कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, कम क्यों आ रहे हैं नंबर, हमेशा मस्ती करते हुए ही पढ़ाई करी है।
0: अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, बच्चों को जो है वो कुछ चीजों से डर लगता है, आपको किस चीज से डर लगता था बचपन में?
1: पॉलिटिकल साइंस बहुत टफ लगती थी।
0: अच्छा,
1: बस उसी से डर लगता था और कुछ अलग से कुछ नहीं।
0: अच्छा, वैसे मैं एक चीज याद दिला दूं कि बच्चों को सुई से बड़ा डर लगता है, इंजेक्शन से, और फादर भी आपके डॉक्टर रहे हैं, तो कभी फादर ने ऐसा डराने के लिए नहीं कहा कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो इंजेक्शन लगा देंगे?
1: कभी नहीं, मेरे पेरेंट्स का एक ही नियम है, कभी डराना नहीं है बच्चों को।
0: ओके, वाओ, वेरी
1: नाइस। आज भी वही नियम है, कभी डराना नहीं है कि सुई लगा देंगे या पुलिस आ जाएगी।
0: मतलब कह सकते हैं कि फादर से आपकी जो बॉन्डिंग है वो एक फ्रेंड वाली है, उन्होंने मतलब इस तरह से आप लोग को फ्री कर रखा है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और शायद अपनी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है उसको भी आप शेयर करते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग है। वेरी
1: नाइस, बहुत अच्छी बॉन्डिंग।
0: मदर से कैसा आपका रिलेशन है आज?
1: मदर तो एकदम फ्रेंड जैसे ही रहती हैं।
0: ओके।
1: उनसे कोई बात नहीं बताई, कोई प्रॉब्लम नहीं बताई तो दिन पूरा नहीं होता है।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ी एक अच्छा एग्जांपल सामने आया आपका कि दिन की जो भी बातें होती है कहीं ना कहीं आप शेयर करते होंगे। एंड जाहिर सी बात है आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं, वहाँ हर तरह से पेशेंट्स आते हैं, कभी दिन बहुत अच्छा भी जाता होगा, कभी बड़ा हैक्टिक जाता होगा, तो कहीं ना कहीं आप शेयरिंग करते होंगे अपने मदर से, अपने फादर से करते होंगे।
1: हर इंसिडेंट उनको पता होता है।
0: अच्छा, उनको ये भी पता होता है क्या कि सुबह आज नाश्ते में क्या खाया?
1: बिल्कुल।
0: वेरी नाइस, वेरी
1: उनसे पूछ के ही मनाना होता है कभी कभी।
0: अच्छा, उनसे पूछ के। मुझे अपना वो दिन याद आ गया, वो दिन बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले की है। पहली बार लाइफ में खिचड़ी बनाया था, बड़ी सिस्टर को वीडियो कॉल पे लेकर के बाकायदा कि हम क्वांटिटी दिखा सके कि देखो ये हम इतना डाल रहे हैं। एंड यकीन मानी कि बड़ी लाजवाब बनी थी। एंड दूसरी बार जब बनाया कि हम लोग शायद जान गए हैं, कॉन्फिडेंट थे, वो खाने लायक नहीं थी। तो ये खैर होता है, ये सब चीजें चलती रहती है, लाइफ का पार्ट है। मैं ये जानना चाहूंगा कि हर किसी का अपना एक एम्बिशन होता है। सो बचपन में एम्बिशन की अगर हम बात करें, आप और अगर हम अपनी बात करें, जो 90s के बच्चे हैं उनका ज्यादा बहुत ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट या पायलट एक नाम था, तो ये तीन चार चीजों में चूज करते थे। आपका ऐसा तो नहीं कि कोई और सपना था और उसके बाद आज आप कहीं और हैं?
1: नहीं, सपना हमेशा फादर को देखा, क्योंकि पता ही नहीं था कि कुछ और भी कर सकते हैं। मन में सिर्फ यही था कि डॉक्टर बनना है, कभी पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं, जबकि बड़े होके तो बल्कि पेरेंट्स मना करते थे कि कुछ और कर लो।
0: अच्छा,
1: डॉक्टर में बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत साल, बट क्योंकि बनना था, बचपन से सोच रखा था तो डॉक्टर ही बनना था।
0: तो कह सकते हैं कि पापा की जो प्रोफेशन की छवि थी वो आप पे पड़ चुकी थी और कहीं ना कहीं आपका कोई डाउट नहीं था, मुझे बनना है तो डॉक्टर ही बनना है।
1: बिल्कुल।
0: सो आप ये त्वचा रोग विशेषज्ञ जो, इसमें कैसे आपका आना हुआ?
1: त्वचा रोग विशेषज्ञ एक्चुअली रैंक इस टाइम पे बहुत अफेक्ट करती है आपकी ब्रांच। जब रैंक आपकी चॉइस की आ जाती है उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, तो पढ़ाई करके रैंक तो आ गई तो ऑप्शंस खुल गए। मेडिसिन ले सकते थे उस टाइम पे, बट क्योंकि थोड़ा आजकल ऑप्शंस में वो त्वचा रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं।
0: अच्छा, ऊपर होते हैं।
1: हाँ, बहुत कम लोगों को मिलते हैं सीट्स, डॉक्टर्स बहुत कम है त्वचा रोग के,
0: लिमिटेड सीट्स,
1: बहुत कम लोग।
0: ओके।
1: और आजकल लोग कॉन्शियस भी हो गए हैं बहुत ज्यादा, समझने लगे हैं इस चीज को कि कुछ दिक्कत है हमें इससे रिलेटेड भी, तो वो डॉक्टर का ओपिनियन सीक भी करते हैं स्किन के लिए, पहले इतना नहीं हुआ करता था।
0: right.
1: तो अब थोड़ा सा इस तरफ इंक्लिनेशन हो गया।
0: ऑलराइट, तो मतलब आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो एक ब्रांच है इग्नोर होती है, मतलब पहले तो लोग ऐसे चल जाता था कि जैसा भी है अपने आप, आपने होम रेमेडी को इस्तेमाल किया, घर की कोई चीज सही कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं, एक बीमारी है। और देखा गया है कि लोग अपनी त्वचा के प्रति, मतलब खुद के लुक्स के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और सिर्फ महिलाएं नहीं, अभी तक तो समाज में था कि सिर्फ महिलाओं के दो दाने निकल जाते तो परेशान। मैंने अपने कई फ्रेंड्स को देखा है, वो दो दाने निकलते हैं तो सुबह से शाम तक उनको सिर्फ दो दानों की इर्द गिर्द ही बात करनी होती है। तो इसके लिए आप जैसे लोग होते हैं विशेषज्ञ जो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी चूंकि आपने काम करना

0: आर्ट की है। आपकी पहली पोस्टिंग ये गोंडा में ही हुई या कहीं और हुई थी?
1: नहीं, पहली पोस्टिंग गोंडा में हुई है। एमडी के बाद में हमें 2 साल सरकारी सेवा देने होती है, जो 2 साल बॉन्डेड होते हैं हम। तो उसमें हम लोग को जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं ये सब, वहाँ पे पोस्टिंग दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहली पोस्टिंग मेरी गोंडा में मिली है मुझे।
0: ऑलराइट, तो भाई गोंडा पे भी आएंगे, लेकिन गोंडा से पहले भी एक और सफर जो आपने तय किया है एमबीबीएस का, उस पे आते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब अपने शहर से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ का माहौल बहुत अलग होता है। वो घर वाला कंफर्ट नहीं मिल पाता है, ना सोना उठना होता है, ना खाने पीने में होता है, ना लोग आपके पास मम्मी और पापा वाले होते हैं कि आपके नखरों को उठा लेंगे, या जैसा आप कहीं बीमार हो गए हैं तो फौरन उस चीज को लेकर के ट्रीटमेंट, तो काफी अलग होता है। एज फीमेल तो थोड़ा सा मुश्किलें भी आती हैं। आपका कितना चैलेंजिंग रहा उस दौरान, जब आप एमबीबीएस में आपने एडमिशन ले लिया और वहाँ पे आप पढ़ाई कर रही थी, कैसा कुछ रहा?
1: एमबीबीएस मेरे घर के पास था बहुत, एक्चुअली मेरठ मुरादाबाद से बहुत 100 किलोमीटर की रेंज में था।
0: ओके,
1: तो कभी ऐसे घर की कमी महसूस नहीं हुई।
0: Alright.
1: कभी कुछ दिक्कत हुई तो तुरंत घर चले जाते थे।
0: ओके,
1: और 7 साल बहुत बहुत लंबा टाइम होता है एक्चुअली
0: एमबीबीएस
1: वाला। हाँ, तो प्रिपरेशन एमबीबीएस से पहले भी प्रिपरेशन किया, तब थोड़ा सा प्रिपेयर हो गए कि अब इतने साल बाहर रहना है। फिर एमबीबीएस में तो दोस्त बन जाते हैं जब, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है।
0: ओके, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा कि जब दोस्त बन जाते हैं तो लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। एक और बात, चूंकि आप जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में आप अच्छे होंगे, आपने क्रैक किया, आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिला, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से चेंजेस थे जब आपके एडमिशन के बाद, ड्यूरिंग एमबीबीएस जब आप कर रहे थे, उस दौरान आपके अंदर आए।
1: एमबीबीएस के टाइम एक्चुअली हम लोग 12th तक इतना एक्सपोजर नहीं होता, हमारे को सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। तो उस टाइम तक हम लोग बहुत शांत अपने काम से, मतलब सिर्फ पढ़ाई करनी है, खेलना कूदना है, घूमना है, ठीक है, दोस्तों तक मतलब रहता है। आप किसी स्ट्रेंजर से बात करना नहीं सीख पाते हो। जब आप एमबीबीएस कर रही थी मैं, तो क्योंकि हम लोग को पेशेंट से भी डील करना होता था, क्लिनिक्स होते थे, उसमें हम लोग को समझ में आया एक्चुअली में कितना, मतलब लोग कितना परेशान है, इनसे बात कैसे करनी है, जो एक्चुअली पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स से बात करना हम लोग एमबीबीएस में सीखते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझना, उनसे किस तरीके से बात करनी, कितनी बात करनी है,
0: यानी पब्लिक डीलिंग।
1: जी, पब्लिक डीलिंग।
0: ओके,
1: वो हम लोगों ने एमबीबीएस में सीखी है।
0: और मुझे लगता है ये सबसे जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि पढ़ाई जब आप कर रहे होते हैं तो आपका सिर्फ जो सामना होता है, या तो अपने कलीग्स जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, या फिर प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स आपके होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपका रियल एक्सपीरियंस होता है, वो जब डीलिंग आप करते हैं पब्लिक को, पेशेंट्स को जब आप डील करते हैं, वहां पे होता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी के लिए जब आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं आपको लेकर के, और कुछ ऐसे होते हैं कि भड़क भी जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को या आपके चैलेंजेस को नहीं समझ पाते, वो शायद सिर्फ अपनी बात आगे रखते हैं। सो ऑफकोर्स ये पब्लिक डीलिंग समझना इस प्रोफेशन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने किया होगा, वहां पे देखे होंगे केसेस, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। देखिए, जिस भी आप ब्रांच में जाइए, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सीडेंटल केसेस आते हैं जिसमें आपको ट्रीट करना ही करना होता है। उस दौरान क्या वो डर लगा था, क्या लगा कि नहीं यार गलत आ गए, डॉक्टर गलत बन गए, कुछ और बन सकते थे, या कैसा क्या था इसके बारे में?
1: डॉक्टर बन के हमेशा सिर्फ एक सैटिस्फेक्शन वाली फीलिंग थी कि पेशेंट्स की आप हेल्प कर सकते हो। कोई और प्रोफेशन कभी इस तरीके का सैटिस्फेक्शन नहीं गेन कर सकता कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उनको ठीक कर रहे हो। आजकल समाज में तो ये डिफरेंस आ गया है वैसे, कि पेशेंट्स भी अब इतना नहीं समझते। पहले डॉक्टर्स को इतना भगवान कंसिडर किया जाता था कि ये तो भगवान मिल गए। अभी बोलते हैं बहुत लोग कि हमें तो भगवान मिल गए, बट ठीक है, इंसान ही समझे, बट अच्छा लगता है।
0: बट आपकी भी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी समझे। ऑफ कोर्स डॉक्टर भी एक इंसान होते हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन इतना आसान नहीं होता। और जो आपने एक बात कही सेटिस्फेक्शन की, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो शायद ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका कोई टाइमिंग नहीं होता है। बाकी जगह वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए बिल्कुल नहीं पता होता है कि कब केसेस आ जाएंगे, कब आपको उठ के भागना पड़ेगा, या आपको कितना टाइम लग जाएगा, कितने बुरे केसेस आपको देखने होंगे। अच्छा, इस तरह से केसेस देखते हैं, इतना ज्यादा पब्लिक को डील कर

0: इतने ज्यादा लोगों से आप मिलते हैं, एट द एंड आप भी एग्जॉस्ट हो जाते होंगे। खुद को कूल करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या चीजें आप करते हैं?
1: खुद को रिलैक्स करने के लिए दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं, घर वाले हैं, बात करो, कूल डाउन हो जाता है खुद। वैसे मेरी जो ब्रांच है एक्चुअली स्किन में इतना कभी हाइपर होते ही नहीं, हम सब रिलैक्स रहता है सब कुछ।
0: अच्छा, बहुत रिलैक्स रहता है। लेकिन अभी आपने फ्रेंड्स की बात की, आपके फ्रेंड्स तो बाहर होंगे ना, आप तो गोंडा में है अभी, कैसे मतलब?
1: आजकल सोशल मीडिया है, फोन है, सबसे इजी।
0: अच्छा, जेंजी वाली आपने जो वेपन है वो आपने भी अपना लिया, जैसा हम सभी लोगों ने अपना लिया। बेशक बेशक। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में जुड़े रहना, फ्रेंड्स के साथ में जुड़े रहना, यही आपको थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह जाते हैं और बहुत सारी चीजें आपके साथ दिन भर में होती रहती हैं, जो अगर आप शायद खुद अकेले ही सिर्फ सोचा करेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। तो उसको शेयर करना या उन चीजों पर डिस्कस करना,
1: ओपिनियंस लेना, कहां हमने कुछ गलती कर दी, वो लोग भी बताते हैं कि थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, नहीं ऐसा दूसरे का भी कुछ ओपिनियन हो सकता है।
0: एग्जैक्टली। वैसे क्या हम जाना चाहेंगे, डॉक्टर साहिबा को गुस्सा बहुत आता है क्या? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है स्माइल देख के। ऑलराइट। सो खैर, ये पेशा ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की आपको खुद भी जरूरत होती है, क्योंकि हर तरह के लोग आपको डील करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही है, त्वचा विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही है, और साथ ही साथ अभी हमारे एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार वापस आने वाले हैं और त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो हम अपनी जनरल लाइफ में फेस करते हैं, उसको लेकर के बातचीत करने वाले हैं। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए अपना इवनिंग वाला शो गोधली अपने फेवरेट आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान आपके अपने प्रोग्राम गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था कि आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। जाने से पहले हमने जानने की ये कोशिश की थी कि भाई ये त्वचा रोग विशेषज्ञ का काम क्या होता है। त्वचा से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आती होंगी, सो प्लीज बताएं कि आपके अंडर में किन किन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किन प्रॉब्लम्स को आप क्योर करते हैं।
4: क्या तो हमारे अंडर सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन की, वो है दाद।
3: दाद
4: जो हर किसी को, हर एज ग्रुप में, फीमेल्स मेल्स सब में मिल जाता है
3: जी।
4: और स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा लेयरिंग होती है, बहुत ज्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं, कवर करना पड़ता है, तो उनमें ज्यादा मिल जाता है। और क्या बीमारी होती है, आजकल गर्मियां बहुत हैं, गर्मियों में पसीने की वजह से दाद भी बढ़ता है। घमोरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं आजकल, घमोरी की वजह से दाने आना शरीर पे, प्लस धूप इतनी ज्यादा है, तो धूप की वजह से हमारे शरीर में हम एक रिएक्शंस बोलते हैं, जो लाइट रिएक्शंस हो जाते हैं,
3: okay.
4: वो बहुत कॉमन हो गए हैं। और चीजें होती हैं जो हमारे अंडर हम लोग देखते हैं, वो होता है खाज, कि एक दूसरे से फैलने वाली खुजली हो जाना।
3: खाज, बिल्कुल।
4: और हाँ, शरीर पे मोटे मोटे चट्टे हो जाना, जिसमें खाल मोटी मोटी पपड़ी के फॉर्म में निकलने लगती है। कील मुहासे यूथ में स्पेशली बहुत ज्यादा कॉमन है, कि एक्ने होने लग गया है।
3: टीनेजर्स में बहुत देखा जाता है, राइट?
4: तो ये सब कॉमन डिजीज।
3: हेयर फॉल भी आता है।
4: हेयर फॉल भी आता है।
3: अरे वाह, फिर तो मतलब जो मेल्स होते होंगे वो परेशान कर देते होंगे, मैडम ये हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है।
4: बहुत ज्यादा, स्पेशली जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशियाज हैं, जो जेनेटिक फॉर्म में आते हैं, पैटर्न्ड एलोपेशिया होते हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो वाले पेशेंट्स। दूसरा, एनवायरमेंटल कॉजेज बहुत हो गए हैं आजकल हेयर फॉल के, पानी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, या फिर जो जितना भी हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं हमारे खाने में, जो हमारी बॉडी में जा रहा है, उस सब की वजह से हमारे को बहुत जल्दी यूथ में 15-16 साल के बच्चों में ग्रे हेयर हो जाना, हेयर फॉल होना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। वो सब पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हमारे खाने में है, उन सब की वजह से ज्यादा हो गया है अब।
3: हाँ, एक चीज मैंने अभी बहुत गौर की है कि अभी यंगस्टर्स हैं, इवन मेरी एज से काफी छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, उनके भी हेयर व्हाइट हो रहे हैं। तो इसके पीछे भी क्या, जो आप ये बता रहे कॉजेज, यही वजह है?
4: बिल्कुल।

0: जैसे भी हम केमिकल्स पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल खाने में जो सब्जियां वगैरह हम खाते हैं उन सब में भी इतने केमिकल्स हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जंक फूड मत खाओ सिर्फ, क्योंकि हमारे जो कॉमनली ईटन वेजिटेबल्स हैं, मतलब सबसे कॉमन
1: हेल्दी बोलते हैं,
0: हेल्दी बोलते हैं लौकी तोरई टाइप की सब्जियां,
1: राइट,
0: उन सब में भी इतने केमिकल्स हैं। तो वो सब एक्सपोजर जब इतना ज्यादा होगा तो बच्चों तक में इतने ग्रे हेयर हो रहे हैं,
1: तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स नजर आती है। अच्छा, अभी आपने सबसे पहले जो नाम लिया था वो लिया था दाद का। ये दाद किस वजह से होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है?
0: दाद हमारे एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शन है।
1: ओके।
0: तो फंगल इन्फेक्शंस, फंगस हमेशा वहां ग्रो करती है जहां पे डैम्प होता है, जहां पे गीला रहता है शरीर।
1: ओके।
0: तो वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहां पे हमारे को पसीना ज्यादा आएगा, ग्रोइन में होगा या फिर आर्मपिट्स में होगा। बाकी फंगस एक्चुअली सब जगह ग्रो कर सकती है, एक बार अगर स्टार्ट हो गया वो सब जगह फैल सकता है, सर से लेके पैर के उंगली तक।
1: ओके। मतलब इतना डेंजरस भी होता है,
0: बहुत ज्यादा।
1: ओके, तो आपने कहा कि फंगल इन्फेक्शन होता है और स्पेशली वहां ज्यादा ग्रो करते हैं जहां नमी होती है, जहां गीलापन होता है। ऑलराइट। इसके अलावा जैसे आपने बताया था कि ये एक्ने होता है, कील मुहासे आते हैं, सो टीनेजर्स में तो होता ही होता है। मान लीजिए कोई और है जो 30 प्लस है, 40 प्लस है, उसको अगर हो रहा है तो ये क्या ये भी कॉमन है या कोई बीमारी है?
0: नहीं, ये भी कॉमन है। आजकल स्पेशली फीमेल्स जो गोरा दिखने के लिए बहुत सारे जो OTC मतलब क्रीम्स अवेलेबल होती हैं।
1: ओके।
0: हाँ, वो सब बहुत ज्यादा लगाते हैं क्योंकि गोरा होना है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में कील मुहासे होना बहुत कॉमन हो गया है। कमर्शियली अवेलेबल, क्योंकि हमारे समाज में इतना गोरा होने की इतनी ज्यादा होड़ है। कोई हल्का सा भी नॉर्मल डस्की कॉम्प्लेक्शन भी होता है उसको बहुत परेशान किया जाता है, तो वो परेशानी के चक्कर में क्रीम लगा लगा के गोरा होना चाहते हैं, जिनमें स्टेरॉइड होता है।
1: Okay.
0: उस स्टेरॉइड की वजह से बहुत दाने आते हैं। हॉर्मोन्स जब किसी के ऊपर नीचे हो रहे हो फीमेल्स में, उन लोगों में बहुत सारे दाने आते हैं, स्पेशली लोअर फेस पे। तो एडल्ट्स पॉपुलेशन में भी अबव 30 एक्ने हो सकता है।
1: ओके। उनमें भी ये एक्ने हो सकता है। ऑलराइट। एंड हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस होड़ में कि शायद रंग साफ हो, केमिकल्स हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो नेचुरल तरीका नहीं होता है गोरा करने का, जबकि ये जो प्रोसेस है ये पिगमेंटेशन का है। बट अगर हम फोर्सली बाहर से करते हैं तो उसका हमें ये इस तरह से परिणाम जो है वो भुगतना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी को त्वचा संबंधी कोई बीमारी हो रही है, कोई रोग हो रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? कोई लक्षण होते हैं कि हम उसको जान पाए कि हमें कोई स्किन रोग हो रहा है?
0: सबसे कॉमन लक्षण तो यही है कि हमारे को खुजली होने लगती है,
1: स्किन
0: जरा सा भी ड्राई होगी या कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला सिम्टम खुजली होती है, उसकी वजह से हम जान सकते हैं। नहीं तो कुछ स्किन पे ड्राइनेस की वजह से कुछ वाइट चट्टे हो जाना, कुछ निशान पड़ जाना, उसकी वजह से हम सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो।
1: ओके। तो ये तो देखिए ऐसी कई बीमारी हैं जो कॉमनली हम लोग भी जानते हैं कि दाद, खाज, खुजली, ये सब है जिसका ट्रीटमेंट किया जाए तो हो जाता है। लेकिन हम जानना ये भी चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी भी बीमारी होती है जो बड़ी बीमारी कहलाती है त्वचा के लिए? तो अगर है तो वो कौन सी बीमारी और क्या होता है उसमें?
0: बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं, इनमें हम लोग सोराइसिस होता है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जो एक्चुअली में स्किन के साथ में अंदरूनी ऑर्गन्स जितनी भी होती हैं उन सब को भी इन्वॉल्व करता है। तो उसमें मेडिसिन, रूमेटोलॉजी और स्किन एक साथ तीनों डिसिप्लिनरी अप्रोच का हमें तीनों डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है, मतलब सबका ओपिनियन लेना पड़ता है। और भी बीमारियां हैं जिसमें आजकल स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं,
1: राइट,
0: सन एक्सपोजर की वजह से। हम जब क्यूमुलेटिव सन एक्सपोजर जिनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब बहुत टाइम तक धूप में रहते हैं, आजकल बेसल सेल कार्सिनोमा हम बोलते हैं, BCC होता है, जो धूप की वजह से ओल्ड एज में बहुत ज्यादा होने लगा है। लोगों को पता ही नहीं है कि मुंह पे इतने बड़े बड़े छाले और निशान हो रहे हैं, वो कैंसर है।
1: ओके, मतलब उनको ये अंदाजा भी नहीं होता है कि उनको कैंसर हो रहा है।
0: जी।
1: अच्छा, तो किस तरह के निशान होते हैं? कोई स्पेसिफिक शेप में होते हैं? क्या क्या होता है उसमें?
0: शेप नहीं होता, उसे हम बोलते भी रोडेंट अल्सर है, जो ऐसा लगता है कि चूहे ने पूरा चेहरा को खा लिया।
1: ओ,
0: पूरा छाला हो जाना, गड्ढा पड़ जाना चेहरे पर, इस पे आँख के और नाक के पास में यहाँ पे बड़े बड़े निशान होना, गड्ढे हो जाना, बीडेड सी बॉर्डर होती है उसकी जो उठी उठी सी लगती है, ऐसा लगता है उसके अंदर पूरा किसी चूहे ने खा लिया हो, उस तरीके के निशान हो जाना, वो कैंसर होता है। और वो उन्हीं एरियाज में क्योंकि ज्यादा होता है जहाँ पे सन एक्सपोजर ज्यादा, धूप ज्यादा पड़ रही है।
1: अच्छा, एक कॉज तो आपने बताया कि धूप यानी सूरज की रोशनी जहाँ ज्यादा पड़ती है, और भी कोई कॉजेज होता है स्किन कैंसर होने के पीछे?
0: वो सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, और भी कुछ केमिकल्स की वजह से भी होता है, जो हम लोग बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं, ब्लीचेस वगैरह लगाते हैं, जो बहुत लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से अंदर हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है, उस सब की वजह से भी कैंसर हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन स्पेशली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसकी वजह से कैंसर हो सकते हैं, जो बहुत टाइम तक हमारे वॉर्ड्स किसी के बॉडी में रह रहा है उन सब की वजह से कैंसर हो सकते हैं, वो कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है।
1: जी, एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम हमने जो सुना है मेलानोमा, ये कौन सी बीमारी होती है, इसमें क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या संभव है या नहीं है?
0: मेलानोमा इंडिया में अभी इतना नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे बहुत फेयर लोग होते हैं, जो जैसे कॉकेशियंस हैं, जैसे यूके यूएस के लोग हैं, उन लोगों में ज़्यादा होता है, उसमें भी सन एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा होता है, और मोस्टली हमारे नेल बेड्स में इन्फेक्ट मतलब कैंसर डेवलप होता है, वो नेल बेड्स का कैंसर होता है, कभी कभी पूरी बॉडी में फैल सकता है। एक सिंगर हुआ करते थे बॉब मार्ले, उनकी डेथ मेलानोमा से हुई थी, जो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया था।
1: ओके।
0: पर इंडिया में अभी ये इतना ज्यादा सोर्स ऑफ वरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में मेलानोमास इतने नहीं होते हैं।
1: ओके, तो आपने बताया कि मेलानोमा के जो केसेस हैं वो इंडिया में इतने नहीं है, कहने का सेंस ये कहीं ना कहीं फिर हम ये मान सकते हैं कि एरिया स्पेसिफिक बड़ी प्रॉब्लम डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप रहते कहाँ है, किस रीजन में है, किस जगह है, सनलाइट वहाँ पे कैसे आती है, कैसे है,
0: वहाँ का क्लाइमेट का कलर क्या है,
1: स्किन का कलर क्या है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि गोरे लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, एक तो हाईलाइट भी हो जाती है, दूसरी बात है प्रॉब्लम्स भी होती है, ऐसा क्या होता है, इसके पीछे क्या?
0: हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग डार्क हैं,
1: डार्क है,
0: हाँ, डस्की हैं। जो लोग बहुत गोरे होते हैं, बहुत फेयर होते हैं, उन लोगों में मेलानिन नहीं होता है। मेलानिन हमारा स्किन का सबसे सेव करने वाली चीज है, मतलब स्किन में मेलानोसाइट्स जो होती हैं वो हमारे सेवियर की तरह समझिए आप।
1: ओके।
0: वो मेलानिन क्रिएट करेंगे जो हमारे को सन एक्सपोजर से बचाएगी। टैनिंग भी हम उसी को कहते हैं, जहाँ पे धूप ज्यादा पड़ रही है वहाँ मेलानिन इंक्रीज हो रहा है, वहाँ बॉडी हमारे को बचा रही है कि हम जल ना जाएं।
1: ओके।
0: कॉकेशियंस में मेलानिन नहीं बन पाता, वहाँ पे स्किन इतनी लाइट होती है, मेलानोसाइट्स इतना कम होते हैं कि वो धूप से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उन लोगों में धूप की दिक्कतें ज्यादा होती हैं, सनबर्न होना, मेलानोमास, कैंसर्स, ये सब उन लोगों में ज्यादा होते हैं।
1: ओके, तो मतलब जो परेशान होते हैं कि लोग हमें टैनिंग हो गई है, तो ऑफ कोर्स हम ऐसे रीजन से हैं, ऐसे प्लेस से हैं जहां पे हमारे लिए मेलानिन बहुत वर्क करता है।
0: जी।
1: ओके, ये तो बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, मेरे ख्याल से अभी तक कई लोग इससे अनजान रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये कि जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये इनके पीछे क्या रीजन होता है, ये फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है?
0: फंगल इन्फेक्शन मैंने जैसे बताया बहुत डैम्प कंडीशंस में होता है, कि नमी हो शरीर में, हम लोग गर्मियों में हम लोग ध्यान नहीं देते, गीला हो गया कपड़ा उसी को पहने हैं कि सूख जाएगा, उसका वेट करने में गीला शरीर पर रहेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, ऊपर से एक दूसरे से फैलते भी हैं, दाद है कि आपने हाथ मिलाया एक दूसरे से फैलेगा।
1: ओके।
0: इसीलिए जब हम देखते हैं, हमारे पास जब पेशेंट आता है, एक परिवार में 5 लोगों को एक साथ दाद हो गया।
1: बिल्कुल।
0: वो क्यों हुआ? क्योंकि उन सबके कपड़े एक साथ धुल रहे हैं। फंगस एक दूसरे से कपड़ों में जा रही है, एक दूसरे से फैलेगी, इस वजह से भी फैलता है।
1: अच्छा, ये कह सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये बरसात के सीजन में ज्यादा होता है क्या?
0: क्योंकि पसीने के साथ में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जब होगी,
1: राइट,
0: तो कपड़ा सूख नहीं पाएगा, हम गीला कपड़ा पहने रहेंगे। हम लोग इसीलिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप जब कपड़े पहन भी रहे हैं, वो आप हर कपड़े को प्रेस करके पहनिए।
1: ओके।
0: इवन आपके जितने अंडर गार्मेंट्स वगैरह हैं, वो भी आप प्रेस करके पहनिए, तो जितना फंगस होगा वो खत्म हो जाएगा।

0: गर्माई से, सूखने से, गर्माई
1: ड्राइनेस से वो खत्म हो जाएगा। अच्छा तो ये क्या कॉमन मैन को भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने बताया पेशेंट्स के लिए, बट हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, स्पेशली बरसात का सीजन आने वाला है तो उसमें किस तरह की चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए?
0: अब बरसात आ रही है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कपड़े अच्छे से सूख के पहने, जितना सूखे हुए कपड़े होंगे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। पैरों में शूज जो होते हैं फुल कवर करे हुए पहनते हैं हम लोग, जिसकी वजह से पैर गीला रहता है, उंगलियों के बीच के स्पेस में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बारिश में।
1: बेशक
0: हाँ, तो जितना हो सके हमें खुले टाइप के स्लीपर्स पहनने होते हैं। खुले स्लीपर्स पहनेंगे तो पैरों को ड्राई होने का चांस ज्यादा लगेगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा।
1: ओके, मतलब कोशिश ये करनी कि खुले में ज्यादातर रहे और कपड़े ऐसे पहने जिससे हवा आती जाती है और नमी ना बनने दें।
0: बिल्कुल,
1: एक बार में अगर कहा जाए। बेशक ये तो बात बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने कहा था कि भाई खाने पीने से भी बड़ा असर पड़ता है, सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ना खाया जाए अगर कोई भी आपकी स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, या जनरली अवॉइड किया जाए ऐसी चीजों को जिससे किस तरह की चीजें होती हैं, इसको लेके बताएं।
0: सबसे बड़ी चीज शुगर। शुगर अगर हम अपनी डाइट से कट करें तो आधे से ज्यादा इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में वैसे ही कम हो जाता है।
1: ओके,
0: एक्ने भी, जैसे यूथ में हम बोलते हैं वो लोग इतना जंक खाते हैं, इतना शुगर खाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने और डबल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो हमें शुगर कट करना है। जंक, मैदा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सब से भी हमारी बॉडी का शुगर बढ़ता है, वो भी कम कर सकते हैं। और तीसरी चीज होती है डेयरी प्रोडक्ट्स, तभी दूध, मलाई,
1: मक्खन है, मलाई है,
0: जितना कम कर सकें। घी, क्लैरिफाइड बटर होता है क्योंकि, है ना, वो मतलब उसको अच्छे से बहुत ज्यादा पकाया हुआ होता है। घी से इतना डिफरेंस नहीं आता जितना एक्चुअल डेयरी से आता है, जो फुल फैट टाइप का दूध होगा या मलाई होगा, वो सब
1: उसको अगर मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस इस्तेमाल किया जाएगा तो खतरा बढ़ जाता है, मतलब उसको बस नॉर्मली इस्तेमाल करें। और राइट, तो भाई ये तो बहुत हमने जाना कि आखिर डाइट में किस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विटामिन भी बड़ा अहम रोल अदा करता है, उस बात पे भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि गर्मी के सीजन में अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखा जाए, सर्दियां जब आती हैं तब क्या किया जाए, बारिश का जो सीजन होता है मॉनसून का सीजन, उस दौरान अपनी त्वचा की देखभाल कैसे की जाए, ये सारी बातें जानेंगे लेकिन ब्रेक के उस पार। सो बातें होने वाली है बहुत जरूरी, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन।

0: चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। 88403395 84। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में आज मौजूद है डॉक्टर श्रुति गुप्ता, जो कि MD डर्मेटोलॉजिस्ट है डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि अभी हमने जाने से पहले कहा था कि आने के बाद हम बातचीत करने वाले हैं आपसे कि ये विटामिन कितना ज्यादा रोल अदा करता है त्वचा के लिए, क्या किसी विटामिन की कमी से भी होता है ये त्वचा रोग संबंधी जो भी बीमारियां हैं।
1: विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दिखाई नहीं देते इसलिए हम इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्पेशली विटामिन ADE, ये तीनों हमारी स्किन का बैरियर, स्किन में कैसे स्किन हमारी रिप्लेनिश होगी उस सब को बहुत अफेक्ट करता है। विटामिन ए हमारी स्किन को रिजुविनेशन कराने में बहुत हेल्प करता है। डी और ई, ये दोनों भी हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिवर में स्टोर होते हैं, बट ये हमारी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत काम आते हैं। ये हो गई फैट सोल्यूबल विटामिन की बात। दूसरी चीज होते हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जिनमें होते हैं विटामिन बी और सी। बी बहुत सारी बीमारियां जिसमें विटामिन बी की कमी हो जाए, उन सब बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पिलाग्रा होता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में बहुत सारे रैशेज हो जाना, स्पेशली सन एक्सपोज स्किन पे, वो हो सकता है। और विटामिन सी तो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे स्किन को पिगमेंटेशन से बचाता है। तो विटामिन सी लेने वाले जितने भी लोग होते हैं, उन सबकी स्किन ज्यादा ग्लो करती है। आजकल हम देख रहे हैं विटामिन सी के सीरम्स भी आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो पिगमेंटेशन रिड्यूस कराने में हेल्प करता है। तो जो हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं उसको भूल के लोग ज्यादा आर्टिफिशियल यूज करते हैं, बट जितना भी हम नींबू पानी पी सकते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स जितने भी, ऑरेंजेस खा सकते हैं,
0: खट्टे फल यानी कह सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड जैसा कि हमने कोरोना में भी सुना था कि भाई विटामिन सी का इस्तेमाल, क्योंकि इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं बूस्ट करने का काम विटामिन सी करता है, तो आपने कहा कि विटामिन जो है वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो यानी हमको ऐसे फूड आइटम्स लेने चाहिए जिसमें प्रॉपर वे में हमको मिल जाए विटामिन्स। चलिए, तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। अब एक बहुत बड़ी समस्या जिसको हमने बहुत पहले आपसे कहा था, उस पर वापस से आते हैं। हेयर फॉल, ये बालों की झड़ने की समस्या हालांकि मर्दों में ज्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो स्टाइल हम दिखाते हैं वो सिर्फ बालों से पहले दिखाते हैं। अक्सर देखो टीनएजर्स जो होते हैं वो बच्चे अपने बालों को झड़ा करते हैं, हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, मर्दों में बहुत कुछ तो होता नहीं दिखाने के लिए, तो वो हेयर स्टाइल बहुत जरूरी होता है। सो ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ये क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं, और इसको इसके लिए उपचार कौन कौन से हैं?
1: ठीक है, स्पेशली मेल्स में जब हम देखते हैं तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। दूसरी चीज होती है टेलोजन एफ्लूवियम, जो सेकेंड मोस्ट कॉमन है, वो फीमेल्स में ज्यादा मिलता है, क्योंकि फीमेल्स नर्चर करती हैं, एक बेबी को फीड कराती हैं, बच्चा पैदा करने में हमारे शरीर में जितना ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, वो सब टेलोजन एफ्लूवियम की तरह, मतलब हमारे पूरे सिर में से एक साथ बाल झड़ जाना, स्पेशली बच्चा पैदा होने के बाद में,
0: ओके,
1: वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। आयरन डेफिशिएंसी, जो मेरे को लगता है 50% से ज्यादा फीमेल्स में प्रेजेंट होती है,

0: सब की वजह से टेलोजेन एफ्लूवियम होता है जो बाल झड़ने में, आजकल तभी यूथ है उन सब में हीमोग्लोबिन की इतनी कमी है, आयरन की कमी है, वो सब में हेयर फॉल हो रहा है। और तीसरा हेयर फॉल होता है जब हम कोई ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है, जिसे हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। आजकल जितने भी ये डायबिटीज है, थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, उन सब के साथ में एसोसिएटेड हमें मिलता है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें कहीं कहीं से लोकलाइज्ड बाल गिर जाना कि सिक्के बन रहे हैं सिर में, खाली हो गया एक जगह से, उसे हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। इन सब का ट्रीटमेंट आपकी डॉक्टर जैसे आपको इवेलुएट करेगी कि किस वजह से बाल गिर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: ओके और अगर हम कॉमन जैसे प्रॉब्लम्स देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने एक शहर से दूसरे शहर में रहने के लिए हम गए, तो पानी का लोग अक्सर एग्जांपल देते हैं कि भाई पानी चेंज हो गया होगा। पानी ही से चेंज होता है या खाने से भी वहां चेंज से कोई फर्क पड़ता है? कुछ वेदर या क्लाइमेट का भी क्या कोई असर होता है? क्या क्या होते हैं इसमें कॉजेस?
0: सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा न्यूट्रिशन। जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमारे शरीर में इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता कि हम घर का खाना नहीं खा पा रहे हैं। दूसरी चीज होती है कि हार्ड वाटर, पानी अगर ठीक है, सॉफ्ट वाटर आ रहा है उस जगह पे तो ठीक है
1: जी।
0: पर हार्ड वाटर थोड़ा कॉज कराता है हेयर फॉल को। तीसरी चीज है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे आप कह रहे हो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डैम्प रह रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, सीजनल इसलिए ज्यादा हेयर फॉल होता है बारिश के सीजन में। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स गीले बालों में, आपने भी नोटिस किया होगा जब बाल गीले होते हैं उस टाइम ज्यादा गिरते हैं
1: राइट।
0: हाँ, क्योंकि हमारे फॉलिकल्स जो होते हैं उस टाइम पे बहुत वीक हो जाते हैं। जब गीले बाल रहेंगे, फॉलिकल्स वीक होंगे, तुरंत बाल निकल जाएगा बाहर। तो जितना हो सके हमें स्कैल्प को ड्राई रखना होता है। तो जब पसीना आता है, स्कैल्प ड्राई हो रही है, सिर में बहुत पसीना आता है कुछ लोगों
1: जी,
0: को
1: जी।
0: उसकी वजह से बाल ज्यादा गिरते हैं गर्मी और बारिश के सीजन में।
1: ओके, तो ये आपने बताया कि कहीं ना कहीं कोशिश ये करना, जो हमारा स्कैल्प होता है उसको ड्राई रखने की कोशिश करना है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। एंड इसके अलावा, अब चूंकि हमने ये जान लिया कि न्यूट्रिशन जो होता है वो सबसे ज्यादा इस पर असर डालता है, दूसरी बात है क्लाइमेट की बात है, एंड कोशिश आपको ये करना है कि मैंने अक्सर देखा लोग गलती करते हैं नहाने के बाद भीगे भीगे बाल ऐसे और चले जाते हैं बाहर, तो शायद ये एक अच्छी हैबिट नहीं हो सकती है। इसीलिए शायद टॉयल का इस्तेमाल कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप ड्राई कर लेते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं बाहर, तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। एंड इसके अलावा अब हम एक क्वेश्चन ये करने वाले हैं, आपने स्किन की बात की है। स्किन देखिए, या तो यूथ में जो अभी हमने एक बात की, या यूथ है या अधेड़ उम्र के हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चे की बात करें, न्यू बॉर्न बेबी है, या बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, तो इनकी स्किन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। लेकिन अगर स्पेशली हम बात करें बच्चों की, हो सकता है इस वक्त हमें और आपको कई ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनकी केयर किस तरह किया जाए, क्योंकि स्किन संबंधी उनको भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
0: जी, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा प्रोन होती है, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है आपके वेट के कंपैरिजन, तो हमारी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो सकती है। मतलब बच्चे जो होते हैं उनकी स्किन, तो उनको हमने देखा होगा हमारी माताएं जितनी भी होती हैं वो लोग बहुत मालिश करती हैं
1: जी,
0: क्योंकि उनको ये चीज एजेस से पता था कि बच्चे की स्किन बहुत ड्राई है, मालिश करने की जरूरत है, ऊपर से ऑयल देना पड़ेगा। और बच्चे का स्किन इतनी जल्दी उस टाइम पे डेवलप भी नहीं हुआ होता है कि वो सब चीजें
1: बर्दाश्त कर सके।
0: सही बात है। तो इसलिए हमको सबसे ज्यादा तो हमको उसको मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है, स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए बच्चों में।
1: ओके,
0: दूसरी चीज, जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से स्किन में ड्राई रिएक्शंस हो जाते हैं, कि मतलब शरीर में रैशेज होने लगे हैं, बच्चे के चेहरे पे रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाना, और मच्छर काटने की वजह से बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाना, जो छोटे बच्चों में हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि स्किन ज्यादा प्रोन है। जब हमारा स्किन प्रोन होती है तो हमारा स्किन मॉइस्चर जो होता है वो स्किन से निकल जाता है, उसकी वजह से जितना भी बैक्टीरिया, फंगस या कुछ भी इंसेक्ट या कुछ भी होगा वो ज्यादा इजीली अट्रैक्ट होगा और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है कि स्किन का बैरियर मेंटेन करना होता है। तो बच्चों में हम कैसे कर सकते हैं, ऊपर से मॉइस्चराइज करके कर सकते हैं, और जितना भी हो सके कि बच्चों को पेट्स से दूर रखना होता है। आजकल लोगों को थोड़ा ज्यादा पेट्स का शौक भी हो गया है इसकी वजह से, ये जितना भी एनिमल फर डैंडर जो उतना भी होता है उसकी वजह से बच्चे ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, उनको एलर्जी ज्यादा होती हैं, छींकें ज्यादा आती हैं, स्किन एलर्जीज भी उसकी वजह से बढ़ गई हैं, तो उनसे दूर रखना होता है। घर में धूल मिट्टी इन सब से सफाई रखना है, बच्चों को उससे दूर ही रखना होता है।
1: ओके मतलब ये आपने कहा कि कहीं ना कहीं बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ड्राई होती है, सो मालिश करना तेल की ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, साफ सफाई का आपने कहा बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए जिस घर में स्पेशली छोटे बच्चे हैं और जहां पेट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके बाल होते हैं उड़ते हैं उससे भी बहुत सारे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है बच्चे को। बेशक ये बिल्कुल सही बात है और कई सारे ऐसे घर होते हैं जहां बहुत सारे पेट्स पाले जाते हैं और बच्चों का ख्याल, मेरे ख्याल से जितना ज्यादा साफ सफाई रखा जाएगा, इवन जो बच्चे को लेने वाली मदर है गोद में कोई भी ले रहा है उससे पहले खुद के हाथों को साफ कर लेना, सैनिटाइज कर लेना, ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। अच्छा, इसके अलावा चूंकि अभी बात हो रही थी स्किन की, तो कुछ सीजन ऐसे भी होते हैं जैसे गर्मी में अगर हम बात करें तो गर्मी में पसीना ज्यादा आता है एंड ठंडक में पसीना कम आता है। अक्सर देखा जाता है कि गर्मी आते ही लोग एसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पसीना ना आए, इंप्रेशन ना गलत पड़े। बहुत सारे ऐसे आजकल लिक्विड्स आ रहे, स्प्रे आ रहे हैं जिससे कि पसीना रोकने की बात कही जाती है, या चाहते हैं कि यार पसीना ना निकले बस हम ऐसे ही फ्रेश फ्रेश दिखाई दे। पसीना निकलना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना नेचुरल है और नहीं निकलने से क्या प्रॉब्लम्स आती है सामने?
0: जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा पसीना बनता है और निकलता है, वो पोर्स हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। वो बने ही इसलिए हैं ताकि हमारे स्किन में एक्सेस हीट जो उतनी भी डेवलप हो रही है वो बाहर निकल सके। गर्मी में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। हम लोगों को लगता है कि पसीना नहीं निकलेगा तो हम ज्यादा फ्रेश लगेंगे, बट पसीना निकलना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने भी आजकल लोग डिओड्रेंट्स यूज कर रहे हैं। डिओड्रेंट्स में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है जो हमारे पोर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एक्चुअली में पसीना बाहर नहीं निकल पाता,
1: नहीं निकलता।
0: हाँ, तो पसीना नहीं निकलने की वजह से बहुत सारी एक्चुअली में वहाँ पे बीमारियां हो जाएंगी। दाने पसीना वहाँ पे क्योंकि बना तो है बट निकल नहीं पा रहा,
1: निकल नहीं पा रहा
0: वहाँ पे, वो दाने की फॉर्म में प्रेजेंट करेगा जिससे इचिंग होगी, दाने बनेंगे और उसके बाद में पसीने की वजह से बुखार आ सकता है। जब ज्यादा पसीना आएगा वो सब वहाँ पे हीट क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रही है तो बुखार आएगा, बॉडी टेम्परेचर राइज होगा,
1: बढ़ जाएगा
0: और वो दाने जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है जब उनमें, तो आजकल बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिनमें गर्मी में क्योंकि खेलते हैं और फिर पसीना, कई बार लोगों की स्किन ब्लॉक हो जाती है कि स्किन में पोर्स जो है ब्लॉक हो गए तो पसीने के जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वहाँ पे दानों की तरह प्रेजेंट करते हैं माथे पे, स्पेशली बच्चों के सिर में और माथे पे। तो उन सबको हमें गर्मी पसीने से बचाना है कि पसीना निकल जाए।
1: ओके बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं जैसे कि अगर ड्रेनेज सिस्टम किसी शहर का अच्छा नहीं है तो पानी भराव की समस्या फिर बड़ी मतलब दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसी बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है बाहर करने के लिए, आपने कहा हीट करता है या जो भी शायद वेस्ट चीजें होती होंगी उसको निकालने का काम करता है, पसीने का काम ही यही होता है और इसका निकल जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सारी आपने बातें कर ली, क्योंकि इन जनरल हमने हर चीज पे बातें की कि रैशेज हो तो क्या हो, खुजली क्यों होती है, त्वचा संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं, बहुत बड़ी बीमारियां कौन सी है, बच्चों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग कैसे अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि इन जनरल आप सारी बातों को कंक्लूड करते हुए कुछ ऐसी डेली लाइफ में चीजें बताएं जिसको हम और आप सभी लोग करें और कहीं ना कहीं जो स्किन संबंधी प्रॉब्लम है उससे बच जाएं।
0: सबसे इम्पोर्टेंट हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को, पसीने को जब भी आ रहा है तो हम उसको वॉश करके, आजकल गर्मी में हम नहाए ठंडे पानी से, दिन में दो बार नहा सकते हैं और अच्छे से ड्राई करके ही कपड़ा पहनना है हमेशा
1: जी,
0: ताकि कपड़ा हम कभी भी डैम्प ना हो शरीर पे। फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करें जिसकी वजह से, नहीं तो डैंड्रफ जब हो जाता है उसकी वजह से शरीर पे बहुत दाने आते हैं। ऑयलिंग, जो हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि हम सिर में ऑयलिंग कर लेंगे उसकी वजह से सब ठीक हो जाएगा, पर ऑयल करने की वजह से बहुत ज्यादा डैंड्रफ, चेहरे पे दाने आना, आजकल जितनी भी यूथ है ये जिम करते हैं
1: जी,
0: वो प्रोटीन पाउडर बाहर से वे पाउडर लेना
1: right.
0: उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्ने डेवलप होता है, तो वो अवॉइड करें। और जब भी हम जिम जा रहे हैं तो हमारा इक्विपमेंट हमेशा क्लीन हो, और उसके बाद में शावर जरूर लें।
1: और पानी की शायद मात्रा बढ़ाना चाहिए जितना पानी पिएंगे उतना डिटॉक्स करता है।
0: पानी तो पीना चाहिए, उसके लिए वाटर अलार्म्स लगा लें।
1: अच्छा वाटर अलार्म्स जरूरी है, यानी अपने को जगाने के लिए कि आप सो गए और आपको पानी पीना है। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरती से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। क्योंकि बहुत जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन संबंधी, उस पर हमने चर्चा किया और आपने सभी हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब चूंकि अंतिम दो प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो पहला जो प्रश्न है वो मेरा ये है कि अब इन सारी चीजों से हट के मैं वापस से आप पे आता हूं जहां से शुरुआत की थी कि आपको जाना जाए। तो डॉक्टर श्रुति गुप्ता की वैल्यूज क्या है, यानी लाइफ में कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिनको वो फॉलो करती हैं और वो नॉन निगोशिएबल है, उसको निगोशिएट बिल्कुल भी नहीं करेंगी?
0: वैल्यूज यही है जो हमेशा पेरेंट्स से देखा, कि जितना किसी भी पेशेंट के साथ में एम्पैथी रखनी है।
1: एम्पैथी रखनी है पेशेंट्स के साथ में।
0: वो लोग बहुत परेशान कंडीशन में आते हैं हॉस्पिटल, कभी कोई खुश कंडीशन में नहीं आता है।
1: बेशक, बहुत बड़ी बात है।
0: उनके साथ एम्पैथी रखनी होती है। आप किसी भी कंडीशन में, आप खुद कितना ही परेशान हो, पर उन लोगों को हमेशा कंसिडर ही करना पड़ता है कि आप उन लोगों को हर्ट नहीं करो, क्योंकि वो परेशान ही है, कोई खुश नहीं आ रहा है हॉस्पिटल
1: कोई बड़े केक नहीं काटने आ रहा है।
0: दूसरी चीज ये है कि किसी के साथ चीट नहीं करना है कि दवाई जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भी लिख दिया।
1: राइट, ओके, ये तो पेशेंट्स की बात हो गई। अब मैं इन जनरल भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ की वो वैल्यूज बताइए जिसको आप फॉलो करते ही करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। बहुत से लोग ऑनेस्टी मानते हैं, रेस्पेक्ट करना लोगों की, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, या सेल्फ लव की एक बात होती है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा आप फॉलो करते हैं, कोई अगर एक आप बताना चाहे तो। ओके, तो अब हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। आप बैठी हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि गोंडा का पहला एफएम और इस पूरे देवी पाटन डिवीजन मंडल का पहला एफएम है। जिस तरह से प्रोग्राम्स जाते हैं, आप भी एक प्रोग्राम में शामिल होने आई हैं, आपको क्या लगता है इसको सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, गोंडा के हैं, गोंडा के बाहर के हैं, जो इसको सुनते हैं, आने वाले दिनों में ये क्या चेंज गोंडा के लिए ला रहा होगा और जो इसको सुनते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा होगा?
0: आजकल के यूथ को बहुत ज्यादा एनर्जी है और नॉलेज कम है, तो आप लोग आई थिंक बहुत ज्यादा इस चीज में एक रोल प्ले कर रहे हो, जो लोगों को जरूर हेल्प कर रहा होगा कि क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जॉब्स में, अपने बिजनेस करने में। क्योंकि हम हर चीज सोच सकते हैं कि हमें ये करना है, बट कैसे करना है वो बहुत जरूरी होता है, कहीं से गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो इस सोसाइटी के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच।
1: थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। और ऑफकोर्स हमको आप सभी लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती जाती है और हमारे लिए हमारी अर्निंग आपकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जितना आप अपना ब्लेसिंग्स हमको देते हैं, दुआएं देते हैं, जितना नवाजते हैं उस चीज से, और हमारे हौसले और भी बुलंद होते जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने उसी विजन, उसी मिशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और इतने अहम मुद्दे पे बात की। इवन गोंडावासी जो आपको नहीं जानते थे, आज उन्होंने जरूर आपको सुना होगा, उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स का आपने सॉल्यूशन इसी टॉक शो में दे दिया है। और मुझे ऐसा लगता है जिनको और प्रॉब्लम है या स्किन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, आपके डिपार्टमेंट पे आके संपर्क करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, यानी आपसे मिल सकते हैं या कहीं पे भी जो उनके नियर बाय जो भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू यू।
0: थैंक यू।
1: सो श्रोताओं, आपने आज का टॉक शो सुना और ऑफकोर्स आपके बहुत सारे प्रश्नों का आज उत्तर मिल गया होगा। फिर से हम हाजिर होंगे इसी शो में अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए आप सुनते रहिए अपना गोंडा वाला एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9216-9976-9816-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
8: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
9: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
10: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
11: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
12: डिलिशियस
13: है ना, लेट्स डाइन।
12: Come and join Let's Dine Restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
10: और क्या क्या है खास?
12: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
10: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
13: शर्मा,

नमस्कार सारे मेरे प्यारे लिसनर्स का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी का पता है कि आज हमारे शहर में नागपंचमी पूरे देश में नागपंचमी मनाई जा रही है। अब मैंने हमारे शहर इसलिए क्यों कहा क्योंकि हमारे यहाँ जो यूपी बिहार है वहाँ पे नागपंचमी मनाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। जी हाँ, नागपंचमी के दिन तो भाई नाग की पूजा होगी, ये तो बहुत ही कॉमन है, हर जगह होगा। लेकिन बात जब परंपराओं आस्था और क्या कहते हैं लोक कथाओं की करी जाए तो बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें दिख जाती है। तो वेलकम टू योर शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला आपकी जो फेवरेट आरजे यानी कि शाम की आवाज़ आपके साथ मौजूद है। एंड आपको बता दूं कि आज हम लोग भाई कॉल इन वाला इवनिंग भी है, तो नो डाउट कि हम आज बातें नहीं करेंगे या कुछ और नहीं करेंगे। तो फिलहाल आज नागपंचमी की बात हो रही है तो नागपंचमी की ही बात पहले करेंगे, उसके बाद कुछ और।

तो आज बात तो होगी। सावन की फुहार की और इसके खास त्यौहार यानी कि नागपंचमी की। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नागपंचमी में कुछ मतलब अलग होता है, एक जैसा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती है, जैसे कि गुड़िया। जी हाँ, नागपंचमी को हमारे यहाँ गुड़िया भी कहा जाता है और आज के दिन गुड़िया पीटी जाती है। गुड़िया पीटने से तात्पर्य ये है कि बहनें छोटी छोटी सी गुड़िया बनाती हैं और भाई एक छड़ी लेके आते हैं, उस गुड़िया को पीटती हैं। और इसके पीछे की कथाएं जो है उनके बारे में बात करेंगे। वैसे आप लोग के यहाँ क्या होता है मुझे बताइएगा चैट रूम में। लेकिन कहते हैं ना कि सावन की बूंदें हो, मिट्टी की खुशबू, हरियाली का साज है, तो यानी समझ लीजिए कि नागपंचमी पर्व आज है। प्रकृति से जुड़ने का ये खास अंदाज है क्योंकि आज नागपंचमी त्यौहार है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि नागपंचमी सावन महीने की जो पंचम कह सकते हैं कि शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उस दिन मनाई जाती है। और भारत की परंपराओं के अनुसार नागों से संबंधित हैं भगवान शिव, और शिव के साथ विष्णु और अनेक लोक कथाओं से जुड़ी इस त्यौहार की जो कहते हैं ना परंपरा, वो बड़ी अनूठी है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग हमें ये संदेश देते हैं कि प्रकृति हर जीव का अपना महत्व दिखाती है। कोई भी जीव की वैल्यू जो है वो कम नहीं है, चाहे वो सांप हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो आपके आसपास मौजूद जीवाणु जिन्हें आप देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इसके पीछे कोई अंधविश्वास है, बस सम्मान की कथा है। और इसीलिए इस त्यौहार को स्पेशल इसलिए कहा गया है क्योंकि हम किसी भी जीव या जंतु को नेग्लेक्ट नहीं करते, इसीलिए हम नाग की पूजा भी करते हैं जहरीला होने के बावजूद। तो चलिए सुनते हैं आज नाग पंचमी स्पेशल प्लेलिस्ट आरजुबीना के साथ। और जल्दी से आ जाइए क्योंकि आज आपकी आवाज़ सुननी है तो मैं और एक्साइटेड हूँ। तो फटाफट से ट्यून कर लीजिए जिसने अभी तक नहीं किया। 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला विद योर फेवरेट आरजे बीना।

सही है कि जब संकट दूर करने की बात आती है तो हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं कि भाई किसी तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में हमारे जुड़ाव का कारण बन जाता है। शुभ संध्या तेज नारायण जी और शुभ संध्या वायु नंदन, गुड इवनिंग धर्मेंद्र, सब लोग कैसे हैं भाई? सब लोग फटाफट से इवनिंग में आ गए हैं और आज भाई कॉलिंग वाली इवनिंग है, तो पहले ही मैंने आप लोग को बोला था कि टाइम से आप लोग रहेंगे तो सबके कॉल्स समय से लिए जा सकेंगे और आप लोग अपनी आवाज़ में जो कहना चाहते हैं वो अपने मतलब स्वतंत्र टाइम से कह सुन पाएंगे। एनीवे चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग कहाँ पे थे भाई आज के त्यौहार की जो कहते हैं ना प्रशंसा चल रही थी, क्या कुछ खास होता है आज के दिन, और भाई कहीं कहीं गुजिए बनते हैं, कहीं कहीं नाग नागिन की जो बिल होती है वहाँ पे जाके पूजा बाकायदा की जाती है, और आज तो भाई सावन ने अपना अच्छा खासा रूप दिखाया, अच्छी खासी गोंडा चाय में बारिश हो रही है अभी भी हल्की फुल्की, और ना सही पूरे सावन, लेकिन आज के दिन तो अच्छी बारिश हुई, इस बात की हम लोग को खुशी है। फिलहाल जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी लोक कथाएं भी बड़ी अलग अलग हैं नागपंचमी से जुड़ी, तो कहीं कहीं पे एक प्रसिद्ध कथा फेमस है कि एक किसान परिवार था और उनकी नाग के प्रति बड़ी करुणा और मतलब बड़ी मतलब अच्छी वो थी रिलेशन, तो वो किसान परिवार हमेशा उनकी पूजा करता था, तो नाग देवता उसको मतलब सपोर्ट भी करते थे, जैसे मदद करना हुआ जो भी है, पता नहीं करते थे कि नहीं, अब कथा है तो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश मिल गया कि हाँ अगर आप किसी प्राकृतिक जीव के प्रति संवेदना रखेंगे तो वो जीव भी आपका कहीं किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएगा। इसी के साथ एक नए नज़रिए से अगर देखें नागपंचमी को, तो सांप हमारे इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई ऐसा मतलब शायद ही सांप होगा जो हमें मतलब हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा होगा। देखिए सांप खेतों में होते हैं तो चूहे जैसे जीवों को की जो संख्या वो नियंत्रित रहती है, ठीक है, और चूहों की संख्या नियंत्रित रहेगी तभी आपके खेत में जो बालियां हैं वो सुरक्षित रह पाएंगी और आपके घरों तक पहुँच पाएंगी। इसलिए अगर घर या आसपास सांप दिखाई दे तो उसको परेशान ना हो देख के, और उसकी बिल्कुल मतलब हत्या तो बिल्कुल भी ना करें और उसे छोड़ दें, ठीक है। इसी के साथ घर में छिपकली दिखे तो आप लोग चिल्लाते हैं मम्मी मम्मी मम्मी, और सांप की फ़ोटो इधर उधर भेजते हैं तब नहीं सोचते हैं, तो फिलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे फ़ोटो में नाग हो चाहे सामने नाग, डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना चाहिए, छिपकली के साथ जैसे रखते हैं वैसे ही। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सांप को हानि नहीं पहुँचानी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नागपंचमी को लेके थोड़ा देश घुमा देती हूँ कि पूरे देश में कैसे नागपंचमी मनाई जाती है और क्या कुछ खास है नागपंचमी को लेके पूरे देश भर में, क्या डाइवर्सिटी है, क्या नई चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ भाई गुजिए बनाए जाते हैं और गुलगुले बनते हैं और शाम के समय बाकायदा गुड़िया वगैरह पीटी जाती है, आप लोग बताइए आप लोग का क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, इस डाइवर्सिटी को समझते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखते हैं, जैसे यूपी का तो आप सभी को पता ही होगा, वहाँ प्रसिद्ध मंदिर जो महाकालेश्वर है, वहीं महाकालेश्वर के ऊपर स्थित है नागचंद्रेश्वर मंदिर। उसके कपाट साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं नागपंचमी के दिन, वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए, जहाँ शिव पार्वती की दुर्लभ मूर्ति मतलब वहाँ पे है, और वो सिर्फ एक दिन यानी कि नागपंचमी के दिन ही खुलता है बट। और बाकी जो मेरे मध्य प्रदेश वाले लिसनर्स हैं वो बताएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ खास होता है। अच्छा आगे चलते हैं कि अब यूपी बिहार की बात कर लें, हम लोग यूपी वाले हैं तो अपने बारे में तो जानते ही है, लेकिन गुड़िया वाला जो है गुड़िया पीटने का जो वो है चलन वो बड़ा अच्छा है, लेकिन कई लोगों ने मैंने सुना कि यार गुड़िया पीटना मतलब कहीं ना कहीं लड़कियां बनाती हैं भाई उसको पीटता है, बड़े मतलब हम लोग इफ बर्ड्स लगाते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितने मतलब लड़कियां खुशी से उसको बना भी रही हैं और लड़के उसको पीट रहे हैं। एक तरह से ये खेल है और एक परंपरा है जिसको जीवित रखा जा रहा है, हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ हम उन्हीं चीज़ों को करें जो मतलब रिक्वायर्ड है, हर दूसरी चीज़ में हमें क्रिटिसाइज़ करके उस चीज़ का जो कहते हैं ना आनंद उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए।
वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में गुलाब जामुन खाने से बड़ी बीमारियाँ होती हैं, हमने क्या खाना बंद कर दिया। तो हम मतलब बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ मैंने लोगों के मुँह से सुनी और क्रिटिसिज्म मतलब ऐसी बातें कहीं लोगों ने कि लड़कियों की भावनाओं को वहाँ रौंदने की बात करी जा रही है, गुड़िया पीटना यानी कि बच्चियाँ मेहनत

बनाना उसको कपड़े में भर के कलरफुल सी, और वो छड़ी जो रहती है वो बड़ी प्यारी सी लगती है। वायु नंदन कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी दलभरी बनती है, बरिया बनती है, पूरी दाल सब्जी। और हाँ, एक चीज़ जैसे इन्होंने बताया मुझे कि ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि नागपंचमी के दिन कहा जाता है कि जो लोहे की चीज़ें हैं उसको गैस पे नहीं चढ़ाया जाता। मतलब लोहा जैसे कि मतलब वो काला है, तो जीव को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है मुझे इसके पीछे का साइंस बहुत नहीं पता, लेकिन हाँ नागपंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ाते, तवा या लोहे का जो भी आपके यहाँ मतलब आर्टिकल है उसको गैस पे नहीं चढ़ाते, या कह सकते तवा नहीं चढ़ाते, तवा मतलब पूरी कचौड़ी वगैरह बनती है। तो मैंने भी आज भैया पूरी सब्जी ये सारी चीज़ें बनाई थी, वैसे मेरा तो फास्ट था, लेकिन हाँ घर वालों के लिए आई डिड दिस। कचौड़ी, गुजिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग किधर गुजिया बहुत बनती है। हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि गुजिया जैसे जिसको अवसर मिलता है सिर्फ होली में बनने का, उसे एक और अवसर हमारे यूपी बिहार में मिल जाता है पंचमी के दिन बनने का। और हाँ नागपंचमी में एक मौका है जहाँ बेटियाँ अपने मायके आती हैं शादी के बाद, और मतलब बहुत अच्छा त्यौहार है, इसके पीछे हमें बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं, महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में महिलाएं जो हैं वो दीमक के जो बम्बी होती है, जो बड़ी सी ऊंची, मतलब दीमक जो है ना वो बड़े बड़े से घर बनाता है ऊंची ऊंचे से, तो वहाँ पे कहते हैं कि सांप की भी बिल होती है, ठीक है, और मतलब लोग कहते हैं उसकी पूजा करती हैं जिससे कि वो बचा रहे। और देखा जाए तो साइंटिफिकली बहुत सही है ये कि हमने उनके बेसिकली उनके हैबिटेट को बचाया। अगर हम उनके घर की रक्षा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तो हमारे घर में नहीं आएंगे, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सांप के हो सांप के घर की रक्षा करना। तो ये वाला तो बहुत ही अच्छा है कि वो जो उनकी जो बम्बी सी होती है उसकी पूजा की जाती है, दूध वगैरह जो भी होता है वो सब चढ़ाते हैं, मतलब ये बढ़िया है और हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। गुड इवनिंग गौरव, काफ़ी दिन बाद दिख रहे हैं, और आपको भी गुड़िया उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब चलते हैं थोड़ा पंजाब का भी रंग देख लेते हैं, कैसे मनाते हैं ये मतलब नागपंचमी। तो इसे भाद्रपद मास में गुगा नवमी के रूप में मनाते हैं ये लोग, और यहाँ आटे के सांप की मूर्ति बनाकर जुलूस निकालते हैं। आटे से ना नाग नागिन, वैसे मैं भी ये करती हूँ क्योंकि मेरा बचपन जो है पंजाब में बीता है, तो वहाँ पे भी मतलब मैंने वहीं से सीखा। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, आटा लेते हैं, आटे को मतलब गूँथ के बढ़िया टाइट सा सान लेते हैं, फिर उससे 5 जहरीले जीव बनाते हैं, जैसे सांप नाग नागिन का एक जोड़ा, और फिर जो भी बिच्छू है जो भी मतलब जहरीले जानवर है उनको बना लेते हैं, और फिर उनको मतलब उनकी पूजा वगैरह करके आइडेंटिटी की तरह, और फिर उनको मतलब सांप को भगवान शिव के स्थान के पास या जहाँ भी जाते हैं अर्पित कराते हैं। एक तरह से आइडलिज्म है, मैं करती हूँ ऐसा, मुझे अच्छा लगता है, और मतलब बढ़िया है। जितने भी जो भी कल्चर है ना उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो हमसे पहले जनरेशन है, हमारे दादा परदादा मम्मी पापा, और एक लास्ट जनरेशन हम लोग हैं जो हमारी संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहे। हमारे बाद वाली जनरेशन जो स्पेशली जेन अल्फ़ा है, हम लोग तो जेन जीज में आ जाएंगे, लेकिन जो अल्फ़ा है वो बिल्कुल भी इन संस्कृतियों को मतलब नहीं जानेगी अगर हम लोगों ने इसको बचाया नहीं, ठीक है ना। और आस्तीनों के सांपों को भी नागपंचमी की शुभकामनाएं। हाँ ये बात तो सही है, वैसे आस्तीन के सांप तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन देखिए आस्तीन के सांप हैं तभी तो हम अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं काट काट के याद दिलाते हैं, भाई तू ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, देखो कुछ अच्छा करना है, तो ये चीज़ अच्छी है ना। तो आस्तीनों के सांपों का होना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इकोसिस्टम बैलेंस की बात की ना मैंने, तो जैव विविधता की बात हम लोगों ने कर ली, और नागपंचमी से जुड़े वो सारी चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए, इसके जो महत्व को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी सी चीज़ है। और अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात करूँ तो हमारी संस्कृति में हर वर्ष हर त्यौहार को उसी उल्लास से मनाया जाता है, और लगता ही नहीं कि यार इसे हम हर बार मना रहे हैं, कभी वो उल्लास कम नहीं होता, एंड यही हमारी पहचान है। तो चलिए आगे, अब कॉल इन का टाइम भी शुरू हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे आप लोग के कॉल लेने की तरफ भी मतलब रुख करूंगी। और अगर मैं देखूं थोड़ी सी मतलब एक शिव हो या विष्णु हो, दोनों का मतलब नागों से अच्छा खासा रिलेशन। भगवान विष्णु को तो हम लोग देखते हैं ना शेष नाग की शैया पे बढ़िया लेटते हैं, मस्त सोते हैं, और भगवान शिव जो है वो गले में पहन के घूमते हैं, तो दोनों ही में मतलब कहीं ना कहीं सांप को बहुत

0: सपोर्ट किया। तो भगवान को अगर प्रिय है तो हमें तो प्रिय होना ही चाहिए। तो कोशिश यही करें कि घर में अगर सांप वगैरह निकले तो कोशिश करें बाहर निकले, बाहर निकाल दें उसको। हाँ, विषम परिस्थिति है, घर में बच्चे हैं तो हम किसी सपेरे वगैरह को या किसी को बुला लें। हाँ, प्रयास यही करें कि हम उसको हानि ना पहुँचाएँ, क्योंकि वो भी एक जीव है और उसकी भी फैमिली होगी। और चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग व्रत त्यौहार ये सब बड़ी मान्यता से मनाते हैं, और ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा हैं, इन्हीं में रचा बसा जो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, उसको हम लोग त्यौहार के रूप में आगे लेके चलते हैं। एक कविता है, आपने अगर सुनी हो कभी या पढ़ी हो, कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है मनुष्य और सांप। और इस कविता में महाभारत युद्ध के आखिरी दिनों का वर्णन है कि जब कर्ण को सेनापति बनाया गया था, होता यूं था कि कर्ण अपने रथ पर होता था और वह अर्जुन पर प्रहार करने के लिए अपने तरकश में जब हाथ बढ़ाता था तो तीर में लिपटा हुआ एक सांप भी उसके हाथ में आ जाता था। इसका नाम अश्वेसिन है और ये तक्षक कुल का है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये याद दिलाता है कि जो सांप है बेसिकली वो वहाँ पे एक तरह से आपको वॉर्न करने का काम कर रहा है। इस कविता में जो है कर्ण और अश्वसेन की जो बातचीत है वो बड़ी अच्छी सी है। सर्प अश्वसेन खांडव प्रस्थ जलाए जाने को लेकर अर्जुन के अपने पुराने जो कहते हैं ना बदला है, अर्जुन का जो पुराना बदला जो है वो लेना चाहता है। मौका देखकर वह कर्ण के तरकश में घुस जाता है। सर्प कर्ण से प्रार्थना कर रहा है कि उसे मतलब जो तीर पर बैठा रहने दे, वो जाके अपना अर्जुन से जो मतलब पुराना जो हिसाब किताब है वो चुकता कर ले। तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे वार से बच भी गया तो मेरे विष से नहीं बचेगा। मतलब ये कह सकते हो कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दुश्मन। तो कर्ण उसे मना कर देता है। इस बातचीत में वह सांपों के गुण धर्म को बताता है। कर्ण कहता है कि विषैले होने के बाद भी सर्प पवित्र होते हैं। तुम विष्णु का हार हो, तुम शिव का हार हो, विष्णु की शैया हो, धरती का धरणी धर हो, और साथ ही साथ तुम धोखे का कलंक लेना चाह रहे हो। मतलब जाओगे उसको, मतलब मेरे तीर के सहारे जाओगे और फिर उसको काटोगे, मतलब ये गलत है, ऐसा वो समझाता है। तो फिर वो कहता है कि अपने साथ मुझे भी इस कलंक में ना मिलाओ। कर्ण कहता है कि भाई मैं तुमको अपने तीर के साथ नहीं भेजूंगा, नहीं सब कहेंगे कि इसने धोखे से मतलब तीर के बहाने सांप को भेजा मुझे मारने के लिए। ये तो गलत है भाई, मैं ये परंपरा नहीं, मैं धनुर्धारी हूँ, मैं किसी तरह का रूल नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। इस कलंक को मुझे ना लगने दो। और भारतीय सनातनी जो परंपरा है सामाजिक ताने बाने में कि हर जीव जंतु का कितना सुंदर योगदान है, चाहे वो कर्ण की पौराणिक कथा के तौर पे हमें पता चलता है, ये हमें ये बताता है कि जो डाइवर्सिटी है वो महाभारत तक हमें दिखी है। महाभारत में भी कर्ण के साथ साथ सांप अपना बदला लेने के लिए वहाँ पहुँच गया। तो ये सारी कहानियाँ हैं जिनको हम पढ़ें समझें तो हम समझ पाते हैं कि कितनी बड़ी सी चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं थोड़ा और मैं बात तो करूंगी, आप लोगों से फिलहाल बात करने का दिन है तो मैं कॉल लेती हूँ, देखते किसका कॉल चल रहा है। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेरी गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम।
1: और मैम आपको नागपंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: ओह थैंक यू सो मच, मुझे तो इतनी सारी शुभकामनाएं जब मिल जाती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सुबह से वैसे शुभकामनाएं मिल रही हैं, फिलहाल आपका नाम जानना चाहती हूँ।
1: आपकी अपनी अनु?
0: मुझे तो पता है मेरी अनु, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे श्रोताओं को भी पता चले कि हमारे साथ हमारी अनु लाइव है। अनु आज क्या सुनाना चाहेंगी?
1: लाइन एक एक गाना सुनाना चाहूंगी,
0: एक लाइन और
1: आपसे ना थोड़ी सी बात ऑफलाइन भी करना चाहूंगी।
0: ओहो, ऑन ऑफ दोनों। क्या बात है, तो चलिए मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल आप ऑनलाइन अपनी आवाज श्रोताओं को अपने माध्यम से जो सुनाना चाहती है सुना सकती हैं।
1: जी सुना रही हूँ।

0: गाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से।
1: अब इसका स्टेंजा मैं डेडिकेट कर देती हूँ, ठीक है आपको?
0: जी मैम।
1: इस गाने का जो अंतरा है वो मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, ठीक है?
0: ओके मैम, थैंक यू।
1: मेरे दिल को तुम भा गई।

0: और इसके आगे की लाइन मुझे लग रहा है मैं भूल गई हूँ।
1: हम दोनों भूल गए फिर।
0: मुझे लग रहा है मैं तो भूल गई हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी याद करने के लिए।
1: लेकिन मैम आपने बहुत अच्छा गुनगुनाया।
0: हाँ अब मुझे याद आ गया, फिर से सुनाती हूँ।

0: तो ये था हमारे लिसनर्स के लिए, स्पेशली अनु के लिए। तो अनु और क्या
1: बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा गाया।
0: बहुत अच्छा तो नहीं आया लेकिन प्रयास किया मैंने क्योंकि मेरा
1: फेवरेट नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हो।
0: तो और क्या कहना चाहती हैं आप लिसनर्स से, अपने मतलब अपने
1: लिसनर को भी, मैं सबको नाग पंचमी की बहुत ही सारी शुभकामनाएं।
0: और सब लोगों ने अगर मीठा ना खाया हो तो खा लें, और अगर ना बनाया हो तो अनु के घर चले जाएं। अनु के घर भाई भैंस है, गाय है, और इनके यहाँ भाई खोया बहुत है, और इनके यहाँ बहुत सारी गुजिया भी बनी होगी, और सब लोग खाएं और बांध के लाएं।
1: और मैं पता है हमारे यहाँ एक परी और एक बाबू भी आया है, ये तो हमारे जानवरों की तरफ से, हमारे भैंसों की तरफ से आया है। और मेरे यहाँ मेरे पोता भी आया है।
0: अरे बाप रे, तुम दादी बन गई।
1: हाँ, और भाभी का पोता हुआ तो मेरा भी तो हो गया।
0: हाँ, मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ी मिल गई। आय हाय, बुढ़ी मिल गई। तो ओके, दादी बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे भी ऐसी बातें करते रहेंगे। तो चलिए,
1: और मैं पता है वो ना 15 अगस्त के दिन आया है।
0: ओ क्या बात है, तो बहुत सारी, तो उनका नाम रख दीजिए स्वतंत्रता।
1: ठीक है, रख देंगे, भाभी से बोल देंगे यही नाम रख दो।
0: हाँ बिल्कुल, लड़का है तो स्वतंत्र, और लड़की है तो स्वतंत्रता।
1: लड़का है
0: तो स्वतंत्र
1: अच्छा रहेगा। उसकी बहन थी पहले से भी, भाई आया है।
0: देखो मैंने मतलब कितना अच्छा सा नाम रख दिया हम लोगों ने। ओह यार क्या बात है, थैंक यू सो मच अनु। आगे बात करते रहेंगे और अगले कॉल का मौका देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगी। थैंक यू सो मच। तो मेरे लिसनर्स तो हैं जो बात करते करते करते करते करते करते दूसरे को मौका नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप लोग 6 बजे ठीक 6 बजे लाइव हो जाया करिए। फिलहाल आज बहुत अच्छा सा मतलब दिन है, बारिश भी बहुत हुई है, मन एकदम खुश है यार। मतलब आई एम फीलिंग वेरी वेरी लाइट, मतलब हल्का फील हो रहा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। गुड इवनिंग आशु, ये बताइए आपके यहाँ बारिश हुई कि नहीं? आपने कुछ भेजा है खाने के लिए? जो भी भेजा है मैं खा लेती हूँ फटाक से। फिलहाल खा तो नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा फास्ट है। वायु जी लिख रहे हैं आप काफ़ी समझदार लगती हैं। समझदार तो आप भी हैं, और मुझे लगता है कि हर वो इंसान जिसे भगवान ने इंसान बनाया समझदार हैं, इसीलिए तो हम समझदारी की बातें बैठ के करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जीवों में सबसे ऊपर हम लोग का नाम है मनुष्य का, तो ऑब्वियसली वी आर समझदार। तो चलिए चलते हैं एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के, और महेंद्र दीपेंद्र राजस्थान से हमें सुन रहे हैं। महेंद्र आप बताएं, आपके अभी नागपंचमी मनाई जाती है? अगर मनाई जाती है तो कैसे मनाई जाती है, ज़रा हमें भी बताएं, क्योंकि मुझे राजस्थान के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है। तो चलिए आगे चलते हैं और आज के इस फेस्टिव मूड को और ज़्यादा फेस्टिव मनाते हैं।

0: तो भाई हमने सुना इतना प्यारा सा, जिसने लगा दी सावन में आग, लेकिन अभी आग लगाने के लिए आप लोग की आवाज है। और चलिए सुनते हैं अगली आवाज किसकी है। हेलो,
1: नमस्कार, शुभ संध्या मैम, और नागपंचमी के लिए सारी शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और श्रोताओं को कृपया अपना नाम बताएं।
1: जी, मैं सपलो सावंत बोल रहा हूँ, मोतिहारी से नाराज।
0: सो लिसनर्स, हमारे बहुत प्यारे लिसनर हैं सबलू जी, जिनकी कविताओं की मैं दीवानी हूँ। मैं ही नहीं, आप लोग में से बहुत सारे लोग जो सुनते हैं उन्हें रेगुलर, वो भी दीवाने होंगे। तो आज सबलू जी क्या सुनाने वाले हैं नागपंचमी के शुभ अवसर पर?
1: मेरे यहाँ तो आज मेला भी लगा हुआ था, और काफी झंडा लंबा भी बना हुआ था, बहुत भीड़ था, इतना भीड़ था कि हम लोग झंडा के पास जाकर भी उनका प्रसाद का निवारण नहीं कर पाए। इतना भीड़ था।
0: यही तो त्योहार होते हैं जो हम लोग को करीब लेके आते हैं, सब कुछ भूलने का मौका देते हैं।
1: जी जी।
0: तो आज क्या सुनाइएगा आप?
1: एक छोटी सी जो कविता नहीं है, एक कहानी है जो भगवान शिव के आधारित और माता पार्वती के बीच में आधारित है।
0: क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है, मजेदार, मजा आएगा।
1: कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और नसीब में ना किसी को मिला है और ना मिलने वाला है, और जो नसीब में होकर अगर होगा वो चल कर आता है, और ना होगा वो आकर भी चला जाता है। इसी आधारित पर एक माता पार्वती की जीत पर भगवान शिव ने एक सोने की महल बनाया, जो गिरी प्रवेश के लिए जब प्रांड विद्वान रावण को पूजा कराने के लिए बुलाया गया, तो उससे दक्षिणा में वही सोने का महल मांग लिया। शिव जी के वचनों के कारण वह महल रावण को तो मिला, लेकिन आगे चलकर वह सोने की लंका कहलाई। माता पार्वती की आवास न होने की इच्छा पर महादेव सोने की सुंदर भवन तो बनाया, लेकिन उसे गृह प्रवेश में रावण को दान में दे दिए थे। तो यह तो माता पार्वती की नसीब में उनके लिए महल नहीं थी, तो भगवान शिव बोले कि ये भी तो आपकी नसीब में नहीं है, जो आपके नसीब में था वो किसी और को मिल गया। तो माता पार्वती का भी जीत था, जो हनुमान जी उनका वंश थे, तो उनकी पोछ में भी माता सरस्वती पार्वती का विराजमान था, जो समय के अनुसार पूछ को दुबो कर और पूछ से ही रावण को लंका में आग लगाया गया, जो हनुमान जी की पूछ के माध्यम से, तो उनका भी लंका सोने का जल कर राख हो गया। तो उनका नसीब में चल कर जो गया था वो भी नसीब नहीं था, और माता पार्वती का तो कहना क्या है, भगवान शिव तो बोला कि आपकी नसीब में तो महल का सुख ही नहीं है। जी, आरजे विना जी,
0: क्या बात है। और मतलब ये कहानी मैंने भी सुनी थी कि हाँ, एज अ पुरोहित रावण को बुलाया गया था और उसने अपनी दक्षिणा में वो महल मांग लिया था। मतलब कैसे हो सकता है कोई, मतलब इतना लालची मिला था माता जी को रहने देते। बहरहाल वो उनका भी नहीं रहा। क्या बात है, बहुत अच्छी सी कहानी सुनाई।
1: एक कविता भी है छोटा सा।
0: हाँ, स्वागत है, स्वागत है।
1: एक सेकेंड, थोड़ा डायरी खोल रहा है।
0: जी जी जी।

0: जो है वो शिव है, जो ना नहीं है वो शिव है, तुमसे ही शिव है, मुझसे ही शिव है, देखो खुद में झांक कर, हम सबसे शिव है, शिव अंदानी है, शिव ना आरंभ है, सब में शिव है, शिव तीनों लोग के स्वामी है, सृष्टि ओ है, जगत ओ है, पृथ्वी ओ है, आकाश भी ओ है, अंबर भी ओ है, गगन भी ओ है, देखो तो पूरा ब्रांड का ओ नीलकंठ है, त्रिपुरारी महाकलेश्वर का गंगाधर चंद्रशेखर, शिव शंकर शंभु आदित्य योगी, हे महादेव मैं तीनों लोग के स्वामी की चरणों का नमन करता हूँ, तुमने जो यह जन्म दिया उसको मैं आभारी हूँ, तुमसे आया हूँ, तुमसे मिल जाऊ यही मेरी अभिलाषा, बस तुम पर ही भरोसा है, तुम पर ही मेरी अपने हो, ये सारा जग झूठा है, ये सब मोह माया है, मुझे डर क्या होगा किसी की जब सर में महाकाल की साया है,
1: हे
0: भोले भंडारी मैं खुद आपको समर्पित करता हूँ, कृपया मेरे जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने की राह दिखाए।
1: क्या बात है, बहुत खूब बेहतरीन, सच में शिव की साया में या शिव के आशीर्वाद में जो भी व्यक्ति रहेगा वो कहीं ना कहीं हर दुख कलेश से दूर रहेगा। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: मेरा भोला भंडारी है, जगत के तो उनका बात ही अलग है, नाम उनका अनेक रूप में कहीं कहीं विराज है, यहाँ से लेकर चाहे इंडिया में नेपाल तक बहुत सारे नाम से पूजा जाता है।
1: क्या बात है, विविधता है तो उसी विविधता में वास है ईश्वर। क्या बात है,
0: बिल्कुल छोड़ना
1: चाहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबलू जी ने अपनी आवाज में जो लयकारी की, पहले तो एक कहानी सुनाई और फिर एक कविता सुनाई और एक कह सकते हैं ना कि समा बांधा, बहुत ही बेहतरीन था। और ये आप लोगों उसको हम लोगों से जोड़ने का काम करता है। तो चलिए अगले कॉल की ओर रुक करते हैं, अभी सुनते हैं किसकी आवाज है। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
2: जी शुभ संध्या, और नाग पंचमी की बहुत ढेरों शुभकामनाएं।
1: आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे।
2: जी जी, तो कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे।
2: जी जी, मेरा नाम है त्रिपुरा से अविनाश।
1: तो अविनाश हमारे साथ है श्रोताओं। वैसे मैं तो समझ गई थी कि अविनाश की आवाज़ है, किंतु मैं चाह रही थी कि हमारे श्रोताओं को पता चले कि हमारे कौन से श्रोता कहाँ से बात कर रहे हैं। फिलहाल ये बताइए कि आज नागपंचमी पे आपने क्या खास किया? वैसे त्रिपुरा के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर आप ही बताएंगे तो हम जान जाएंगे।
2: जी जी जी, तो हमारे इधर ज्यादा कुछ खास नहीं, बस हम यहाँ पर नागपंचमी के दिन मतलब कि नाग बाबा के लिए मतलब कि हम लोग दूध चढ़ाते हैं और मतलब कि और उनको बोलते हैं कि आप फिर से चले जाइए, मतलब कि इस दिन के लिए आपको मतलब कि पूजा पाठ करते हैं, और उस दिन मतलब कि वो तो शिव जी के साथ ही रहते हैं, तो इसलिए शिव जी को भी पूजा किया जाता है। और आज देखिए, आज इत्तेफाक की बात है कि आज सावन का सोमवार भी था और नागपंचमी भी एक साथ था, तो बड़े धूमधाम से मनाया गया।
1: क्या बात है, तो आज आप क्या सुनाएंगे?
2: आज ये गीत सुनाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही प्यारा सा गीत है। तो थानेदार मूवी से है। इस गीत में मतलब कि बहुत ही अच्छे अच्छे बातें छुपी हुई हैं जो हम सबकी जिंदगी में बहुत ही जी। तो चलिए सुना देते हैं। जी जी, तो चलिए सुना देते हैं।

है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल जियो।

0: क्या बात, क्या बात है। और सच में जिंदगी को अगर समझे तो ये गाना काफी है जिंदगी की परिभाषा बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है विनाश जी आपने मतलब गानों को रिसर्च करके तैयार किया हुआ है और हर गाने को मन से मतलब अपने जोड़ के रखा है। बहुत बहुत
1: जी जी, क्योंकि गाने देखिए ऐसे शब्द होते हैं, उन शब्दों को मतलब कि दिल से पिरो कर अगर गाए जाए तो वो शब्द मतलब कि ऐसे बन जाते हैं कि मतलब गाने में भी उतना मन लगता है और इस शब्द को समझे तो इसमें बहुत सारे मतलब की बात छुपे रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इंसान अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तेज जी, मतलब अविनाश जी, बहुत मज़ा आया मुझे जान के कि आप गानों को समझते हैं, दिल से जोड़ते हैं और फिर सुनाते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: तो अविनाश जो कि हमें त्रिपुरा से सुन रहे थे और त्रिपुरा से इन्होंने कॉल किया और बताया कि भाई इनके यहाँ भी नाक को दूध दूध पिलाया जाता है और यहाँ भाई हमारे यहाँ सबके पास सब कुछ ना कुछ बताने के लिए मज़ा आ रहा है। अमरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरीश शुक्ला, और आरजे बीना जी अभी बड़ा कंफ्यूज से लग रहे हैं, आपने कभी शायद मुझे सुना नहीं, मुझे लग रहा है मतलब मेरे टाइम पे नहीं आए होंगे। और मनाते हैं कुछ कुछ लेकिन मेरे आपके गांव में नहीं, महेंद्र जी के गांव में नहीं मनाया जाता। देखिए हर जगह का कल्चर अलग है। और देखिए जलवायु की बात करें तो ज़्यादा विविधता जो है सांपों की वो इधर मतलब इस तरफ पाई जाती है, तो इस वजह से जहाँ पर जो जीव ज़्यादा है वहाँ उसकी पूजा की जाती है अलग अलग ढंग से। और वैसे वहाँ पर मतलब मैंने जब राजस्थान के इतिहास को पढ़ा है तो वहाँ पर जो कहते हैं ना गायों की बड़ी पूजा की जाती है, मैंने देखा है गायों की बहुत पूजा करते हैं और गाय की है और ये क्या कहते हैं बहुत सारे जीवों की, ऊँट की भी पूजा होती है। तो मतलब जो जीव जहाँ पाया जाएगा उसकी वहाँ पे पूजा की विविधता दिखाई देगी। तो कमल नयन कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत है। बारिश हो रही है आशू के यहाँ कल से, हमारे यहाँ भी भाई शुरू हो चुकी है। और धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं आवास विकास से, महेश शर्मा बस्ती वाले, क्या बात है, स्वागत है आपका। सच्ची प्रार्थना वो है जो सिर्फ मांगना सिखाए बल्कि जो ना सिर्फ जो मांगना सिखाए बल्कि वो है जो इंसान को भीतर से बेहतरीन बना दे, अहंकार टूट जाए, क्रोध शांत हो जाए और दिल से नफरत मिट कर सच तो ये मिट जाए। और तो सच तो ये है कि जब इंसान खुद को बदलने की प्रार्थना करता है तभी उसकी आत्मा सच में शांत होती है। हम कुछ भी नहीं बिना उस शक्ति के, वो अर्थ है और हम सिर्फ शब्द हैं। ओम नमः शिवाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए हमारे साथ बहुत सारे लोग, जुगल जी भी हैं मध्य प्रदेश से, अब जुगल जी बताएंगे कि इनके यहाँ कैसे मनाई जाती है। तो अगले कॉल का इंतज़ार, चलिए देखते कौन है हमारे साथ। और एक कॉल आ चुका है, आवाज़ सुनते हैं कौन है। हेलो,
2: हाँ हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, आपको नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका शुभ नाम
2: मैम जानवी। मैम आपको भी नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ओके जानवी, जानवी कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: बहराइच रोड गोंडा से मैम।
0: ओ बहराइच रोड गोंडा से, वेलकम। आपका मतलब मुझे लगता है मैं आज पहली बार आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। तो आज आप क्या सुनाना चाहती हैं जानवी? हेलो
2: भाई,
0: हेलो जानवी, क्या सुनाना चाहती हैं आप? तो जानवी की आवाज़ कनेक्ट नहीं हो पा रही, चलिए अगले कॉल से हम लोग कनेक्ट करते हैं। हेलो,
3: हेलो मैम, शुभ संध्या, हैप्पी नागपंचमी।
0: आपको भी नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप बताइए, आप भी आई गुड़िया पिटवाने की नहीं अभी?
3: मैम नहीं आए हैं, रक्षाबंधन में आएंगे।
0: अब यही यही यही होता है कि मतलब वैसे तो त्योहार में अपने मतलब घर जाना रहता है लेकिन जो भाई भाई के लिए बढ़िया वाले त्योहार हो तो उसमें आप आती ही नहीं है।
3: तो मैं अगर घर बुलाया जाए मैकी में तभी तो आए, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए।
0: अरे मतलब इनडायरेक्टली आपने क्या कह दिया, भावनाओं को समझे। तो ये बताइए नागपंचमी कैसी आपने मनाई आज, ये बताइए क्या क्या किया आज?
3: मैं तो व्रत है,
0: मेरा भी आज
3: व्रत है और जो होता है चला आ रहा है परंपरा, उसको निभाए हम।
0: ये बात सही है,
3: दूध चना चढ़ाए, पूजा की भोलेनाथ की।
0: हाँ वो लावा वगैरह भी चढ़ता है।
3: जी
0: क्या बात है। और ये बताइए आज तो बारिश भी हुई, आपके यहाँ हुई कि नहीं?
3: हाँ मैम हो रही थी, अभी भी बूंदी पड़ रही थी, हम निकली है जाके।
0: क्या बात है। तो चलिए हमारी ये बताइए कि अगर आपके यहाँ कोई सांप अपना केस लेके चला है जाए, उसको कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों से, हम ह्यूमन बीइंग से, कि इंसान हमें बहुत परेशान करते हैं, जब देखो उठा के मारने ही लगते हैं, हम जरा से दिख भर जाएं तो क्या आपके हस्बैंड केस लड़ेंगे उनका कि नहीं?
2: तो मैम इतना डरपुड़े हो, अब मैम कल शाम को आंगन में मेरे सांप का छोटा सा बच्चा निकला, चमक पैर के नीचे नहीं पड़ा, वो चमचम चमक रहा था, ब्लैक छोटा सा था और जैसे जैसे तेरा मेरा चल रहा था तो उसको हम उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रहा था, पन्नी पे चढ़ ही नहीं रहा था, तो उसको हम पन्नी से पकड़ के बाहर फेंक के आए।
0: चलिए आपने बचा लिया, तो मतलब आपके हस्बैंड केस नहीं लड़ पाएंगे।
2: तो बेजान से लड़के भी क्या करेंगे, नहीं ऐसे जीव जंतु से लड़के क्या करेंगे।
0: नहीं बिल्कुल सही, और देखिए मतलब ये त्योहार इसीलिए मनाया ही जा रहा है कि भाई बेचारे के पीछे हम लोग, मतलब एक तो जानवर ये भी है, वो क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, अरे बता रहे हैं बिच खोपड़ा, अरे भाई इसका नाम किसने सोच समझ के बिस खोपड़ा रख दिया, सब कहेंगे बड़ा विषैला है, लेकिन सच ये है कि वो विषैला है ही नहीं। आज नागपंचमी के अवसर पे मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि बिष खोपड़ा, जिसका नाम हमने पता नहीं क्या सोच के बिष और खोपड़ा रख दिया है, उसके खोपड़े में किसी तरह का विष नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं अरे उस वो सूंघ ले तो इंसान मर जाए, अरे
2: उसको देख के सब डर जाते हैं।
0: और सच पूछिए तो उस बेचारे के अंदर कोई मतलब किसी तरह का कोई जहर ही नहीं है, किसी भी किताब में आप ढूंढ लीजिए, किसी भी जगह पढ़ लीजिए।
2: मैम आज हमें मालूम चला, ये आप बताइए तब,
0: बिष खोपड़ा में जहर नहीं होता और लोगों ने उसको इतना मार डाला है कि उसकी जनसंख्या एकदम खत्म हो गई है, समझ लीजिए। और मैं आज नाग पंचमी पे बिष खोपड़ा को बचाने का अभियान शुरू करूंगी कि भाई प्लीज उसको मत मारो, वो जहरीला नहीं है। सच में मतलब मुझे याद ही आ गया, तो जैसे आपने स्टोरी बताई तो मुझे याद आया कि हाँ लोग निकलता है तो उसको तुरंत मार डालेंगे, अरे भाई उसको थोड़ा सांस लेने दो, वो बिल्कुल जहरीला नहीं है। और अगर जहरीला होगा तो मुझसे आगे मिले, वो बिल्कुल जहरीला नहीं है, बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, उसको मारने की जरूरत नहीं है। वो हाँ थोड़ा सा डरावना है, थोड़ी सी मतलब शरीर की उसकी बनावट भगवान ने बड़ी बना दी, तो इसमें क्या करे बेचारा, उस गरीब का क्या दोष।
2: हाँ जैसे पहलवान को लोग देख के सब उससे भिड़ते नहीं है, जो भारी भरकम रहता है उससे सब डर ही जाते हैं।
0: हाँ उस बेचारे का क्या दोष, माना कि वो थोड़ा मोटा है तगड़ा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जहरीला है, कृपया उसको बख्श दे, मैं यही कहूंगी। तो चलिए बताइए आज क्या सुनाएंगे आप,
2: भोलेनाथ भी सुना दे, भोलेनाथ का दिन है, भी नाग पंचमी,
0: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है,
2: भोले बाबा का सर्प का मुंड माल है तो उनके आज नाग पंचमी के बारे में। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार भोले जी, बलिहार भोले जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार भोले जी, बलिहार भोले जी, तेरी शीश पे चंदा सागे, तेरी शीश पे चंदा सागे और गले में सर्प बिराजे, तेरी सिर पे बिराजे गंगा, तेरी सिर पे बिराजे गंगा और गंगा की बहधार रे भोले, तेरी गंगा की बहधार रे, तेरी मंद मंद मुस्कन

0: तुझे चाहिए भांग की प्याली, तेरी चाल जब मतवाली, तुझे चाहिए भांग की प्याली, तू बोला मस्त मलंगा, तू बोला मस्त मलंगा, पिए भांग भोले जी, पिए भांग भोले जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार भोले जी, बलिहार भोले जी, तेरी संग में गौर बिराजे, तेरी संग में गौर बिराजे, गोदी में गणपति साजे, तेरी संग में गौर बिराजे, गोदी में गणपति साजे, सारे भक्तों का करो तुम उद्धार भोले जी, उद्धार भोले जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार भोले जी, बलिहार भोले जी। हर हर महादेव।
1: क्या बात है, क्या बात है, और बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस शाम में ये प्यारा सा भजन सुनाया, और शिव को जो विशेषताएं, शिव की विशेषताएं बताते हुए आपने जो चीजें मतलब व्याख्यान की अपने भजन में, क्या कहने
0: बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच। तो भाई प्रीति जी के साथ बात करके मज़ा तो हमेशा ही आता है, और इन्होंने भाई चार चांद लगा दिए, इतना प्यारा सा मतलब जो गाना सुनाया, और ऊपर से अपने घर की सांप की कहानी बताई, क्या कहने। तो है मज़ेदार आप लोग का अंदाज़, और हमारे बीच जितने भी, हाँ आशु जी कह रही इनके घर के सामने बिछकोपड़ा रहता है, आपको बता दी, अब इस बात से आप सबको जागरूक करिएगा कि बिछकोपड़ा जहरीला नहीं होता, उसको मारना नहीं है, नहीं कोई देख ले तो उसका मार कुचल, मतलब कुचल उचल के सब बराबर कर डालते हैं उसको, बड़ी गलत बात है। अरे जानिए, समझिए, ऐसे ही किसी जीव के पीछे पड़ जाएंगे, उसके बेचारे की जनसंख्या के बारे में सोचिए। चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो,
2: शुभ संध्या मैम।
1: शुभ संध्या, आपको नागपंचमी की बहुत शुभकामनाएं।
2: मैं तेज नारायण शुक्ल बोल रहा हूँ
1: जी। अरे तेज जी, कैसे हैं, स्वागत है आपके पास
2: जी। बहुत अच्छा हूँ, फिलहाल अभी एक सर्जरी से निपट के, मतलब इस समय घर हूँ, गाल बेडर में स्टोन था तो मतलब हो गई सर्जरी, सब कुछ हो गया, तो कुछ दिन हुए हैं,
1: मतलब सब कुछ सकुशल है, सब मतलब जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल है।
2: आप लोगों की शुभकामना है, सब अच्छा है,
1: बिल्कुल
2: ऑपरेशन भी बढ़िया हो गया,
1: बिल्कुल ईश्वर आपको बिल्कुल स्वस्थ कर दे, और जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे कर दे। तो मैं आज आपसे बहुत निवेदन तो नहीं करूंगी, जैसा कि आपने बताया अपने बारे में, तो जो भी आपके पास, जैसे कि आप लिखते भी हैं मुझे पता है, और आप गाना भी बहुत सुंदर सुनाते हैं, तो जो आपकी इच्छा है, जो भी मतलब थोड़ा सा
2: जी। पहले थोड़ा सा मैं, जो अभी चूंकि आज नागपंचमी है और अभी चर्चा चल रही थी, और ठीक है जानवरों पे दया करनी चाहिए, सारे जानवर दया के पात्र हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरा निजी आवास तो गोरखपुर है, लेकिन मैं यहाँ फैजाबाद में, ड्यू टू मतलब जैसे मिसेज यहाँ है, ट्रांसफर होके आई तो यहाँ हैं हम लोग, और रहता हूँ मैं, रेंट पे हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले एक सांप निकल आया नीचे, तो नीचे उन जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनके यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं था, तो मतलब वो अपने थे और उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो परेशान हो गए, रोने लगे, फिर मैं गया नीचे, तब आप समझ लीजिए बड़ी मुश्किल से पता चला। फिर मैंने, मेरे मन में, मैं आज तक किसी भी जानवर को मारने की, या मेरे सामने अगर कोई मारता है तो मैं सोचता हूँ चाहे वो जहरीला हो या जैसा भी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जान बच जाए। तो मैंने फोन किया था और वन विभाग में फोन किया, और मैं उस आदमी को जानता हूँ, जब अभी, अभी आपने बिस्कोपड़े का जो जिक्र किया था, एक आदमी के यहाँ निकला था तो वो जिंदा ले गया था, और वो आदमी आता है तो वो मारता नहीं है, वो पकड़ के लेके चला जाता है।
1: क्या बात?
2: लेकिन जी, लेकिन स्थितियाँ कुछ इस तरह बन गई थी कि इन्होंने अपने हस्बैंड को फोन किया, और वहां से उन्होंने कुछ आदमियों को भेजा, कुछ बंगाली थे वो, तो वो आए और उन्होंने सर्च किया और पीछे हट गए, तो हमने कहा क्या बात है, मैं वहीं खड़ा था, तो वो कहा कि बहुत जहरीला सांप है ये, रसेल वाइपर है, और इसको नहीं मतलब हम मतलब पकड़ नहीं पाएंगे, तो हमने कहा यार देखो किसी तरह पकड़ लो, मारना नहीं, तो कहा अगर पकड़ेंगे तो मारना पड़ेगा। तो कुछ बात बताएं थी कि मतलब हम ऐसा भी नहीं कर सकते थे, कई लोगों के जीवन का प्रस्ताव बड़ा विषैला होता है।
1: बिल्कुल सही बात।
2: तो मेरे जी जी तो मेरे ना चाहते हुए भी उसको पकड़ भी लिया गया और मार भी दिया गया। तो उस दिन मेरा मन बहुत खिन्न था। जो तो ये बात हो रही, कभी कभी ऐसी जीवन में चीजें आ जाती
1: है। के अनुसार कभी कभी हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि उस समय लगता है कि नहीं ये चीज, और हाँ ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अपने विचारों पे एकदम दृढ़ हो जाएं, कभी कभी हमें उनके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। लचीलापन जरूरी है। तो अच्छा, और बहुत बढ़िया सी बताई बात आपने
2: जी। बस अब एक, क्योंकि समय भी अब थोड़ा कम है और मैं हालांकि इस तरह की कविताएं लिखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लिखता हूँ। थोड़ा स्पिरिचुअल आज का दिन है तो पूरा उससे कनेक्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ऐसा है जो मतलब मेरी कोशिश है कि यही सुनाऊं। बाकी लिखता तो हर तरीके का हूँ।
1: क्या बात है, स्वागत।
2: तो जी तो मैं सुना रहा हूँ। खुद को देखा और टटोला, खुद को देखा और टटोला, पाया सब कुछ खाली है।
1: क्या बात है।
2: खुद को देखा और टटोला, पाया सब कुछ खाली है, केवल मरण सत्य है अंतिम, बाकी सब कुछ जाली है। केवल मरण सत्य है अंतिम, बाकी सब कुछ जाली है। सोचो सोचो मन के अंदर झांको, ये जीवन कुछ कहता है। सोचो मन के अंदर झांको, ये जीवन कुछ कहता है। चाहे जितना जोड़ो तोड़ो, सुख की चादर मन भर मोड़ो, शेष नहीं कुछ रहता है। अब भी थोड़ा समय है बाकी, अब भी थोड़ा समय है बाकी, परम तत्व स्वीकार करो, भीतर पर ब्रह्म है बैठा, उसको अंगीकार करो। ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर तो नाशवान है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर तो नाशवान है, मिट्टी में मिल जाएगा, धन दौलत सब रिश्ते नाते साथ नहीं कुछ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंट्रास्ट है कि कहते किंतु सभी हैं, लेकिन कहते किंतु सभी हैं, लेकिन है किसने स्वीकार किया। अवसर तो बहुतेरे आए, पर उसका प्रतिकार किया। अभी करेंगे कभी करेंगे, कहते कहते चले गए। अभी करेंगे कभी करेंगे, कहते कहते चले गए। सब जीवन के पीछे भागे और इससे ही चले गए। सब जीवन के पीछे भागे और इससे ही चले गए। और लास्ट में मैं कोशिश करता हूँ हर कविता में कि थोड़ा एक मैसेज कन्वे हो जाए, तो ये मेरी तरफ से है कि अब भाग रहे हो अंधे पथ पर, भाग रहे हो अंधे पथ पर, अब थोड़ा सा रुक जाओ। भाग रहे हो अंधे पथ पर, अब थोड़ा सा रुक जाओ। फल से लदा वृक्ष है कहता, फल से लदा वृक्ष है कहता, अब थोड़ा सा झुक जाओ। ठहरो सोचो रुक कर देखो, साथ बहुत ले जाओगे। ठहरो सोचो रुक कर देखो, साथ बहुत ले जाओगे। खुद को तुमने खोज लिया तो परम सत्य को पाओगे। खुद को तुमने खोज लिया तो परम सत्य को पाओगे।
1: क्या बात है।
2: धन्यवाद। मतलब
1: ये कविता नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि हमारे लिए विजन दिया गया है। क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब सुनने के बाद एक अलग सी ऊर्जा आती गई और एक एक शब्द जैसे लगता है कि घुलता गया, मतलब हमारे जीवन की जैसे लगता है सच्चाई कही जा रही है। क्या कहने। बहुत दिल से आभार। मैं ये कहूंगी कि मतलब आप स्वास्थ्य से मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकले और कितना खूबसूरत आपने जीवन का सार भी बता दिया। बहुत धन्यवाद। तो भाई लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं और मैं किसी भी कॉल को वैसे मैं नेगलेक्ट नहीं करना चाहती। देखते हैं किसका कॉल है और अगले कॉल की ओर रुख करते हैं। और बहुत प्यारी सी कविता हम लोगों ने सुनी और उस कविता ने हमें बिल्कुल महसूस करा दिया कि ये शाम बहुत ख़ास है। तो समय कम है तो जल्दी जल्दी आपके कॉल्स लेने का समय है और देखते हैं अभी किसका कॉल है। एक कॉल जो कंटिन्यूसली आ रहा है।
2: हेलो,
1: सुनते हैं किसकी।
2: हेलो
1: हेलो, शुभ संध्या।
2: गुड इवनिंग।
1: वेरी गुड इवनिंग। आपका शुभ नाम?
2: जी मैं
3: अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
1: जी अनूप जी,
3: मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर।
1: जी जी,
3: डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से तालुका से है ना।
1: असम से कॉल कर रहे हैं जी अनूप
3: जी। जी असम से
1: स्वागत है, स्वागत है आपके पहले तो आवाज का।
3: चल मिनी असम जाबो देशे बोरो दुखिरे, चल मिनी असम जाबो। असम जो है वो तो टी गार्डन एरिया है और खास करके टी तो ज्यादा होता है और टी का जो प्रोडक्शन वो तो एक्सपोर्ट होता है और बाकी हमारे जो असम जो है वो तो क्या कहूँ, मतलब मैचलेस है, है ना।
1: बिल्कुल, और खूबसूरती की बात की जाए तो असम की खूबसूरती, वहाँ की वादियाँ, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का भी, मतलब मैं कहूंगी जो कहते हैं प्रकोप है, वो भी कम नहीं है। अभी हाल ही में असम ने काफी कुछ झेला है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी असम का हाल कैसा है हमारे अपने।
3: अभी फिलहाल लगभग क्या हुआ तो थोड़ा बहुत राहत मिल गए है, थोड़ा बहुत ये हुआ कोई बनना पीड़ित जो है थोड़ा बहुत राहत मिल गया, और ये जो बन्ना के प्रकोप में कुछ लोगों का दिनचर्या तो एकदम क्या हुआ, एक्सट्रीमली बैड हो गया था। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने और किसी नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे प्राण के रिलीफ दिया और प्राण सामग्री जो है वो भेजा और कुछ अनुकूल हुआ।
1: बिल्कुल, प्रकृति का जो कहते हैं ना कि जो रुद्र रूप है वो परेशान करता है, लेकिन हाँ वापस से चीजें फिर से स्थिर होंगी। हम दुआएं करते हैं और यहाँ से जो भी बन पड़ता है वो पूरा, मतलब देश साथ में ही है, एक ही हम लोग। तो ये बताइए आज आप सुनाना क्या चाहते हैं, पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं असम से बात कर रही हूँ। हमारा
3: जी जी जी, हमारे क्या बोले, मतलब हमारे दोस्त जो है अविनाश जी त्रिपुरा से बिलोंग करते है, वो बोला जी आपने इस महफिल में इस प्रोग्राम में क्या बोले भाग लीजिए और बहुत अच्छा लगेगा आपका।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और उम्मीद करूंगी कि मतलब हर मंडे तो आपकी आवाज सुनने को जरूर मिलेगी। तो क्या सुना
3: जी, जी, जी, जो मतलब तो चलिए आज एक गाना जो है वो इतना सुंदर गाना नहीं गा सकते क्योंकि हम बाथरूम सिंगर है, है ना।
1: क्या बात है,
3: और हमारे यहाँ पे तो बारिश हो रहा है, एकदम एक्सट्रीम बारिश हो रहा है, थोड़ा बहुत पंचर जाते हैं तो भी शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही मतलब हो रहा है। तो चलिए शुरू करता हूँ एक गाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।
3: प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो कहे सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, ओ नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बे गाना होता है। ऐसे करके थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया।
1: क्या बात है, पर आगाज इतना बेहतरीन है तो आगे आपकी आवाज में बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। फिलहाल ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं कि आप गाना ही सुनाएं, आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो आप बताना चाहते हैं और लगता है कि हाँ ये लोगों को जाननी चाहिए, कोई कविता है या कोई स्टोरी कुछ।
3: बहुत अच्छा लगा मैम, आपका आवाज भी बहुत अच्छी है और जो आप ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है हमारे जो आकाशवाणी का कोई प्रोग्राम चल रहा है। और ऐसे में आपका जो सर जो है बहुत अच्छे है,
1: बहुत
3: लाजवाब
1: है, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूंगी कि
3: तो चलिए बातचीत को यही पे विराम देता हूँ। बहरहाल आप अच्छे रहिए और हमारे दूसरा भाई बहन अच्छे रहे, ये भगवान से मेरा प्रार्थना है, है ना।
1: बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए।
3: जी जी,
1: क्या बात,
3: ठीक है, चलिए।
1: तो अवनूप जी से बात हुई और बहुत अच्छा लगा और मतलब मुझे बहुत खुशी फील हो रही है कि मैं चाहूँगी कि एक दिन आए जब पूरे 28 राज्य एक साथ मुझे चैट रूम में दिखे, और सिर्फ 28 राज्य ही नहीं, देश विदेश, यानी कि चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मतलब कोई भी देश हो, हम सब एक हो जाएं, क्योंकि जो एक मैसेज है वो यही है कि हम पूरी की जो पूरी दुनिया है वो एक दूसरे से मिलजुल के चलने पे ही निर्भर करती है। ऐसा नहीं कि हम अपनी अपनी दुनिया में जीते रहें, वो तो सभी कर रहे हैं, पर अगर हम एक हो जाएं, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म या कुछ भी हो, अपने विचारों को ही अगर पहुंचा सकें, हाँ भले हम बात ना कर पाएं, अगर हमारे विचार किसी को प्रभावित कर पा रहे हैं या हमारी आवाज़ कुछ भी, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए अगले कॉल की ओर रुक करते हैं, मुझे बहुत खुशी है। और मैं आप सभी से पहले तो इसी समय निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे लिसनर मुझे सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी 6 बजे ठीक लाइव हो जाते हैं हम लोग, तो आप 6 बजे से भी कॉल कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और चलिए अगले कॉल की ओर रुक करते हैं, देखते हैं आवाज़ किसकी सुनने को मिलने वाली है, और लगातार बातों का ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि दिल में जब जज्बात होते हैं तो दूरियां अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी कॉल की बात, वैसे कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, तो कहते हैं ना कि सावन की बूंदें केवल बारिश मात्र नहीं है, सावन की बूंदें केवल बारिश मात्र नहीं है, ये हमारे मन की संवेदना है जिसे हमें सुनना है। तो चलिए अगली आवाज़ सुनते हैं। हेलो हेलो
4: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
4: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, कैसे हैं आप? रईस जी,
4: मैं एकदम ठीक हूँ। आप ठीक हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पहले तो आप बहुत देर में कॉल करते हैं, इसके लिए हम आपसे नाराजगी जताएंगे, लेकिन आज नहीं। क्या सुनाइएगा आज? देखिए, गर्मी दूर हो गई, बारिश अच्छी खासी हो गई, और
4: जी,
1: आपकी रोड पे तो जल का भराव ऐसा खासा रहता है, अच्छा खासा, कि इंसान को तैर के आना पड़े, नाव की व्यवस्था करा दीजिए।
4: बहुत ज्यादा पानी भरता है गेट के पास।
1: हाँ, उधर बहुत पानी, मतलब एक बार तो मैं उस पानी में फंस भी गई थी, तो इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है। चलिए आज क्या सुनाइएगा?
4: बस दो लाइन टूटी फूटी सुना देता हूँ साहब आपको।
1: हाँ, वैसे लाइनें आपकी टूटी फूटी तो कतई नहीं रहती है, ऊर्जा से भरी हुई रहती है, ये हमेशा मुझे दिखा है, तो एनर्जी, जब आपकी आवाज़ सुनती तो मुझे एनर्जी फील होती है। क्या बात है, स्वागत है।
4: कोशिश करता हूँ साहब।
3: मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मैं तो उधर उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। सोचता हूँ मैं अपने हाथ उठाकर, दुआ मांगता मैं जब से तुझसे मोहब्बत में करने लगा, तब से जैसे इबादत में करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई।
1: क्या बात है, फिलहाल आपको शायरी आई कि नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर लगने लगा है कि आप भी सिंगर बन जाएंगे गाते गाते। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बस हमें अपनी शादी के लड्डू भी खिला दीजिए जल्दी से, और इंतजार है हमें, बहुत बहुत दिनों से इंतजार है, इनफैक्ट 2 साल से तो
4: बिल्कुल। आइए, आपका स्वागत है।
1: बिल्कुल, तो चलिए हमारे बहुत प्यारे श्रोता हैं रईस जी, जिनकी आवाज़ सुन के मजा आ गया। चलिए अगले कॉल की ओर रुख करते हैं, देखते हैं किसका कॉल है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आशु जी? बहुत टाइम से कॉल किया आपने, और मैं बिना समय बर्बाद किए आपको शुभकामनाएं दूंगी। और आप क्या सुनाना चाहती हैं? मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप सुनाएं, क्योंकि दो तीन कॉल
5: और भोले के ऊपर ही सुनाएंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है। जी जी, स्वागत है।
5: हमसे चले नसीलबट्टा हमार भोले रे, हमसे चले नसीलबट्टा हमार भोले, सत गोटत उंगली घिस

0: हमार भोले हमसे चले न सिलबट्टा हमार भोले।
1: सिलबट्टा नहीं तो मिक्सी चला लें, भांग पीस के जरूर पिला लें। क्या बात है, बिल्कुल मतलब हमारे लोक गीतों की जो कहे ना कि तुलना ही नहीं है, तुलना ही नहीं है। मैंने एक गाना सुना था, शायद मनोज तिवारी का था या किसी का था, कि एक गणेश के मम्मी तनी पा भर भांग किया दाना। तो वही सिलबट्टे से मुझे याद है। क्या बात है, मुझे मजा आ गया, मजा आ गया। अब आप पीसे या ना पीसे, मैं आपको मिक्सी में कहूंगी पीस के आप जरूर पिलाए।
0: नहीं मैम, रखी हूँ सिलबट्टा।
1: मैं भी रखी हूँ,
0: लेकिन
1: मुझसे सिलबट्टा सच में नहीं चलता।
0: लेकिन मैम उस पर चटनी इतनी पीसते हैं मैम।
1: मैं कभी मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी प्रयास करती हूँ, लेकिन चटनी तक ही, चटनी से आगे नहीं मैं बढ़ पाती। कभी मैंने दाल और इन सब चीजों को पीसने का मतलब आह्वान नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इसका आह्वान करना आसान नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया। हमसे चले ना सिलबट्टा हमार भोले। और चलिए अगले कॉल की तरफ रुक कर लें।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: आकाश,
1: हेलो
2: बोलत वाणी।
1: हेलो नमस्कार, शुभ संध्या, आपका नाम?
2: गलत नंबर है।
1: हेलो, अगले कॉल को मौका देना चाहूंगी। देखिए इतने सारे कॉल हो जाते हैं ना कि आपस में लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते। किसी दिन ये ज़माना मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। क्यों भाई मुस्कुरा कर, आप आज ही देख लीजिए, किसी दिन की क्यों इंतज़ार करना, आज ही देखिए। ये आप पे निर्भर करना चाहता है कि आप मुस्कुराना चाहते हैं या नहीं। हाँ, भावनाओं के कभी कभी हम लोग हो जाते हैं थोड़ा सा उसके आगे हमें झुकना पड़ता है, पर ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों को साथ कैसे रखते हैं। अगले कॉल को देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
3: हेलो
1: हेलो नमस्कार, शुभ संध्या। हेलो, आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट होगी। हेलो
3: हेलो, शुभ संध्या बीना जी।
1: शुभ संध्या, कैसे हैं अनिल जी, स्वागत है आपकी आवाज का। फाइनली आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है। थोड़ा थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि बारिश या किसी चीज से आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है आपकी। अभी भी क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज।
3: आप बताइए। हेलो
1: हेलो,
3: अब आई
1: हाँ अभी आ रही है, थोड़ा मतलब बेटर है पहले से, लेकिन वो साफ आवाज नहीं आ रही जैसे पहले आती थी आपकी। मुझे लग रहा है बारिश की वजह से, थोड़ा मौसम की वजह से नेटवर्क।
3: आप आ रही है?
1: जी जी जी जी अभी आ रही है।
3: हाँ,
1: क्या सुनाइएगा आज आप, मतलब नागपंचमी का अवसर है तो क्या सोच रहे
3: हैं?
1: हेलो, फिर से आवाज डिस्कनेक्ट हुई और फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया अनिल जी का। और मैं चाहूंगी अनिल जी का कॉल आ जाए, क्योंकि अब समय हो चुका है हम लोग के जाने का, विदाई का, और विदाई मतलब कि नेक्स्ट प्रोग्राम के आह्वान का। तो लगातार आज आप लोगों से बात करके मुझे ये लग रहा है कि आज मज़ा बहुत आया, बहुत सारी आवाज़ें, बहुत कुछ सुना, और कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। लग रहा है आज बारिश की बूंदें मेरे बहुत सारे लिसनर्स को मुझसे कनेक्ट नहीं होने देंगी। हेलो हेलो हेलो, तो देखिए घड़ी भी अब इशारा कर रही है आप लोगों से दूर जाने का, और टाइम हो चुका है फरमाइशी का भी, और मैं देखिए कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। तो चलिए अब इस इंतज़ार को यहीं पे विराम लगाते हुए मैं चलती हूँ, आज की शाम से विदा लेती हूँ, क्योंकि जो ये शाम है वो बड़ी ही मतलब बेरहम है, आती है मिलाने के लिए भी और बता भी देती है कि अब जाना भी है। बहुत कम हो पाता है ऐसा कि लगे कि हाँ बस अभी जाना है, रुकना है।
4: गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, शुभ संध्या।
4: हेलो
1: हेलो
4: हेलो, गुड इवनिंग जी, नाम है सुरेश कुमार।
1: गुड इवनिंग सुरेश।

0: जी स्वागत है। और एकदम मतलब चलते चलते आपका कॉल आ गया और मैंने सोचा कि अब देखती हूँ ये कौन से कॉलर हैं। तो
1: चलो रहन दो फिर से ही।
0: तो मैं चाहूंगी
1: समय ना रहते हुए।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, अभी तो 45 हो गया है, 46 हो रहा है फिलहाल। आप अपनी आवाज में जो भी सुनाना चाहते हैं सुना सकते हैं। नागपंचमी की पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बहुत शुभकामनाएं आपको भी।
0: तो आज आप अपनी पुरानी डायरी के पन्नों से कौन सा गाना निकालने वाले हैं हम आपके लिए?
1: कितना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजी का, कितना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजी का, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार, कितना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदा, लाखों हसीन आए जवानी की राह में, तेरे सिवा किसी को न लाया निगाह में, सदियों से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार, कितना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदा, बेखुद बना दिया है मुझे तेरे सलाम में, जन्नत भी मिले तो बिना लुटेरे सामने, ये प्यार वो नशा है के जिसका नहीं उतार, कितना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदा, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। थैंक यू मैम, बहुत जल्दी में इसे सुना दिया है।
0: क्या बात है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये जल्दी हमेशा रहे और ऐसे आप गाना जरूर सुनाएं। मैं तो इंतजार करूंगी। इतना खूबसूरत चलते चलते इतना खूबसूरत नगमा सुनने को मिलेगा। दिल से आभार। बहुत शुक्रिया। इतना शुक्रिया कहूँ वो कम होगा। इतना खूबसूरत कीमती नगमा आपने सुना दिया है, क्या कहने। गाने तो बहुत सुनते हैं हम, लेकिन कुछ कीमती होते हैं वो कीमती नगमों में आपकी आवाज है, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: तो इस अल्प समय का प्रयोग ऐसा हुआ, इतना खास हुआ कि मन खुश हो गया। कितना है मुझे प्यार तुम्हें मेरे राजदार, सूरज फिल्म का ये गाना, 1960 की फिल्म में एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कीमती, ऐसा बेशकीमती हमारे लिए वो है, तोहफा है जिसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान स्लीडी 9.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। आपके साथ लाइव थी आपकी आरजुबीना। अब इजाज़त लेती हूँ, आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसेज मसाला आरजुबीना वाला। कल फिर बात होगी एक कहानी की, एक नगमे की और एक पहचान की। तो चलिए कल के इंतज़ार में, आज के जो कहते हैं ना कि इस शाम को यहीं विराम लगाते हुए आपकी पसंद के गानों को सुनेंगे, आपकी फरमाइश गीत आपके नाम से प्रोग्राम के साथ आरजे सिंपल मौजूद होंगी आपके साथ। तब तक के लिए आरजे बीना को दे इजाज़त, कल मिलेंगे फिर इसी अंदाज़ से।

जी हाँ, ये पैसा गीत हम एंजॉय कर रहे हैं भाई, ऋतिक साहू जी की फरमाइश पर सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। मौसम के हिसाब से बहुत ही प्यारा सा गीत है। बढ़ते हैं अपने अगली फरमाइश की।

0: जी हाँ, और अगली फरमाइश मेरे पास आलोक राजपूत जी की है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: जिंदगी

0: और जी अगली फरमाइश मेरे पास है मुमताज अंसारी जी की, जो हमको सुनते हैं पटेल नगर से। फरमाइश है, तुझे याद न मेरी आई किसी से। अब क्या कहना, ये बरसात का ये प्यारा सा मौसम और फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है भाई, मुमताज जी को कुछ कुछ होता है और याद भी आ रही है। देखते हैं किसकी याद आती है हमारे प्यारे मुमताज जी को।
1: मैं उसको कह दूं अभी जाऊं

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत ने एंजॉय किया मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। अब मोहित जी की तरफ चलते हैं, और सावन का महीना चल रहा है और सावन के झूलों ने आवाज़ दे दी है मोहित जी को। जी हाँ, तो सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश मोहित जी की मालवीय नगर।

जी हाँ, घर वापसी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी सी बात है। और अब चलते हैं श्रीमती शशि सिंह जी की फरमाइश, और उन्होंने गीत भेजा है जो उनकी तमन्ना है, बर्बाद हो जा तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे। बहुत ही प्यारा गीत, श्रीमती शशि सिंह जी की फरमाइश।

यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे। और अब चलते हैं भाई श्री धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश है जो सुनते हैं आवास विकास से, और गीत उन्होंने भेजा है बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थीं, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। बहुत ही प्यारा सा गीत श्री धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश।

0: नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। खतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू।

0: और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
5: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कोलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट। हर घर तिरंगा।
6: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
7: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल धन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शेयर।

जी हाँ, और अब बढ़ते हैं भाई हमारी फरमाइश की तरफ, और वो हमारे लिंक में नहीं थी, तो भाई क्षमा चाहेंगे आशु मिश्रा जी आपसे, आपको प्रणाम चरण स्पर्श और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से। और अब आपका गीत बजाते हैं, सावन का महीना पवन करे शोर, और इसके पश्चात प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश है। जी हाँ, वो इसके तत्काल पश्चात।

जी हाँ बिल्कुल, जियरा उसी प्रकार से नाच रहा है जैसे मन में मोर नाच रहा है। और अब चलते हैं प्रीति शुक्ला जी की तरफ, फरमाइश है सावन के पड़ गए झूले। जी हाँ, तो अब सावन में झूले पड़ते हैं और बहुत ही प्यारी सी फरमाइश प्रीति जी।

जी हाँ, और भाई धर्मेंद्र मोहन जी, आपको बताएं कि आपका गाना हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, हम प्ले कर चुके हैं। और अब चलते हैं राजेश सिंह जी की फरमाइश पर, जो सुनते हैं मालवीय नगर से, बहुत ही जानकार और पेश होता तन्हा मैं अकेला।

जी हाँ, और अब चलते हैं अपने दर्द कुमार जी उर्फ सुरेश कुमार जी की तरफ। जब जब फुल खिले का ये प्यारा सा गीत है, एक था गुल और एक थी बुलबुल, रफ़ी जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़।

जी हाँ, प्यार गुलोल बुलबुल सा करना, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश हमने सुनी दर्ज कुमार जी की। आप फरमाइश पर चलते हैं। इम्तियाज जी जो जब आते हैं तो एक शानदार गीत लेकर आते हैं, बहुत ही प्यारा गीत लेकर आए हैं, गुज्जू पटाखा। वास्तव में आपके माध्यम से अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिलते हैं। धन्यवाद इम्तियाज जी आपके।

जी हाँ, आप चलते हैं भाई। भारत में बहुत ही लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, और क्रिकेट लवर जी कहती हैं मेरी विनती सुनो राधा रानी जी। हाँ बिल्कुल, आपकी विनती आज के दिन राधा रानी।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें, आदाब आप सभी को। नाग पंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं उपस्थित हूँ आप सभी के साथ आपके ही कार्यक्रम बहारे गजल में। और आज जिस कलमकार पर हम करेंगे चर्चा, उनका नाम आप सभी ने सुना होगा, अगर नाम नहीं सुना होगा तो उनके द्वारा लिखी हुई गजलें, उनके द्वारा लिखे हुए गीत आप तक पहुंचे होंगे बिल्कुल। और नाम है उनका कैफी आजमी। एक ऐसा नाम जो इल्म से लेकर फिल्म तक की दुनिया में, मुशायरों से लेकर तक फिल्म की दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत सा नाम रहा। उन्होंने कहा कि बहारों मेरा जीवन भी संवारो, बहारों मेरा जीवन भी संवारो, कोई आए कहीं से यूं पुकारो, तुम्ही से दिल ने सीखा है तड़पना, तुम्ही से दिल ने सीखा है तड़पना, तुम्ही को दोष दूंगी ऐ नजारों, सजाओ कोई कजरा लाओ गजरा, लचकती डालियों तुम फूलवारो, रचाओ मेरे इन हाथों में मेहंदी, सजाओ मांग मेरी या सिधारो, न जाने किसका साया दिल से गुजरा, जरा आवाज देना राजदारो। और यही है जो लिखते हैं, जिनकी लिखी हुई गजल को जगजीत सिंह साहब ने गाया, और वो गजल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जी हाँ, आइए तो कैफी आदमी साहब की जिंदगी की शुरुआत करते हैं उन्हीं की प्यारी सी गजल के साथ, जिसको गाया है जगजीत सिंह ने अपनी मखमली से आवाज में। आइए आपको दो गजलें सुनाते हैं, और ये दोनों गजलें कैफी आजमी साहब ने लिखी है, और इसके बाद आपसे मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 एफएम में है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। नागेश्वर धाकर जी, स्वागत है आपका आपके ही कार्यक्रम में। और अब चलते हैं, आपको कैफी आजमी साहब की दुनिया में लेकर चलने का वक्त आ चुका है, और दो गजलें जो कैफी आजमी साहब ने लिखी और उनको जगजीत सिंह साहब ने गाया।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है,

जी हाँ, और एक प्यारी सी गज़ल जो लिखी है कैफी आदमी साहब ने, हो सकता है आपने इस गज़ल को पहले सुना हो या हो सकता है आप पहली बार सुनने जा रहे हों। इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े। जी हाँ, बगैर किसी तमहीद के, बिना किसी प्रस्तावना के कैफी आदमी के द्वारा लिखी हुई ये गज़ल हम आपको सुना रहे हैं, जिसे बेगम अख्तर ने अपनी आवाज़ से सजाया है। उम्मीद है ये गज़ल आपको पसंद आएगी, और जरा बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि आपने पहले से सुन रखी थी या पहली बार सुनी, और कैसी लगी आपको ये प्यारी सी गज़ल।

इनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। 20वीं सदी के महान उर्दू शायर, प्रगतिशील लेखक और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार कैफी आजमी साहब। रियल नाम जो उनके माता पिता ने रखा था, उनका नाम था सैयद अतहर हुसैन रिजवी। पुनः एक बार नाम सुने, सैयद अतहर हुसैन रिजवी, ये इनका वास्तविक नाम था। और उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए, अपने गीतों के जरिए, अपनी गजलों के जरिए, समाज के दो वर्ग होते हैं, एक वो जिसका शोषण किया जाता है और एक वो जिसका शोषण होता है। तो जिसका शोषण होता है उसके खिलाफ उठने वाली बुलंद आवाज में से एक आवाज कैफी आजमी साहब की भी रही। 14 जनवरी 1919 यानी जब हमारा देश गुलाम था, तो इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, एक गांव है मिजवा। और चूंकि एक जमींदार परिवार से थे, समृद्ध परिवार था, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। और बड़े भाई जो थे वो भी शायरी इत्यादि मंचों पर जाना, मुशायरों की दुनिया में शिरकत होती थी, रहती थी। और आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि उन्होंने अपनी पहली गजल जब लिखी थी तो उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष की थी। लेकिन हुआ क्या कि समाज में जो विचारों को देखते हुए जो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उस भावना ने उनको कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचार से जोड़ा। और वे पार्टी का अखबार था जिसका नाम था कौमी जंग, इसके लिए वो मुंबई गए। उनका मुख्य उद्देश्य वहां पर उस पत्रिका के लिए कुछ लिखना होता था, लेकिन शायद विधाता को कुछ और मंजूर था। और जब वो पहुंचे मुंबई तो भाई लिखते थे ही, उसके पश्चात धीरे धीरे फिल्मों में आना हो गया। और कागज के फूल, अगर आपने फिल्म देखी हो तो उन्होंने लिखा है उसको हकीकत, और हीर रांझा, पाकीजा जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे इन्होंने। अभी हकीकत फिल्म का एक गीत आपको सुनाएंगे जिसे 4 गायकों ने मिलकर गाया है। और विवाह जो उनका हुआ वो शौकत आजमी के साथ हुआ, और उस समय वो रंगमंच की और फिल्म जगत की बहुत ही प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी। और उनकी बेटी का नाम आप सभी जानते होंगे, जी हाँ, उनकी बेटी का नाम है शबाना आजमी, जिनके पति हैं जावेद अख्तर। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया, साहित्य अकादमी का अवार्ड दिया, और लोगों ने के दिल में उनके लिए अपनी एक अलग जगह बनी। उन्होंने अपनी गीतों के माध्यम से, अपनी गजलों के माध्यम से एक इतिहास बना डाला खुद का। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। तो चूंकि जब देशभक्ति में थे, गरीबों का, मजलूमों का जुल्म होते हुए देखते थे, और जहाँ हो सकता था वहाँ विरोध करते थे, और नहीं तो लेखनी में तो तलवार से ज़्यादा ताकत है, ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपनी कलम भी उठाई और लिखा मजलूमों के पक्ष में। जी हाँ, हमारे साथ महेंद्र दीपेन जी हैं, और लिखते आज मन सो शुभ रात्रि। अरे अरे अरे नहीं, शुभ रात्रि नहीं, अरे अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं भाई, शुभ रात्रि कहने का अधिकार हमको है, और आपकी आवाज़ का जादू यूं ही बरकरार रहे। चांद की ठंडी रोशनी जैसी आपकी बातें दिल को सुकून देती हैं। तारे गिनते गिनते ख्याल आया, क्यों ना आज आपको दिल से शुभ रात्रि कहा जाए। जी नहीं, लेकिन ये शुभ रात्रि हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैं साथ श्रीमती सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको। शुभ संध्या सर जी, आपको लखबीर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी, और नागपंचमी की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आइए अब आपको ले चलते हैं कैफी आजमी के द्वारा लिखी हुई एक और गजल की तरफ, जो उन्होंने लिखी थी फिल्म हकीकत के लिए।
अगर दिल से सुनेंगे तो आपको ये गजल बेहद पसंद आएगी। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 9.6 एफएम है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा कैफी आजमी के द्वारा लिखा गया कर रहा है।

जी हाँ, जब कभी भी रफ़ी जी के इस प्यारे से नगमे को सुनता हूँ तो दर्द कुमार जी याद आ जाते हैं। आज कल में ढल गया, या तो उनके गले से बहुत प्यारा लगता है या तो फिर यहाँ बहुत प्यारा लगता है। मैं साथ झा जी हैं भाई, शुभ संध्या आपको भी, और सविता शास्त्री जी को ये नगमा पसंद आया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। हम बात कर रहे थे कैफी आजमी साहब के बारे में। उन्होंने लिखा कि हाथ आकर लगा गया कोई, हाथ आकर लगा गया कोई, मेरा छप्पर उठा गया कोई, हाथ आकर लगा गया कोई, मेरा छप्पर उठा गया कोई, लग गया एक मशीन में मैं भी। देखिए, गांव से शहर आए हैं, आप सभी को ने बताया कि आजमगढ़ से मुंबई गए थे। लग गया एक मशीन में मैं भी, मुझे क्षमा करेंगे बड़े लोग, लेकिन जितने ही शहर बड़े होते जाते हैं थोड़ी सी इंसानियत कम होती हुई चली जाती है। थोड़ा सा मतलब मुझको लगता है कि जो एक गांव का एक अपनापन है, जो वहाँ के लड़ाई झगड़े भी हैं, आपसी मतभेद भी हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर गांव में कहीं बारात आ गई तो फिर ये होता है कि भाई देखो, हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। मतलब सब लोग मिल करके बैठा करके खाना खिलाते थे, जब ये बुफे सिस्टम नहीं था कि खड़े होकर खाया जाए। तो गांव की ज़िंदगी अपनी एक ज़िंदगी है, लेकिन अब तो भाई शहर की ओर रवानगी है। तो उन्होंने लिखा कि लग गया एक मशीन में मैं भी, शहर में लेके आ गया कोई, मैं खड़ा था कि पीठ पर मेरी इश्तिहार एक लगा गया कोई। मतलब इस तरह, मतलब आप बिकने के सामान हो गए। ये सदी धूप को तरसती है, जैसे सूरज को खा गया कोई। ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। अब वो अरमान है न वो सपने, अब वो अरमान है न वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई। वो गए जब से ऐसा लगता है, छोटा मोटा खुदा गया कोई। मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया कोई। मतलब जब गांव से कोई व्यक्ति अपना सा आता है तो लगता है कि हमारा बचपन भी अपने साथ लेकर आ गया है। महसूस किया होगा आपने। आप अपने शहर की कद्र ना करते हो, लेकिन अगर आप किसी ट्रेन में कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, सामने वाले से बातचीत हो गई, भाई कहाँ के हैं, और ये पता चल जाता है कि ये हमारे शहर के हैं, तो मेलजोल बढ़ता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो अगर आप अपने राज्य के बाहर हैं और आपके राज्य का कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आपको अपना सा लगता है। कि आप यूपी से हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, आप बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, ऐसा महसूस किया होगा। और अगर आप कहीं विदेश जाएं तो वहाँ पर यहाँ की जो बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं कि वो उस ये जाति के, वो उस धर्म के, वो उस कौम के, अगर आप कहीं विदेश में चले गए, वहाँ पर मुलाकात हुई आपसे, अरे क्या आप भारतीय हैं, आर यू इंडियन, मी टू, मतलब हम जितना ही ऊँचा उड़ते हैं हमारे सोच को उतने ही बड़े पंख लग जाते हैं। जी हाँ, बात मुझे याद आ गई, रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में गज़लें बहुत कम गाईं, लेकिन जो गाईं वो बेशुमार गाईं। मैं बात जब कर रहा था आजकल में ढल गया, तो मुझे याद आया कि कभी कभी इंसान की अपनी ज़िंदगी से मुलाकात होती है। मतलब हम स्वयं से ही बहुत दिनों तक अपरिचित रहते हैं, और जब परिचित होते हैं तो ऐसा होता है कि अच्छा हम ये थे। मतलब हम आप कभी मिलकर विचार करें, बैठें और सोचें
तो शायद हम अपने से ही अपने आप को ही नहीं जान पा रहे कि हाँ अच्छा ये इट्स आई, ये मैं हूँ, या ये मैं हूँ, या क्या हूँ मैं। तो खुद से मुलाकात, अपनी ज़िंदगी से मुलाकात बहुत बड़ी बात होती है और ये कभी कभी हो पाती है। एक गज़ल मुझको याद आती है, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। बहुत दिनों के बाद ये प्यारी सी गज़ल मेरे जहन में आई और मुझको लगा कि ये गज़ल आपको सुनानी चाहिए, आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। तो लीजिए अब आपको सुनाते हैं रफ़ी जी की आवाज़ में प्यारी सी गज़ल, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। फिल्म का नाम है पालकी, बहुत ही उम्दा गज़ल। अगर आप ध्यान से इसके शब्दों को सुनेंगे तो आपको लगेगा इस गज़ल का लफ्ज़ो लफ्ज़ आपके दिल में उतरता हुआ चला जा रहा है। जी हाँ, महसूस करके सुनिए इस प्यारी सी गज़ल को। आपसे मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार, सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गुना शहर की धड़कन।

जी हाँ, और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो एक बार पुनः आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ सविता शास्त्री जी हैं, चरणस्पर्श आपको। जी हाँ, आशु मिश्रा जी प्रणाम करते हैं आपको, चरणस्पर्श। आपको भी नागपंचमी की शुभकामनाएं। और धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मनुष्य ओम नमः शिवाय, नमो नमः। गजलों की दुनिया में हमारा आपका स्वागत है। सर जी मेरे दोस्त, आपकी मेरी जिंदगी सवारी है, ऐसे ही हंसते ही मुस्कुराते रहना। बहुत ही धन्यवाद भाई आपको। और जी, अब तो त्योहारों का सीजन शुरू हो गया। आज हमने पंचमी मनाई है। कुछ दिन बाद इस दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों में सबसे अच्छे रिश्तों में भाई बहन का एक रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो उस रिश्ते की सौगात लिए रक्षाबंधन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसके पश्चात माताएं अपने पुत्रों के लिए षष्ठी का व्रत रखती हैं। और इसके पश्चात फिर 16 कलाओं से विभूषित भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी हमारे दरवाजे पर है जी, कुछ ही दूर है। तो उम्मीद करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से हमने बनाया, आज नागपंचमी मनाई, गुड़िया भी मनाई, और ये त्यौहार हमारी जिंदगी में जो त्यौहार हैं वो खुशियाँ लेकर आते रहें। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। जी हाँ, आसमान वाले ने चाहा तो फिर आपसे मुलाकात होगी कल आपके ही कार्यक्रम बाहर एक गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी सोलमेट्स। गीता और विपिन बहुत उत्साहित थे। आज उनका बेटा पराग अपनी गर्लफ्रेंड भव्या से उन लोगों को मिलवाने वाला था। पराग से 5 साल छोटी वन्या अभी पढ़ रही थी। पराग इंजीनियर था, भव्या उसकी कलीग थी। आधुनिक सोच वाले गीता और विपिन को पराग की पसंद की लड़की को बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। भव्या के माता पिता की कुछ वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जालंधर में रह रहे उसके मामा मामी ही उसके गार्जियन थे। भव्या मुंबई के अंधेरी में 4 लड़कियों के साथ एक फ्लैट शेयर करके रहती थी। गीता ने बड़े मन से भव्या के लिए लंच तैयार किया था। गीता, विपिन और वन्या फिगर के प्रति एकदम सचेत रहते थे। गीता और विपिन तो फिगर और स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग थे कि उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता था कि उनके इतने बड़े बच्चे हैं। तीनों एकदम स्लिम ट्रिम, लेकिन जंक फूड के शौकीन पराग ने बाहर का खाना खा खा कर काफी वजन बढ़ा लिया था, जिसके लिए तीनों उसे टोकते रहते थे। गीता ने तो मजाक मजाक में कई बार कहा था, पराग, आजकल की लड़कियां भी मोटे लड़कों को पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए लड़की कहां से ढूंढूंगी, तुम एक काम करना, खुद ही ढूंढ लेना। विपिन का भी यही कहना था, कुछ एक्सरसाइज करो, शरीर फैलता जा रहा है, शादी ब्याह सब होना बाकी है। लेकिन पराग के कान पर कभी जू नहीं रखती थी। अब जब शर्माते हुए पराग ने पिछले हफ्ते भव्या के बारे में बताया तो सब एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। बच्चों से फ्रैंक गीता ने कहा, तुम्हें कैसे मिल गई गर्लफ्रेंड? पराग ने हंसकर कहा, बस मिल गई, आप बेकार ही मुझे इतने दिनों से ताने मार रही थीं। और आज संडे को पराग भव्या को लेकर आ रहा था। पराग ने गीता से पूछा था, मॉम, आप अपनी बहू में कौन सी क्वालिटीज देखना चाहती हैं? गीता बेटे के सिर पर हाथ फेर कर बोली थी, बस तुम्हारे जैसी। तो मॉम, बी हैप्पी, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। तीनों पराग और भव्या का इंतजार कर रहे थे। मॉडर्न गीता टॉप और जीन्स में थी। डोरबेल बजी। अधीरता से गीता ने ही दरवाजा खोला। पराग जिस पर्सनालिटी के साथ अंदर आया, गीता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने बाहर झांका, क्या भव्या इनके पीछे है? लेकिन बस वही दोनों वहां खड़े थे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है सोलमेट्स। अब तक आपने सुना गीता और विपिन फिटनेस फ्रीक्स थे, लेकिन उनका बेटा पराग फास्ट फूड का शौकीन गोल मटोल। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे मिलवाने लाने वाला था। सबने खूब तैयारी की थी और जब पराग की गर्लफ्रेंड भव्या उनके सामने आई तो वो लोग देखते ही रह गए। अब आगे होने वाले बहू को देख गीता के चेहरे के रंग उड़ गए। लगा पराग ने ठीक ही कहा था, वो बिल्कुल उसके जैसी ही तो थी, एकदम गोरी गोल मटोल, साफ साफ कहा जाए तो एक मोटी लड़की। वो मुस्कुराते हुए सबको हाय हेलो कर रही थी। विपिन और वन्या भी बुत बने खड़े थे। पराग ने गला खखारा और कहा, डैड, मॉम, वन्या, ये है भव्या। विपिन ने सबसे पहले अपने आप को सामान्य किया और मुस्कुराते हुए उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहा। वन्या भी भव्या के साथ ही बैठ गई। गीता को अपने आप को संभालने में काफी समय लगा। गीता ने औपचारिक हालचाल के बाद पूछा, क्या लोगी भव्या, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? मॉम, कुछ ठंडा, भव्या ने कहा। गीता किचन में गई और ट्रे में सबके लिए नींबू पानी, मिठाई, फ्रूट्स और कुछ नाश्ता ले आई। भव्या से बातें होती रहीं। गीता ने ट्रे उसकी तरफ खिसकाई, कहा, लो बेटा कुछ खाओ। हाँ मॉम, भूख तो लगी है, आज संडे था, सब फ्रेंड्स सो रही थीं, कुछ नाश्ता नहीं किया अभी तक, बस एक सैंडविच और दूध पीकर चली थी, अंधेरी से ठाणे आने में वो भी हजम हो गया। हंसकर उसने मिठाई खानी शुरू कर दी। पराग ने भी उसका साथ दिया। विपिन और गीता की नजरें मिली। विपिन आंखों ही आंखों में हंस दिए। नाश्ता खत्म होने तक भव्या सबसे फ्री हो चुकी थी, खुलकर हंस बोल रही थी। घर में एक रौनक सी थी। वन्या भव्या को पूरा फ्लैट दिखाकर अपने रूम में बैठाकर बातें करने लगी। मूवी, म्यूजिक, कॉलेज, ऑफिस, सबकी खूब बातें होती रहीं। गीता लंच की तैयारी के लिए किचन में गई तो भव्या भी आ गई। मॉम, कुछ हेल्प करूं? भव्या बोली, नहीं नहीं, तुम बैठो, गीता ने कहा। मॉम, मिलकर करते हैं ना? फिर अपने आप ही साइड में रखी प्लेट उठाकर सलाद काटने लगी। विपिन भी किचन में आ गए थे। भव्या हंसते हुए बोली, मॉम आपको पता है मुझे सलाद बिल्कुल पसंद नहीं। गीता ने पूछा, क्यों? मुझे तो सॉलिड चीजें खानी पसंद है, ये सलाद वाला तो डाइटिंग वालों की चीज लगती है मुझे। मॉम आप तीनों कितने स्लिम हैं, मैं और पराग तो अलग ही दिख रहे हैं घर में, कहकर हंसने लगी भव्या। गीता हैरान थी, क्या है ये लड़की, अपने मोटापे पर कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सोलमेट्स। अब तक आपने सुना गीता, विपिन और उनकी बेटी वन्या, अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले परफेक्ट फिगर के लोग थे। लेकिन उनका बेटा पराग फास्ट फूड का शौकीन मोटा लड़का था। और उस दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को उन लोगों से मिलवाने लाया तो वो भी बिल्कुल उसी के जैसी थी। शुरू में तो गीता और विपिन को झटका लगा, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला क्योंकि आखिर वो उनके बेटे की पसंद थी। और काफी बातचीत होने के बाद भव्या उनसे काफी घुलमिल भी गई। अब आगे भव्या ने फिर कहा, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है मॉम। मम्मी पापा को भी खाने पीने का बहुत शौक था, कहते हुए भव्या थोड़ी उदास हुई। इतने में अंदर आते हुए पराग ने पूछा, मॉम क्या बनाया है? छोले, पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रायता, बस अब रोटी बना रही हूं, गीता ने कहा। भव्या ने चहक कर कहा, मॉम पूरी बनाइए ना, इस खाने के साथ गरम गरम पूरी कितनी अच्छी लगेगी। गीता चौंकी, उसे झटका सा लगा, सोचा खुद पूरी जैसी क्यों हो गई है ये लड़की, अब समझ में आ रहा है। पराग भी कहने लगा, हाँ मॉम पूरी बनाओ ना। वन्या भी आ गई किचन में, बोली, मॉम मैं तो रोटी ही खाऊंगी। गीता ने कहा, ठीक है इन दोनों के लिए पूरी बना देती हूँ। गीता ने वन्या की हेल्प से खाना टेबल पर लगाया। गीता, विपिन और वन्या ने दो दो फुलके खाए। पराग और भव्या पूरी पर पूरी साफ करते रहे। गीता ने दोनों को देखा, कैसे लग रहे हैं दोनों, शौक से खाते हुए मोटे गोल मटोल बच्चे, इनकी शादी होगी तो कैसे लगेंगे दोनों, इस लड़की को फिगर से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या होगा इसका आगे। गीता मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचती रही। सब खाना खाकर उठ गए, बातें होती रही। फिर भव्या ने कहा, अच्छा मॉम अब मैं चलूंगी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अपना बैग उठा लिया। फिर वन्या को गले लगाकर बाय बोला और गीता और विपिन को बाय मॉम बाय डैड बोलकर मुस्कुराती हुई आत्मविश्वास से भरे कदमों से

चली गई। पराग से बस मुस्कुराहट का ही आदान प्रदान हुआ। उसके जाने के बाद जब सब बैठे तो पराग ने झिझकते हुए पूछा, मॉम, डैड, वन्या, कैसी लगी भाव्या? गीता तो कुछ बोल नहीं पाई, विपिन ने कहा। स्वभाव अच्छा लगा। वन्या पराग को छेड़ते हुए हंसकर बोली, भैया, जैसा नाम है वैसी ही भव्य पर्सनालिटी है, मुझे तो अच्छी लगी। गीता चुप थी। पराग ने कहा, आप तो कुछ बोलो मॉम। गीता ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, तुम्हें पसंद है ना? बस मेरे लिए यही जरूरी है कि तुम खुश हो। अब शादी कब करनी है बताओ, इसके मामा मामी से फोन पर बात कर लेती हूँ। पराग ने जींस की जेब से झट से एक पेपर निकाल कर दिया, कहा, ये है उसके मामा का फोन नंबर। विपिन को हंसी आ गई, वाह बेटा, बहुत जल्दी है शादी की। फिर सब अपने अपने रूम में थोड़ा आराम करने चले गए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सोलमेट्स। अब तक आपने सुना पराग अपनी गर्लफ्रेंड भव्या को घर पे मिलवाने लाया था। हर घर का सपना होता है कि उनकी बहू सुंदर हो, स्लिम ट्रिम हो, स्मार्ट हो, पर भव्या बिल्कुल पराग की मैच थी। घोल मटोल और खाने की शौकीन, लेकिन स्वभाव से बहुत प्यारी थी, इसलिए घर वाले शादी के लिए तैयार हो गए। अब आगे विपिन ने बराबर में लेटी हुई गीता से पूछा, क्या हुआ, पसंद नहीं आई भव्या? जानता हूं क्यों, तुम्हें बेडॉल फिगर पसंद नहीं है ना, पराग भी तो स्लिम ट्रिम नहीं है। कुछ तो बोलो गीता, चुप क्यों हो इतनी? रोआसी हो गई थी गीता। क्या सोचा था, क्या हो गया, हमेशा एक फिगर कॉन्शियस स्मार्ट सी बहू का सपना देखती आई हूँ। मेरी सहेलियां फिटनेस के प्रति मेरा शौक देखकर कहती हैं, गीता तुम तो जरूर एक मॉडल जैसी बहू लाओगी ढूंढकर। मैंने भी गर्व से हाँ में गर्दन हिलाई है हमेशा। अब इस उम्र में भी मैं फिटनेस का इतना ध्यान रखती हूँ और ये लड़की तो जैसे फिटनेस और फिगर जैसे शब्द ही नहीं जानती, और उस पर कितने गर्व से बता रही थी कि उसे खाने पीने का शौक है। मैं तो पराग के मोटापे पर गुस्सा होती थी और बहू भी मोटी। मेरी सहेलियां मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। कहते कहते उसका मुंह लटक गया। विपिन ने शांत और प्यार भरे स्वर में कहा, अरे प्यार से समझाएंगे तो ध्यान रखना सीख जाएगी सेहत का। ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, अकेली जी रही है। हमारे साथ रहेगी तो प्यार से धीरे धीरे सब सिखा देंगे। तुम दिल छोटा मत करो, स्वभाव बहुत अच्छा है उसका। बस दिन बीत रहे थे। दिन में एक बार तो भव्या गीता को जरूर फोन करती, हाल चाल पूछती। गीता को अच्छा लगता, वन्या से तो वो अक्सर मैसेज में चैटिंग करती रहती। विपिन ने भव्या के मामा अनिल से दोनों के विवाह के बारे में बात कर ली थी। भव्या का स्वभाव तो सबको अच्छा लगा ही था, बस गीता को जैसी स्लिम बहू चाहिए थी भव्या उस कसौटी पर खरी नहीं उतर रही थी। एक महीने बाद सगाई का समय रखा गया। विपिन ने गीता से कहा, अपनी फ्रेंड लिस्ट बना लो। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स को नहीं बुलाऊंगी, सीधा शादी में ही बुलाऊंगी, नहीं तो सगाई से शादी तक ताने मार मार कर मेरा दिमाग खराब करती रहेंगी। बस सगाई की मिठाई भिजवा दूंगी सबके घर, गीता बोली। सब थोड़ी बहुत तैयारियों में व्यस्त हो गए। अनिल अपनी पत्नी रेखा के साथ आकर एक होटल में रुके। विपिन और गीता ने उन्हें अपने घर पर ही रुकने का आग्रह किया, लेकिन संकोचवश वो होटल में ही रुके। सबको एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा। गीता ने किसी सहेली को नहीं बुलाया। तैयार होकर भव्या अच्छी लग रही थी, चेहरा काफी आकर्षक था उसका। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। सगाई हो गई। अनिल और रेखा भव्या के भावी ससुराल वालों का व्यवहार देखकर बहुत खुश थे। शादी की तारीख 2 महीने बाद की पक्की हो गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सोलमेट्स। अब तक आपने सुना विपिन और गीता के बेटे पराग ने अपने ही जैसी एक मोटी लड़की को अपना जीवन साथी चुना। परिवार का सिर्फ ये सोचना था कि बेटा जिसके साथ खुश है वो भी उस लड़की के साथ उसकी शादी करने के लिए खुश है। बस गीता को उसके मोटापे से थोड़ी शर्म आ रही थी और इसीलिए उसने सगाई में अपनी किसी भी फ्रेंड को नहीं बुलाया। सगाई हो गई। अब आगे शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। भव्या और पराग वीकेंड में ही फ्री होकर शॉपिंग कर पाते। भव्या सैटरडे को सुबह आती, पूरा दिन शॉपिंग होती। एक संडे पूरा परिवार शॉपिंग पर निकला। विपिन ने कहा, पराग चलो हम दोनों चलकर कार्ड देखाते हैं, तब तक ये तीनों ज्वेलरी का काम देख लेंगे। विपिन और पराग चले गए। ज्वेलरी की शॉप से जब तीनों निकली तो एक आवारा सा लड़का वन्या की कमर को बदतमीजी से छूकर बढ़ा तो वन्या चिल्लाई, बेशरम, तमीज नहीं है क्या? भव्या फौरन बोली, क्या हुआ वन्या? उस लड़के ने बदतमीजी की है। भव्या ने आओ देखा ना ताओ फौरन भागी और लड़के की कमर पर पीछे से एक हाथ मारा। लड़का संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। भव्या जोर से चिल्लाई, बदतमीजी करता है। लड़का उठने की कोशिश कर रहा था, भव्या ने फिर से धक्का दिया। लड़के की चीख निकल गई, वो हिल भी नहीं सका। भव्या जोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प। तुरंत लोग इकट्ठे हो गए। भव्या की बात सुनकर लड़के को पीटने लगे। एक पुलिस वाला भी आ गया और लड़के को दो डंडे लगाकर जीप में बिठा लिया। पूरे प्रकरण में गीता और वन्या हक्की बक्की खड़ी रहीं। देखते ही देखते भव्या ने जो किया था दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। भव्या को शाबाशी देते हुए लोग आजकल लड़कों की बढ़ती बदतमीजी पर बात करते हुए इधर उधर हो गए। गीता ने देखा किसी की नजरों में भव्या के लिए उपहास नहीं था, सबकी नजरों में उसके लिए तारीफ थी। भव्या ने गीता को जैसे सपने से जगाया, मॉम ठीक किया ना? गीता उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना ही बोल पाई, वेल डन भव्या, शाबाश। वन्या तो भव्या से सड़क पर ही चिपट गई, आप कितनी स्ट्रॉन्ग हो, वो तो मुझे देखकर ही पता चलता है, कहकर भव्या हंस दी। इतने में विपिन और पराग भी आ गए। गाड़ी में बैठकर वन्या ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो वो हैरान रह गए। विपिन ने भी कहा, वेल डन भव्या। पराग ने हंसकर उसे छेड़ा, बेचारा लड़का, सब हंस पड़े। गीता को तो आज इतना प्यार आ रहा था भव्या पर कि उसका मन हो रहा था यही उसे गले लगा ले। लग रहा था बेकार में अपने मन को इतने दिनों से छोटा कर रखा है, वो जैसी भी है बहुत अच्छी है, मोटापे का क्या है, धीरे धीरे उसे प्यार से समझाकर सेहत के प्रति सजग बना देगी। और वैसे पराग को भी कहां रोक पाती है लापरवाही से, अब जैसा बेटा वैसी बहू है तो दुख किस बात का। अब वो शान से भव्या को अपनी सहेलियों से मिलवाने के लिए उंगलियों पर शादी में बचे दिन गिन रही थी। आज पहली बार उसे अपनी मोटी बहू पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे वो उसके बेटे की परफेक्ट सोलमेट नजर आ रही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी सोलमेट्स। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: तेरा नाम लूं तो सुकून आ जाता है, जैसे भीड़ में कोई अपना मिल जाता है। सोचूं जब भी तेरे साथ की बातें, दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। तू साथ हो तो मुश्किल भी आसान लगे, तेरे बिना हर खुशी भी सुनसान लगे। ये दिल सिर्फ तुझसे जुड़ना चाहता है, बाकी दुनिया तो सब मेहमान लगे।
3: तेरी यादों का मौसम दिल पे छाया है, हर ख्वाब में बस तेरा ही साया है। कोई पूछे प्यार क्या होता है मुझसे, मैं कहूँ जो तूने मुझ में जगाया है। न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, बात ना हो तो दिल नहीं लगता जरा। तू सामने हो तो वक्त रुक जाता है, और दूर हो तो हर पल लगे जैसे सजा।
2: जी हाँ दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत में आज हम लेकर के आए हैं वैलेंटाइन स्पेशल, यानी प्यार के नगमों को एक साथ लेकर के। आपकी आज ये गुमसुम एंड आपकी आज ये ख्वाहिश। तो आज जो सफर शुरू करने जा रहे हैं उसमें कई मुसीबतें, जी हाँ, इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्यार एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी कड़ी है जिसमें मुसीबतें ना हो तो प्यार को पाना आसान कहाँ लगता है। सबसे पहले हम उस सिंगर की बात करेंगे जो कि अपने आप में एक कहते हैं ना कि पूर्ण विराम हम नहीं कह सकते हैं, पूर्ण है। क्यों आज ये गुमसुम?
3: बिल्कुल आज ये ख्वाहिश। वो जो अपने में पूरी है, वो जिनकी आवाज जो भी सुनता है वो उनकी आवाज का मुरीद हो जाता है,
2: और आवाज के मुरीद होने के साथ साथ में उनके व्यक्तित्व, उनके चलन, उनकी बोली, उनका व्यवहार, शायद ये प्यार में कम नहीं होता है, ये प्यार को और पूर्ण बनाता है। बहुत सारे नगमों के साथ में जब उन्होंने गीतों को सुना, गाया और उनको जिया, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्यार की बेमिसाल मूरत हमारी लता जी। उनके नगमों में से एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ।
3: इकरार से याद आया, बहुत ही बेहतरीन गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ। कहते हैं ना कि प्यार तो यूं ही हो जाता है, लेकिन जब इकरार करना होता है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है। हम सोचते हैं ना, अच्छा चलो कह देते हैं, फिर रुक जाते हैं। सामने वाले को बुरा लग गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, फिर रुक जाते हैं। लेकिन ये ऐसा एहसास है कि कहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता।
2: तो भाई ये तो मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अगर हमने कुछ मुंह में खाया हुआ है तो ना निगला जाए ना उगला जाए, कुछ ऐसा ही हो गया। पर मैं बताऊं कि वैलेंटाइन वीक जो ऐसा होता है जिसमें प्यार का इजहार करने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तो आइए इस प्यार के इजहार को हम करते हैं और सुनते इस प्यारे से नगमे को।

0: अगले सिंगर जिनकी आवाज में जादू तो था ही, शायद हम उनको ये भी कह सकते हैं कि उनकी आवाज इतनी वर्सटाइल थी कि हर कोई आवाज पहचान जाता था और हर एक हीरो की आवाज में फिट होने वाले हमारे मोहम्मद रफी जी। दिलीप कुमार का दर्द हो या फिर शम्मी कपूर की मस्ती, देवानंद का रोमांस हो, सब पर उनकी आवाज फिट हो जाती थी। लेकिन कहा जाता है मोहम्मद रफी की आवाज नगमे और उनके गीतों की जो एक प्यारी सी एक मिसाल हुआ करती थी, वो लव सॉन्ग्स पर ज्यादा फिट हुआ करती थी।
1: बिल्कुल, मोहम्मद रफी जिनकी आवाज को कहा ही जाता है कि उनकी आवाज में एक रूहानियत थी। रूहानियत ऐसी कि जो भी उनके नगमे सुनता था वो खो जाया करता था। कोई भी गाना हो, कोई भी शैली हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दर्द हो, खुशी हो या फिर बहारों की खुशबू, हर किसी को, हर किसी एहसास को अपनी आवाज में बहुत ही बेहतरी से कैसे निखारा जाता है, ये मोहम्मद रफी जी बहुत ही अच्छे से जानते थे।
0: बिल्कुल, और मोहम्मद रफ़ी जी ने तो बहुत सारे ऐसे गानों को अपनी एक मिसाल दे दी, जैसे रोमांटिक हो, फिर दर्द भरे हो, कव्वाली हो, भजन हो, देशभक्ति, कॉमेडी सॉन्ग्स, ऐसा कोई भी अंदाज हो, जिन्होंने इन सारे सॉन्ग्स को छोड़ा ही नहीं था। बेहद विनम्र इंसान उनकी शोहरत के बावजूद बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इंडस्ट्री में जो लोग उन्हें सबसे अच्छे और प्यारे व्यवहार के लिए जानते थे, इंडस्ट्री में लोग उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए भी याद करते थे और वो जाने जाते थे। दिल ढल गया, ये दुनिया, ये महफिल, तूने ये क्या कर दिया, सीधे दिल पर उतर जाने वाले सॉन्ग्स थे। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी आज गुमसुम से कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत, क्या आपने ये गाना सुना है?
1: जी आरजे ख्वाहिश, बिल्कुल सुना है। और इतना प्यारा गाना, इतना प्यारा गीत, जिसकी कहे है ना कि कोई सार ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं।
0: ओके, तो चलिए अब हम लिसनर्स को सुना देते हैं इस प्यारे से नगमे को, जो कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की

0: अगले जिस सिंगर की हम बात करने वाले हैं, उनकी आवाज में मस्ती है, कुछ नयापन है, पर इस नएपन के साथ साथ अपनी आवाज में सभी गीतों को बड़ी ही खूबसूरती से संवारते हैं वो। और उनका गाना आते जाते खूबसूरत इन आवारा सड़कों पर और ऐसे ही बहुत सारे गीत जो कि आपको याद दिलाते हैं मस्ती, याद दिलाते हैं खुशी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी। अपनी गानों के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, पर साथ ही साथ में जाने जाते हैं अपने व्यक्तित्व के लिए। उनका व्यक्तित्व जो बहुत ही सादा और सौम्य है। कहते हैं कि हम जितने बड़े पद पर होते हैं उतना ही हमारा व्यक्तित्व सौम्य होता है। इसकी बहुत ही बेहतरीन मिसाल है किशोर कुमार जी।
1: मल्टी टैलेंटेड जीनियस ये भी नाम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मिला। किशोर कुमार गायक ही नहीं बल्कि एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। इतनी सारी प्रतिभाएं एक ही इंसान में कब मिलती हैं जब उनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा होता है। दूसरों के प्रति सम्मान, एक प्यार भरा होने के कारण ये सारी खूबियाँ होती हैं। आवाज जो दिल से निकली थी, उनकी आवाज में एक नेचुरल खुशी और शरारत हुआ करती थी। रोमांटिक गाने हो या फिर मस्ती भरे, वो उन गानों को गाते नहीं थे, वो उन गानों को जीते थे। मस्ती के बादशाह, एक चतुर नार, पान खाए सैया हमार जैसे ये मस्ती वाले गाने जब उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, जब उन्होंने गाए थे, तो सारे लोगों ने उनके लिए बस एक ही कहा था, अरे वाह, अब तो बात किशोर कुमार की है। तो आइए उनकी ही आवाज में एक प्यार भरे नगमों के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है हमें तुमसे प्यार।

0: अरे ये कौन सा गीत है और किसके लिए गाया जा रहा है?
1: मैं गा तो नहीं रही थी, मैं गुनगुना रही थी और अभी सिर्फ और सिर्फ मैं सोच रही थी आंखें बंद करके कि काश ये गाना भी मैं किसी के लिए गाऊं। और इतना प्यारा गीत है ना, जो कि उनकी आवाज, और आप सभी को पता है कि जिसने इस गीत को गाया है वो हम सबकी प्यारी आशा भोसले जी। बिल्कुल, आशा भोसले के जो गीत होते हैं वो हमेशा से एक ना रोमांटिक सॉन्ग्स को लेकर के क्लासिकल, पॉप, गजल, और वो हर तरह के गानों को जीती हैं, हर गानों को गाती हैं। उनकी आवाज में वो हर मूड भी ढलसा जाता है, चाहे वो ओपी नैयर साहब जी हो, चाहे आजी बर्मन साहब जी के साथ हो। वो हर एक जादू को अपने साथ में इस तरीके से पिरो लेती हैं कि हर युग में उनके गानों को एक यादगार के रूप में ले ही लिया जाता है। मस्ती और अदा की पहचान, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी कहने जा रही हूँ, पिया अब तो तू आजा। इतने बेहतरीन सारे सॉन्ग और जो कि रोमांटिक सॉन्ग्स को दिया है वो ही हमारी आशा भोसले जी हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने गीत सुना दीवाना हुआ बादल, तो देखा प्यार में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कल्पना देखिए प्यार के लिए कि बादल भी दीवाना हो सकता है, यानी वो भी दीवानगी कर सकता है, प्यार में पड़ सकता है। और दूसरा बहुत ही बेहतरीन गाना जो कि है पिया तू अब तो आजा, तो बिल्कुल इन दोनों ही गीतों में प्यार है बेशुमार। तो आज जैसा कि हम प्यार को ही बता रहे हैं, उसी को आपके सामने रख रहे हैं, तो आइए सुनते हैं प्यार भरे ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

जिनकी आवाज में एक सच्चाई और टूटन थी। अब आप सोचेंगे टूटन का क्या मतलब होता है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जब दिल टूटते हैं तो उस टूटन की कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन प्यार भरों को जोड़ना, प्यार भरे दिल को जोड़ना जो सीधे दिल तक पहुंचती थी, उनके गाने सुनकर लगता है जैसे कोई अपना पुराना दर्द सुना रहा हो। उन्हें अक्सर राज कपूर की आवाज कहा जाता था।

आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी, जीना यहाँ मरना हुआ, ऐसे गानों की कई जोड़ियों को अपनी आवाज दिया और उन गानों को अमर बना दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जिनकी आवाज के लिए हम बात कर रहे हैं वो है हमारे मुकेश दाजी, जिनकी आवाज में दर्द तो था ही, इसी के कारण उन्हें आवाज के बेताज बादशाह भी कहा जाता है और उनके गाने आज भी हम सभी बड़े ही शौक से और बड़े ही दिल से सुनते हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उनकी ही प्यार भरे गीतों को हम कैसे भुला सकते हैं, चाहे वो आज के जुगल जोड़ी क्यों ना हो, चाहे वो पुरानी ही जोड़ी क्यों ना हो, सभी के दिलों में आज के ये जो गीत हैं, ये पुराने मिक्स करके भी आज हम सभी लोगों को सुनने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं।

0: युगल जोड़ी।
1: महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग जो कि मुकेश जी की आवाज में गाया गया। आप देखिए इस गीत में कि कितनी बेहतरी से बताया है कि महबूब मेरे, यानी ये गीत ये बताता है कि तुम हो तो पूरी दुनिया है, सब कुछ है, और तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। प्यार कुछ ऐसा ही होता है, अगर आपके पास आपका हमदर्द, कोई आपका हमराज है तो दुनिया बेहद खूबसूरत लगती है, और वो नहीं है तो मन करता है कि कुछ भी नहीं। ऐसा ही होता है प्यार, फिर चाहे वो आप उसे किसी भी रिश्ते में ले लीजिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपका माता पिता से आपका रिश्ता हो, या कोई भी रिश्ता हो, जब कोई हमारे दिल के बहुत करीब होता है तो हमें यही लगता है कि तुम हमेशा हमारे पास रहो, बस कहीं दूर मत जाओ। इसी एहसास को, इन्हीं बातों को, इन्हीं भावनाओं को बहुत बेहतरी से अपनी आवाज के साथ उन्होंने निखारा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में उन्हीं का ये बेहतरीन गीत, महबूब मेरे।

0: ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत की थी तो उनके गानों की सुरों की गहराई में परफेक्शन साफ झलकती थी। बिल्कुल, जिनकी ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत में की गई है तो उनकी नींव भी उतनी ही मजबूत होती है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। जो कि हमारे अगले सिंगर हैं मन्ना डे, जिनकी आवाज को आज भी हम बड़े ही अच्छे वाले मूड में सुनते हैं। मुश्किल धुनों के बादशाह, ऐसे गाने जो दूसरे गायक मुश्किल समझते थे, वो मन्ना डे साहब ने बड़ी ही आसानी से गा लेते थे। जैसे लागा चुनरी में दाग, पूछो न कैसे मैंने, हर मूड में फिट और हर अदा में फिट, उनकी आवाज को बड़े ही शौक से और बड़े ही चाह से हम सुनते हैं। क्लासिकल ही नहीं, उन्होंने मस्ती भरे रोमांटिक और दार्शनिक गाने भी गाए। तो क्या आरजे गुमसुम, आप उनके गानों के बारे में कुछ जानती हैं?
1: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, तो चलिए बताते हैं आपको उनके बहुत ही बेहतरीन गाने, जो कि है मस्ती भरा है समा। जब आप थोड़े दुखी हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया हो और मन हो कि थोड़ा मस्ती करनी है, तो सुनिए मन्ना डे का ये गाना। क्योंकि मस्ती भरा है समा जब आप सुनेंगे ना, तो आपका मूड यूं बदल जाएगा। और साथ ही साथ इनका दूसरा गीत है तू प्यार का सागर है। बिल्कुल, तू प्यार का सागर है ये गीत आप जानते हैं कि मन्ना डे ने किसे संबोधित किया है? उनका कहना है कि तू प्यार का सागर है ये उन्होंने डेडिकेट किया है अपनी माँ, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके लिए उनकी माँ ही प्यार का सागर है, जिन्होंने बचपन से लेकर उन्हें हमेशा इतना प्यार दिया, इतना सराहा कि जो वो नहीं सोच रहे थे कि उन्हें नहीं मिल सकता है वो भी उन्हें मिला। तो इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं प्यार की, तो भाई कैसे भूल सकते हैं हम अपनी माँ को, जो हमेशा हमेशा हमें इतना प्यार करती है कि लगता है कि बस अब तो और किसी की जरूरत ही नहीं है, माँ ही अपने आप में संपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं उनके यही मस्ती भरे प्यारे से गीत और खो जाते हैं और करते हैं थोड़ी सी

0: मखमली आवाज और आवाज में जादू, जिसमें हल्का सा कंपन, जिसको कहते हैं वाइब्रेटो। वाइब्रेटो उनकी खास पहचान थी। कहते हैं ना कि किसी की आवाज में वाइब्रेशन होता है, जिसमें माइक में बोलने पर एक कंपन सी आती है। तो आप खुद सोचिए कि जब उनकी आवाज में कंपन हुआ करती थी और उनके गानों में वो कंपन साफ साफ झलकता था, तो यानी ऐसे सिंगर्स की आवाज जो होती है ना, वो बड़ी ही मखमली मानी जाती है। उनके गानों में उदासी और नजाकत इतनी खूबसूरती से मिली हुई थी, मानो उसी में वो फिट की गई हो, जो सुनने वाले हमेशा उनकी आवाज को सुनकर खो जाया करते थे। जैसे जाए तो जाए कहां, इतना सा मुझ में तू प्यार बढ़ा। गजल के मामले में अगर बात की जाए तो सिर्फ फिल्मी गायक ही नहीं, बल्कि बेहतरीन गायक और गजल गायकी के रूप में भी उनको सभी ने सुना। उनकी गायकी में उर्दू अदब की मिठास झलकती थी। एक्टर भी रह चुके हैं। कम लोग जानते हैं कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया और आज उनकी अभिनेता को भी हम सराहते हैं। सादगी भरा स्वभाव तो हर किसी का होता है, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि आवाज की तरह नर्म और प्यारी सी आवाज। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वैलेंटाइन डे वीक में कई ऐसे सिंगर्स की आवाज में चुन चुन के गानों को लेकर के आए हैं। तो आज ये गुमसुम, क्या तलत महमूद जी के लिए कोई ऐसा गीत है आपके पास?
1: बिल्कुल है मेरे पास, जो कि है मेरी दुनिया में बस तुम ही तुम हो। बिल्कुल जैसा कि आपने गीत सुना, मेरी दुनिया में तुम ही तुम हो। तलत महमूद कहते हैं कि हमारे अंदर जब कोई खास चीज होती है, वही खासियत हमारी पहचान बन जाती है। उनकी पहचान बनी उनकी खास आवाज, जिसमें कि जो भी उनकी आवाज सुनता था ना, उनकी आवाज में वो जो एक खास चीज थी, वो थी उनकी आवाज में वो कंपन। जो भी सुनता था वो यही कहता था कि बहुत ही खूबसूरत है। उनकी इस बात को लेकर बहुत लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ये भी कहा कि अरे इस आवाज के साथ कहाँ आप बड़े बन पाओगे, लेकिन फिर भी सबको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपनी आत्मविश्वास के साथ, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गाने गाए और जब वो गाने रिलीज हुए तो इतने हिट हुए कि वो सफलता के शिखर पहुंचते ही चले गए। इसीलिए कहते हैं कि हमारी हर एक कमी कभी कभी हमारी खासियत भी बन सकती है।
0: तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: जैसा कि आप सभी को पता है, हेमंत कुमार जो कि वाराणसी में जन्मे और पले, बनारस की मिठास एक पान से, पान खाए सैया हमार, ये इस गाने से बेहद उन्हें उपलब्धि मिली। हेमंत कुमार मुखोपाध्याय था, उनका नाम सबसे पहले मुखोपाध्याय था। वे मुख्य रूप से बंगाली थे और उन्होंने बंगाली तथा हिंदी दोनों भाषाओं में अपार लोकप्रियता पाई। अब आती है गायन शैली की बात, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंगाली गीतों से की, लेकिन बाद में ही हिंदी फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बना ली। उनकी आवाज बेहद मुलायम और गहरी थी। रोमांटिक गीतों की अगर बात करें तो क्या ही कहने, जैसा कि लव सीजन चल रहा है हमारा, वैलेंटाइन डे, तो उनके ऐसे कई गाने हैं जिनको सुनकर के आज भी दिल हमारा आवारा हो जाता है, यानी कि है अपना दिल तो आवारा। पर हम चलते हैं सीधे आरजे गुमसुम के पास।
1: तो उनका एक बेहद ही प्यारा गीत जो कि है हाल कैसा है जनाब का, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जो कि आप सुन सकते हैं और इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि देखिए कितने प्यार से, कितनी नजाकत से पूछा है।
0: मैं चाहती हूँ कि आरजे गुमसुम ने हाल पूछा है जनाब का गाया था कि पूछा था,
1: गा करके पूछा था।
0: ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें आती जिसमें हम लोग कहते हैं ना, इसे खा कर पियो या पी के खाओ।
1: दोनों ही चीजों में स्वाद आपको पता चल ही जाना है।
0: तो ये हेमंत कुमार का जो गाना था हाल कैसा है जनाब का, तो आइए अपना हाल भी बताइए आकर के इस खूबसूरत से नगमे को सुनने के बाद।